इतिहास के सफ़ों पे दर्ज हैं कहानियाँ कई देशों के संघर्ष के दौर की, वो दौर जब जन्म लिया था इन देशों के राष्ट्रगीतों ने। ये राष्ट्रगीत कभी किसी राष्ट्रनायक के इर्द गिर्द लिखे गए तो कभी किसी देश के ध्वज के संदर्भ में, कहीं ये विशुद्ध प्रार्थना बने तो कभी गाए गए लोकगीत के रूप में, कहीं ये कामना है महारानी की दीर्घायु की तो कहीं है वंदना मातृभूमि की।

0: आप सुन रहे हो रेडियो मन भावन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग। आपला खानदेश, आपली मानसर।
1: नमस्कार, मेरा नाम है मनोज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साधो। दोस्तों, जब हम किसी बहुत ऊंचे पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाते हैं तो वहां का नजारा कैसा होता है? वहां नीचे की घाटियों का कोलाहल, धूल मिट्टी और शोर शराबा सब बहुत पीछे छूट जाता है। वहां केवल एक असीम शांति होती है, साफ हवा होती है और खुला आसमान होता है। उस ऊंचाई पर पहुंचकर आप नीचे के छोटे छोटे झगड़ों और प्रपंचों से पूरी तरह मुक्त हो जाते हैं। अध्यात्म की यात्रा में भी

कहानी सुना रहे हैं, जहां पहुंचने के बाद मनुष्य कभी दुखी नहीं होता। आइए सुनते हैं कबीर साहब का यह रसमय सूत्र। मनवा तो अधर बसया, बहुतक झीणा होई। मनवा तो अधर बसया, बहुतक झीणा होई। आलोकत सचु पाईया, कबहु न न्यारा सोई। मनवा तो अधर बसया, बहुतक झीणा होई। मनवा तो अधर बसया, बहुतक झीणा होई।

श्रोताओं, कबीर साहब अपनी समाधि के भीतर अनुभव को साझा करते हुए कहते हैं, मनवा तो अधर बसया। साधना और सुमिरन के बल पर मेरा यह जो मनवा यानी मन है, वह इस संसार की वासनाओं और मिट्टी के धरातल को छोड़कर अब अधर यानी उस भीतरी शून्य आकाश, उस ब्रह्मारंध्र के शिखर पर जाकर बस गया है। बहुतक झीणा होए और वहाँ पहुँचकर यह मन इतना झीणा यानी इतना महीन, हल्का और विचार शून्य हो गया है कि इसका अपना कोई अहंकार बचा ही नहीं। जब मन इतना सूक्ष्म हो जाता है तब क्या घटित होता है? अगली पंक्ति में कबीर कहते हैं, अलोकत सचु पाइया। उस परम ऊंचाई पर, उस अलोकत यानी अलौकिक अदृश्य निराकार परमात्मा का दर्शन करते ही इस आत्मा ने सचु यानी उस परम सत्य और अखंड आनंद को पा लिया है। कब हो न न्यारा सोई, और अब आनंद की स्थिति यह है कि वह परमात्मा मुझसे कब हूँ यानी कभी भी न्यारा यानी अलग नहीं होता। हम दोनों मिलकर एक हो गए हैं, जब वहाँ कोई जुदाई ही नहीं बची। यह दोहा योग दर्शन की अमनस्क अवस्था और वेदांत के जीवन मुक्ति का साक्षात प्रमाण है। अधर का अर्थ केवल आसमान नहीं बल्कि योग की भाषा में शून्य या सहस्रार चक्र है, जहाँ पहुँचकर साधक की ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो जाती है। जब तक मन स्थूल संसार की चिंताओं में फंसा है वह भारी रहता है। कबीर समझा रहे हैं कि जब ज्ञान के प्रकाश में मन झीणा यानी पूरी तरह शुद्ध हो जाता है तो ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय का भेद मिट जाता है। आत्मा जब उस सचु यानी सत्य को देख लेती हैं तो उसी में लीन हो जाती हैं। जैसे नमक की पुतली समुद्र की थाह लेने जाए और खुद समुद्र ही बन जाए, वैसे ही यह मन भी गोविंद से मिलकर गोविंद ही हो जाता है। आज का चिंतन, मेरे दोस्तों, आज जरा देखिए कि हमारा मन किस कदर नीचे कीचड़ में ईर्ष्या, नफरत, कलह और छोटी मोटी चिंताओं के धरातल पर रेंग रहा है। हम रोज खुद को भारी और थका हुआ महसूस करते हैं क्योंकि हमने अपने मन को ऊंचा उठने ही नहीं दिया। आज कोशिश कीजिए इस मन को थोड़ा हल्का करने की। इस संसार के व्यर्थ के बोझ को नीचे गिरा दीजिए। ध्यान और उस राम नाम के सुमिरन के पंख लगाकर अपने मन को अधर में, उस भीतरी शांति के आकाश में उड़ने दीजिए। जब आपका मन विचारों से मुक्त होकर झीणा और निर्मल हो जाएगा तो आपको अनुभव होगा कि वह परमात्मा आपसे कभी अलग था ही नहीं। वह तो आपकी चेतना का असली स्वरूप बनकर सदा

0: से आपके साथ ही था। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ, सुनो भाई साधो 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। तब तक के लिए राम राम।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मन भावन 90.8 FM।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज फिर आप सबका स्वागत। जब हमने ये समझ लिया कि आप जिस हैप्पीनेस की हम बात कर रहे हैं वो एक स्टेबिलिटी को दर्शाता है, मेरे अंदर की स्टेबिलिटी, कोई भी सिचुएशन हो, व्यक्ति कुछ भी कह रहा हो, कोई मेरा अपना भी कुछ भी क्रिएट कर रहा हो, वो स्टेबल रहना मेरा अपना कार्य है, मैं खुद उस स्टेबिलिटी को क्रिएट कर सकती हूँ, यानी कि मैं अपनी हैप्पीनेस इंडेक्स को खुद स्टेबल कर सकती हूँ, वो ऐसे ऊपर नीचे नहीं होगा। लेकिन सुबह अगर बैठकर या आज अभी बैठकर मैंने ये सोच लिया कि मैं कर सकती हूँ, करा भी, थोड़ी देर के लिए किया भी, लेकिन कौन सी ऐसी बातें हैं, अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो दिन भर में होती हैं और मुझे पता ही नहीं चलता कि वो क्यों जो इंडेक्स है वो फिर ऊपर उठना या नीचे जाना शुरू कर देता है। तो इस पर बात करते हैं, हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: अगर हम देखें, मैंने तय तो कर लिया कि ठीक है मैं ही क्रिएट करूंगा वो थॉट कि आई एम अ हैप्पी बीइंग, और अगर लास्ट कड़ी को देखें तो हमने उसमें भी बात की थी अपने मेडिटेशन के दौरान भी। दिन भर में क्या हो जाता है ऐसे, कौन सी ऐसी बातें हैं अगर हम उन पर आज देखने की कोशिश करें कि जिनसे वो धीरे धीरे फिर खत्म होने लगती है शक्ति।
1: सबसे पहले अब हमारा बिलीफ सिस्टम चेंज हुआ, ये बिलीफ सिस्टम कि आई वॉन्ट हैप्पीनेस, इससे चेंज हो गया आई एम अ हैप्पी बींग। दिस इट्सेल्फ इज अ बिग शिफ्ट इन द वे आई एम गोइंग टू थिंक। और दूसरा, फिर जब मैंने ये समझा कि मेरी हैप्पीनेस डिपेंडेंट नहीं है, मेरी हैप्पीनेस बाहर से नहीं आनी है, तो आई स्टॉप लुकिंग फॉर इट आउटसाइड। यू नो, अभी तक आई एम ऑलवेज लुकिंग फॉर इट एंड मैं सब कुछ यही सोच कर रही हूँ कि इससे खुशी मिलेगी, इससे खुशी मिलेगी। अब मुझे ये डिसाइड करना है, मुझे खुश रह कर
0: चीजें करनी,
1: ये करना है। यू नो द फोकस शिफ्ट्स, एक है ये करना है फिर खुशी मिलेगी, और एक है खुश रहना है, मतलब खुश रहकर फिर ये करना है। इवन अ सिंपल थिंग लाइक गेटिंग अप इन द मॉर्निंग, गो टू वर्क, यू नो हाउ डज इट स्टार्ट। जैसे ही हम सुबह उठते हैं हमारी फर्स्ट थॉट क्या है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है हर एक के लिए। एवरी वन नीड्स टू चेक वॉट इज माई फर्स्ट थॉट। अगर मेरी फर्स्ट थॉट ये होती है ओह सुबह हो गई अब उठना है, एंड नॉर्मली मोस्ट ऑफ अस हैव दिस थॉट आई हैव टू गो टू वर्क, तो जो हैव टू सोच कर करेगा वो खुश नहीं हो सकता कभी भी। पहली बात तो हमें ये समझना पड़ेगा, वाई डू आई हैव टू गो टू वर्क, आई डोंट हैव टू, नो वन इज सिटिंग देयर कि आपको जाना ही है काम पर, लेकिन हम खुद जाते हैं ये सोचकर कि आई हैव टू गो टू वर्क बिकॉज आई हैव टू गेट द मनी, वाई बिकॉज आई हैव टू बाय द थिंग्स, वाई बिकॉज एट द एंड ऑफ इट आई विल गेट हैप्पीनेस। नाउ इट कैन चेंज टू आई एम हैप्पी एंड आई वॉन्ट टू गो टू वर्क। किस लिए जाना है, अभी काम पर जाना था क्योंकि वहां से लाना है, वहां से लाना है और उससे खुशी आएगी। अब ये हो सकता है कि मुझे काम पर जाना है, वो तो ठीक है, जब वो पार्ट तो है ही धन का, लेकिन एक अलग पर्पस के लिए जाना है। एंड दैट पर्पस कुड बी कि ये जो मेरी वैल्यूज है, हैप्पीनेस है, लव, पीस, हर एक के साथ जिसको मैं मिलने वाली हूँ आज सारा दिन में, आई एम गेटिंग द अपॉर्चुनिटी to have an exchange of this energy. I'm not going to go to work taki mujhe ye mile, lekin I am going to go to work taki I get the opportunity to share these. Pura purpose shift ho jata hai. And ek first thought jo morning ki hai, ye create karna bahut important hai. Aur agar hum apni vocabulary ko check kare, to ye have to word isko nikalna
0: ho. Isko delete hi kar dena chahiye. And somewhere amazing, oh my god, आई कॉन्ट बिलीव इट कि मैं सुबह उठूं और मैं ये सोचूं कि मैं आज अगर काम पर जाऊंगी तो मैं प्यार शेयर करूंगी, मैं हैप्पीनेस शेयर करूंगी। कैन वी डू दैट, या हम ये सोचें कि मेरा बॉस क्या करने वाला
1: है? देखो सारा दिन कैसा बीतता है ना, आज मेरा सारा दिन ऑफिस में कैसा बीतता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि मेरी नेक्स्ट डे मॉर्निंग की थॉट कैसी होगी। अगर मेरा ऑफिस का एक्सपीरियंस सारा दिन एक स्ट्रगल है, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे है, देन ऑब्वियसली आई डोंट लुक फॉरवर्ड टू इट। मैं कल क्यों देखूंगी, जैसे आई हैव टू गो, ये एक मजबूरी है। लेकिन इफ़ आई गो टू वर्क ये स्टेबिलिटी के साथ, और सारा दिन मैं जिनके साथ भी मिलूँ मैं उनके साथ ये एनर्जी शेयर करती हूँ, मैं छोटी छोटी बातों में डिस्टर्ब नहीं होती, तो मेरा पूरा दिन कैसे बीतेगा? वो पूरा दिन तो बहुत, इट विल बी वेरी फुलफिलिंग, क्योंकि हैप्पीनेस, लव, ये एक ऐसी एनर्जी है कि जितना हम इसको शेयर करते जाएंगे ये मेरे अंदर सिर्फ बढ़ती जाएगी। तो अगर मैं ऑफिस जाकर 10, 20, 50 लोगों से मिलने वाली हूँ और वो एनर्जी हर टाइम शेयर करते हुए मेरे अंदर बढ़ती जाएगी, विल आई नॉट एंजॉय गोइंग टू वर्क? और उसके लिए भले आप रात को वो थॉट क्रिएट करके सो. ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि रात को हम क्या प्रोग्रामिंग करते हैं वो थॉट हमारे माइंड पर ऑटोमेटिकली पॉप अप करेगी नेक्स्ट मॉर्निंग. सो अगर सुबह एकदम से नहीं याद रहने वाला है, आधा काम तो आप पहले रात को कर दो. रात को प्रिपेयर योर सेल्फ कि मेरा कल का दिन ऐसे, एंड लुक एट सी इट्स अ कॉन्शियस एफर्ट. कुछ भी अपने आप नहीं होगा. हम सोचते हैं हाँ समझ में आ गया ये तो अपने आप हो जाएगा. अपने आप नहीं,
0: you'll have to do this.
1: अपने आप नहीं होगा. एक बहुत ब्यूटिफुल चीज है जब हम अपने थॉट्स को देखना शुरू करते हैं, जैसे ही दिखाई देता है कि दिस थॉट इज नॉट वेरी, स्टॉप, चेंज इट. एंड चेंजिंग इट मीन्स सब्स्टिट्यूटिंग इट विद समथिंग एल्स. हमने पहले ही देखा कि थॉट फीलिंग को जेनरेट करती है. ठीक है, थॉट पर नहीं पता चला कि अच्छी है या बुरी है, फीलिंग पर पता चल जाता है. फीलिंग पर पता चलेगा, वाई नॉट चेंज द थॉट. जैसे ही हम ये थॉट क्रिएट करते हैं, आई हैव टू गो टू वर्क, कैसी फीलिंग क्रिएट होगी हमें ये पता है. अभी अभी करो, आई वॉन्ट टू गो टू वर्क, कैसी फीलिंग क्रिएट होगी. इट इज इमीडिएटली हैपनिंग इनसाइड. लेट्स ट्राई टुमारो मॉर्निंग, आई वॉन्ट टू गो टू वर्क. क्योंकि जिससे आप शुरुआत करोगे, अगर हम यही सोचकर काम पे जाएंगे कि ये मेरी मजबूरी है, ये मुझे करना पड़ता है, जबरदस्ती है, इस क्या एनर्जी फ्लो होगा, आप किस एनर्जी से वॉक इन करते हैं. सो अभी ये होगा कि अगर सारा दिन अच्छा बीतेगा तब मैं अच्छी थॉट क्रिएट करूं, अब वो नहीं, मैं अच्छी थॉट क्रिएट करती हूं
0: तो मेरा दिन अच्छा बीतेगा.
1: So let me start from my tomorrow morning thought, my first thought in the morning. And agar wo automatically apne aap sirf nahi create ho rahi, baith kar usko karna hai. Baithna hai, apne aap se 2 minute baat karni hai, pehli good morning apne saath honi chahiye. It is very important. And prepare, I want to go to work. I'm very happy. Not, I have to go to work to earn this to get happiness. Nahi, equation change hai. I am a happy being. और वो जो 2 मिनट हम reflection रोज करते हैं उसको सुबह में करके शुरू करना है. अब आप निकले मॉर्निंग
0: तो अपने साथ, चाहे हम बाकी सारे काम भी कर रहे हैं, this conversation actually can go on.
1: आपसे वैसे भी सारे काम करते हुए conversation अंदर चलती
0: रहती है, you know. So why don't we consciously create this conversation?
1: और इसीलिए हम कहते हैं कि meditation कोई 2 मिनट, 10 मिनट या 1 घंटे की चीज नहीं है. मेडिटेशन तो सारा दिन चलती रहती है. क्योंकि मेडिटेशन मींस क्या, मेडिटेशन की फर्स्ट स्टेज है अपनी इंटरनल कॉन्वर्सेशन. मेडिटेशन मींस थॉट्स तो चल रहे हैं, लेकिन मेडिटेशन मींस अवेयर होके कॉन्शियसली राइट थॉट्स क्रिएट करना, राइट पावरफुल पॉजिटिव हैप्पी थॉट्स. तो ये हमें क्या बैठ कर करना पड़ेगा, हम सारा दिन कर सकते हैं. लेकिन क्यों बैठ कर करते हैं, क्योंकि सारा दिन में हम कहते हैं पता ही नहीं चलता कितने. तो प्रैक्टिस थोड़ी सी बैठकर अगर हो गई, फिर अवेयरनेस सारा दिन करना बहुत इजी है. अब आप कल की अपनी जो दिन है ना, उसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके अभी साथ साथ देखते जाओ कि सुबह उठे विद द राइट थॉट. राइट थॉट से उठे, प्रॉमिस योरसेल्फ इमीडिएटली कि अब मेरा बच्चों को उठाने का तरीका, बच्चों को तैयार करने का मेरा तरीका. क्योंकि हम अपनी थॉट्स के साथ जो एनर्जी क्रिएट करते हैं, उसी से एनर्जी भी पूरे घर के अंदर क्रिएट हो जाती है. कॉन्शियसली टेल योरसेल्फ ये सब कुछ आज स्टेबिलिटी के साथ होने वाला है. चाहे कुछ भी हो जाए, आई विल रिमेन स्टेबल. करना तो वही काम होता है, तैयार करना है, ब्रेकफास्ट देना है, स्कूल तक छोड़ना है. अब उसी को या तो ऐसे करके करो या
0: बच्चे
1: फिर
0: सुनते ही नहीं है, उठते ही नहीं है, तैयार नहीं
1: होते. पहले से ही तो थॉट क्रिएट कर लेते हैं इतने सारे. अच्छा, बच्चे सुनते नहीं है, उठते नहीं है, एक्सेप्ट इट ना, दिस इज पार्ट ऑफ चाइल्डहुड. मेरे चिल्लाने से कोई ज्यादा थोड़ी हो जाएगी वो चीज. हाँ ये है, एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो जाएगा. नाउ वंस आई स्टार्ट माय डे, चाहे वो घर पे है चाहे वो ऑफिस में है, हमें कुछ एक बातों का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता. एक जो हमने पिछली बार भी देखी, जजमेंटल. ये तो फंडामेंटल है. आई डोंट नो अगर सबने ट्राई किया हो, नहीं किया हो तो अभी भी करें, कि जजमेंटल होने से हमारी बहुत सारी शक्ति वेस्ट हो रही है.
0: बच्चे ने होमवर्क नहीं किया, सुबह पता चला आप ऐसे ही हो,
1: अब आपको शाम को ही करना पड़ेगा उसके ऊपर सोल्यूशन. सी, अब क्रिटिसाइज करके कुछ नहीं होने वाला. या तो कल शाम देखना चाहिए था उस बात को, या अब आज शाम को आकर देखेंगे. रॉन्ग एनर्जी देकर उसे भी स्कूल भेजना या खुद भी वो रॉन्ग एनर्जी क्रिएट करना, जब वो चीज का अब कुछ नहीं हो सकता तो व्हाट इज द पॉइंट, अननेसेसरी वी आर क्रिएटिंग. सी, लेट्स बी केयरफुल. जैसे हम बाकी शक्तियों का बहुत ध्यान रखते हैं, रिसोर्सेस का ध्यान रखते हैं, पानी तो हम वेस्ट नहीं करते आजकल बिल्कुल, इलेक्ट्रिसिटी हम वेस्ट नहीं करते, पेट्रोल हम वेस्ट नहीं करते, एंड अपनी संकल्प शक्ति वेस्ट करते जाते वेस्ट करते. तो हमें ध्यान रखना है मेरी एनर्जी कहाँ वेस्ट हो रही है. और ये बार बार से चिल्लाना चीखना गुस्सा करना, दिस इज वेस्टेज ऑफ एनर्जी. खुशी चाहिए नहीं, खुशी है उसको वेस्ट मत कीजिए. आपके पास टैंक है उतना पानी का, आप एवं सारी दुनिया में ढूंढ रहे हैं पानी चाहिए, टैंक है. अब सिर्फ ध्यान रखो ना, ऐसे ही उसका नल चलता ना रहे, बह ही जा रहा है वो पानी, तो खुशी है. अब सिर्फ ध्यान रखना है कि अब जजमेंटल क्रिटिकल क्रिटिसाइज सारा दिन करते रहना, दिस इज वन बिग वेस्टेज ऑफ एनर्जी. और जजमेंटल में
0: मतलब दूसरों की स्क्रिप्ट लिखना, वो हम बार बार कहते हैं कि दूसरा क्या कर रहा है, और कितनी बार तो हम पड़ोसी क्या कर रहा है उसके ऊपर भी बात करने लगते हैं. मतलब हम सोचने लगते हैं अननेसेसरली देखते हुए ही. इनफैक्ट सो मेनी टाइम्स वी डू इट अननोइंगली.
1: हमें इसलिए देखना पड़ेगा, जिस तब जब तक हम देखेंगे नहीं ना एक दिन अपने आप को, हमें ये भी नहीं पता चलेगा कि हम कितना ज्यादा करते हैं ये. और ये एक एक वेस्टेज ऑफ एनर्जी है. मैं कितना भी बैठकर औरों के बारे में सोचती रहूं, औरों ने मेरे हिसाब से चलना नहीं, वही एनर्जी अगर मैं अपने बारे में सोचते में लगा देती तो आई वुड हैव बीन एबल टू डू मिरेकल्स. आई एम डूइंग माय वर्क and I'm thinking about other people and other people's work and the scenario, दुनिया में क्या हो रहा है उसके, wastage of energy. अब जैसे ही ये हम judgmental होने लगते हैं, लेकिन लोग तो हमारे अनुसार नहीं चलते, तो frustration create होता है. Suppose senior है, junior को बोल रहे हैं बार बार, लेकिन वो मानता ही नहीं, तो अब क्या होगा, और frustration आएगी और गुस्सा आएगा, हम out of control चले जाते हैं. That is why we say anger is like temporary insanity. You go temporary insane. Why insane? क्योंकि आप out of control चले गए हैं. पहली चीज तो वो emotion ने आपको overpower कर लिया है. So you lose your creativity.
0: Actually अगर हम देखें सचिवानी, हम बाहर लोगों को देख भी क्यों रहे थे, क्योंकि हमें कुछ और थोड़ा दिख रहा था, हमें जो दिख रहा था हम उसी को देख रहे थे. और फिर हमें गुस्सा चढ़ता था कि क्यों नहीं चेंज कर लेता, मुझे समझ में आ रहा है कि ये इसके लिए ठीक है.
1: बिल्कुल.
0: तो सिमिलरली अगर हम अपने आप को देखना शुरू करेंगे तो मुझे वही दिखेगा,
1: और मुझे ये समझ में आएगा कि मेरे लिए क्या सही है. जिसको देखते हैं उनके लिए कितना इजी है. ऐसे ही मैं आपको देखूं और मेरे को पता है कि आपके लिए क्या सही है, आप मुझे देखो और आपको ये पता चले मेरे लिए क्या सही है. लेकिन हम दोनों एक दूसरे को चेंज तो नहीं कर सकते. लेकिन दोनों अगर अपने आप को देखना शुरू करें उतने ही टाइम में कि मेरे लिए क्या सही है, वी विल डू वंडर्स. एंड दैट्स व्हाई एट द ब्रह्मा कुमारीज वी से कि व्हेन वी चेंज द वर्ल्ड चेंजेस. हम बदलेंगे तो जग बदलेगा. क्यों? हम एक एक अगर बदलते गए, एक तो हम बदले तो हमारा दृष्टिकोण बदला, जग ही बदल गया हमारे लिए. और प्लस हम अगर एक एक बदलते गए तो विश्व तो परिवर्तन अपने आप हो जाएगा. इट इज सच अ नेचुरल प्रोसेस. लेकिन हमने उसको डिफिकल्ट इसलिए बना दिया, जब आप बदलेंगे तब मैं बदलूंगी.
0: क्योंकि अभी तक मुझे दिख ही आप रहे थे.
1: yes. अवेयरनेस सारी बाहर है ना?
0: और मेरी डिपेंडेबिलिटी भी आपके ऊपर हो रही थी.
1: yes.
0: मेरी डिपेंडेंसी आपके ऊपर थी, मेरा हर चीज आपके ऊपर थी, तो फिर पूरा फोकस yes. आपके ऊपर था.
1: एंड दूसरी चीज जो बहुत बड़ा लीकेज बनती है हमारी खुशी में, वो होती है हमारी एक्सपेक्टेशंस. हमने बहुत सभी से अपेक्षाएं बना कर रखी हैं, और जब फिर लोग हमारी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरते तो हमारी खुशी का इंडेक्स पूरी तरह से नीचे. इवन अ सिंपल चीज लाइक बस नहीं आई टाइम पर. मेरी एक्सपेक्टेशन थी ना कि बस अगर रोज सुबह 8 बजे आती है तो आनी चाहिए. तो जैसे ही वो टाइम पर नहीं आई, मेरा हैप्पीनेस इंडेक्स फॉल हो जाता. इसी तरह से अगर हम चेक करें हमने जीवन में किन किन लोगों से एक्सपेक्टेशंस बनाई हुई हैं, हाउ मच डू यू थिंक इट विल कम अप टू, हाउ मेनी पीपल डू वी हैव एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम? ऑलमोस्ट
0: एवरीवन. यस,
1: एवरीवन.
0: एंड देन वी कीप ऑन सेइंग वी डोंट हैव एनी एक्सपेक्टेशंस. व्हाट इज रियली मेंट बाय एक्सपेक्टेशंस?
1: या व्हाट इज मेंट बाय एक्सपेक्टेशंस? एक्सपेक्टेशंस मतलब क्या? एक्सपेक्टेशंस मतलब दूसरे के फ्यूचर बिहेवियर को प्रेडिक्ट करना.
0: ओके.
1: मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप ऐसा करेंगे.
0: आपके कर्म को ही मैंने,
1: कर्म या बोल व्यवहार जो भी, आई एक्सपेक्ट दैट यू विल डू दिस. मतलब आने वाले भविष्य में, दैट कुड बी द नेक्स्ट मिनट और इट कुड बी व्हाटएवर, आप क्या करने वाले हैं उसको मैं पहले से ही प्रेडिक्ट कर लेती हूँ.
0: तो मुझे आपसे ये उम्मीद न थी, ये कहते थे.
1: एक्जेक्टली, दैट्स द पॉइंट. तो आपको खुद को भी नहीं पता.
0: हाँ,
1: कि आप
0: तो, आई नो. जब वो हो जाता है तब हम कहते हैं ना कि मुझे आपसे ये उम्मीद न थी.
1: तो मैंने आपका फ्यूचर बिहेवियर ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर लिया है. एंड जब अगर आपका फ्यूचर वो नहीं हुआ जो मैंने प्रोजेक्ट किया था, देन आई विल से यू डिड नॉट मीट अप टू माई एक्सपेक्टेशंस. तो अब आई हैव टू स्टॉप और अपने आप से लॉजिकली पूछना पड़ेगा, कितना इंटेलिजेंट आइडिया है ये.
0: हुए माई
1: तो फिर भी ठीक है, हुए माई तो डेफिनेटली इज अ क्वेश्चन, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं क्यों एज अ पेरेंट हम एक्सपेक्ट ना करें, एज अ हस्बैंड या एज अ वाइफ मैं एक्सपेक्ट ना करूँ, एज अ टीचर मैं अपने स्टूडेंट से एक्सपेक्ट ना करूँ. एक्सपेक्ट, दैट्स व्हाई इट्स वेरी, ये एक चीज है जिसको लेट गो करना बहुत डिफिकल्ट है.
0: एक्चुअली वो तब तक नहीं पता चल पाता जब तक कि वो फेल नहीं होता कि मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे.
1: यस, लेकिन आप सारा दिन में देखना ना, सपोज मैं आप एन एक्सपेक्टेशन किस आधार पे भी है बेस्ड है कि जैसे आप जिस तरह से बोलते आए हैं मेरे साथ, कल भी आप इसी तरह से बात करेंगे. लेकिन अगर कल आपने एक अलग तरह से बात कर ली, I say, I did not expect this from you. So expectation मतलब मैंने पहले ही सोचा हुआ था कि कल आप इस तरह से बात करेंगे, ये आज आपने different तरह से कैसे कर लिया. So I did not expect this from you. तो किसी के past के साथ उसको compare करना कि ये जैसे करते आए हैं जैसा वैसे ही करेंगे, या जो आपके belief systems पहले थे आप वैसे ही चलेंगे, ये मैं पहले से ही दूसरे के लिए डिसाइड कर लेती हूँ, और फिर जब वो वैसा नहीं करते हैं, आई फील वेरी वेरी लेट डाउन, वेरी लेट डाउन, एंड वो हर्ट, फिर सैडनेस, एंड फिर एंगर. एंगर भी निकलता, आउटबर्स्ट तो निकलती है. अब बहुत दो बातों में हम फंसते हैं, एक तो औरों से एक्सपेक्ट करना, उसमें भी बहुत चैलेंजेस, और दूसरों की एक्सपेक्टेशंस को मीट करना, वो भी. ये दोनों चीजें हमारे हैप्पीनेस इंडेक्स को
0: मुझसे क्या उम्मीद करते हो, मुझसे क्या चाहिए. बच्चे कितनी बार बोल रहे होते हैं, पेरेंट्स कितनी बार बोल रहे होते हैं.
1: अब दोनों केस में क्या है, इफ यू मीट माई एक्सपेक्टेशंस आई विल बी हैप्पी, एंड अगर मैं आपकी एक्सपेक्टेशंस मीट करती हूँ फिर आप खुश होंगे, तो दोनों चीजों में एक्सपेक्टेशंस का हैप्पीनेस के साथ बहुत डायरेक्ट हमने कनेक्शन रखा हुआ है. और हमें सोचना पड़ेगा कि हमने अपनी खुशी को किस चीज पर डिपेंडेंट कर दिया, कि भविष्य में ये क्या करेंगे, कैसे बात करेंगे, कैसे बिहेव करेंगे, वो मैं पहले प्रेडिक्ट करती हूँ और उसके ऊपर अपनी खुशी को डिपेंडेंट कर देती हूँ, फिर वो वैसा करते नहीं है और फिर मैं उदास हो जाती हूँ. Whose fault is this?
0: उनकी या मेरी? See again, you know, it's now फिर हम बिल्कुल उस deep belief systems पे आ गए हैं जो जिन पर हम, वही पूरा मेरा process उसी पे खड़ा है कि जो आप मुझसे एक तरह से behave करते हुए आ रहे हो, एक तरह से बात करते हुए आ रहे हो, अगर आप मुझसे अलग तरह से बात करोगे तो it's actually
1: It's so natural I get hurt.
0: I get hurt, yes.
1: Belief system change करने ना अपने सारे. I didn't hurt you.
0: I think language.
1: I just changed my behavior. ये बहुत critical हो जाता है कि future prediction पर अपनी खुशी को आधारित कर दिया है, वो खुशी कैसे स्टेबल होगी.
0: तो ये इस बिलीफ
1: क्योंकि वो तो एक भविष्य का प्रेडिक्शन है ना, दिस इज लाइक एन एस्ट्रोलॉजी के मैंने भविष्य का आपका प्रेडिक्शन कर दिया और उस पर अपनी खुशी को बेस कर दिया, और फिर अगर वो सही नहीं निकली तो मेरी खुशी गई ऐसे, एंड फिर मैं उसका ब्लेम किस पर डाल देती हूँ. यू डिड नॉट मीट अप टू माई एक्सपेक्टेशंस. नो, मैंने एक्सपेक्टेशंस पहले क्रिएट क्यों की,
0: लेकिन मुझे पता भी नहीं होता ना कि मैंने की हुई है.
1: इसी को तो अब अवेयरनेस रखनी है कि किन किन लोगों से क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हम रखते हैं.
0: ऐसे हम कटते जाएंगे फिर सबसे.
1: नहीं, कटते क्यों जाएंगे हम सबसे. आपको पता है हमारे रिलेशनशिप्स कितने अच्छे हो जाएंगे अगर हमने एक्सपेक्टेशंस नहीं रखे. क्या होगा फर्क.
0: अच्छा, एक्सपेक्टेशंस ही नहीं रखी. एक्सपेक्टेशन बच्चे के साथ अगर हमने नहीं रखी तो आई डोंट इवन एक्सपेक्ट कि इधर यू गोइंग टू गिव मी रिस्पेक्ट इवन दिस मच. दिस इज ऑल्सो एक्सपेक्टेशन.
1: अच्छा, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं. एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि आपने कहा एक्सपेक्टेशंस रखना नेचुरल है, लेकिन क्या डिटैच्ड एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं कि एक्सपेक्टेशंस रखेंगे
0: तब भी ठीक, नहीं भी किया तब भी,
1: लेकिन अगर नहीं किया तो हम ऐसे नहीं जाएंगे. ये तो कर सकते हैं साथ साथ या ये नहीं कर सकते.
0: आई थिंक सो, यस,
1: क्योंकि नहीं तो फिर हम ऐसे ऐसे
0: होते रहेंगे.
1: अगर हमें अपने जीवन,
0: गुड, यू गिव अस वन सम ब्रीदिंग स्पेस, वी कैन डू दैट.
1: ये तो कर सकते हैं.
0: इवन हस्बैंड ने भी अगर बुरे तरह से रिएक्ट किया, मतलब अच्छा वाला प्यार से बात करते थे और आज आके ऐसे गंदे तरीके से रिएक्ट किया, तो हम परेशान नहीं करेंगे अपने आप को.
1: वो तो हो सकता है ना, क्योंकि जैसे ही आप वो करोगे तब हो सकता है कि आपके एक्सपेक्टेशंस फिर मीट भी हो जाएंगे कि वो आपकी स्टेबिलिटी से वो भी जल्दी से ठीक होकर ही विल कम बैक टू. सी इवन सेइंग आई एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू, दिस इज अ वोकैबुलरी विच सेज डू इट अकॉर्डिंग टू मी. जो मुझे चाहिए आप अपने जीवन को वैसा. सी हम क्या होता है, लोगों की एक्सपेक्टेशंस मीट करने की कोशिश में कहीं ना कहीं हम अंदर बहुत सफोकेट होने लगते हैं हम, और फिर हमारी वोकैबुलरी भी ये कहती है मैं उनके लिए ये कर रहा हूँ, मैं उनके लिए ये कर रहा हूँ. इमेजिन अ लाइफ लाइक दिस, मैं इनके लिए ये कर रहा हूँ. नहीं, अगर किसी के कहने पर आप कुछ कर भी रहे हैं तो वोकैबुलरी शुड बी मुझे अच्छा लग रहा है इसीलिए मैं ये कर रहा हूँ. क्योंकि अगर मैं आपके लिए कर रहा हूँ ना, और फिर अगर आप मेरे से खुश नहीं हुए तो आपको पता है मैं कितना रिजेक्टेड फील करने वाले हूँ उसके बाद.
0: नो, बट इफ आई वांट टू मीट योर एक्सपेक्टेशंस, यू नो, सपोज मुझे पता है
1: आई वांट टू मीट योर एक्सपेक्टेशंस. इफ यू वांट टू मीट माय एक्सपेक्टेशंस, सबसे पहले आपको उनको अपना एक्सपेक्टेशंस बनाना पड़ेगा. सी अगर एक पेरेंट्स बच्चे से कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है, अगर बच्चा ये सोच सोच कर करेगा मैं उनके लिए कर रहा हूँ, मैं उनके लिए कर रहा हूँ, आई डोंट थिंक इट्स द राइट एनर्जी. अगर बच्चे को पेरेंट की वो बात अच्छी लग रही है, समझ में आ गई है, एक्सेप्ट कर लिया, अब मैं अपने लिए कर रहा हूँ.
0: लेकिन बच्चा जो है समझता है कि मेरे लिए ये ठीक नहीं है. सपोज एनडीए में जाना, मेरा मन है एनडीए में जाने का, पेरेंट ने मना कर दिया नहीं जाना, बच्चा मान जाएगा कि ठीक है, क्योंकि वो बहुत पेन में चले जाएंगे, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, ये हो जाएगा. उसे नहीं पसंद था, बट ही एक्सेप्टेड पेरेंट्स वर्डिक्ट, यू नो, पेरेंट्स एक्सपेक्टेशंस, और उसने वो किया जो वो चाह रहे थे, बिकॉज ही वॉज नॉट एबल टू सी.
1: नहीं, वो करने से पहले उसको अपने साथ सॉर्ट आउट करनी पड़ेगी बात. दोनों में से एक तरफ डिसीशन लेने से पहले या तो बात करके उनके साथ अपनी बात शेयर करके आप सॉर्ट आउट कर लो. लेकिन अगर आप उनकी बात को स्वीकार कर रहे हो, आप उसको तब तक नहीं करो जब तक आपने उसको अपना नहीं बनाया. सी इफ आई रिस्पेक्ट यू, या मैंने आपकी खुशी के लिए कर लिया, चलो आपने कहा पेरेंट्स बहुत हर्ट हो जाएंगे, मैंने आपके लिए किया ना, लेकिन मुझे अपने आप को कहना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा ये कि मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये खुश हो, और उसके लिए मैं ये करना चाहता हूँ. इट हैज टू बी मी. इफ इट इज नॉट माई डिसीशन आई विल बी इन पेन थ्रू आउट व्हाइल आई एम डूइंग इट. लेकिन अगर मैंने उसको अपने लिए कर लिया, फिर उसकी जिम्मेवारी, उसमें जितना एफर्ट चाहेगा. देखो, खुश रहकर कैसे करोगे, बात ये हो रही है खुश रहकर करूं करना.
0: अगेन ओके, मैंने इसलिए किया कि मेरे पेरेंट्स खुश हो जाते और उससे मुझे खुशी मिल रही है.
1: लेकिन अब मैं अपने लिए ये कर रहा हूं.
0: ओके, मैंने किया क्योंकि मुझे पता था ये करने से मेरे पेरेंट्स को खुशी मिल रही थी, विच वॉज गिविंग मी हैप्पीनेस, राइट. फिर काफी टाइम बाद मैंने किया, तो मेरे पास वो बात तो रही कि मैंने इसे अपना थॉट, अपनी सोच तब बनाया था, क्योंकि तभी तो मैं उसमें एक्सेल कर पाऊंगा. अगर मैंने उस अपना बनाया होगा, मैं उसे मैं एक्सेल भी कर जाता हूँ. लेकिन ये थॉट तो मेरे साथ ही रहा कि मेरे पेरेंट्स की खुशी इसमें थी और इसीलिए मैंने भी किया था.
1: लेकिन आपने सोच समझ के उस टाइम किया था. देखो, उसके बाद एक बार उसने आपने उस चीज को अपना बना लिया, आपके पेरेंट्स उस इक्वेशन से बाहर हो जाते हैं.
0: Because it is between you and the work.
1: Yeah, when whatever decision आपने जो निर्णय लिया अपनी life में, चाहे वो career का है, चाहे वो आपकी relationships का है, जब तक I know one brother जिनका एक relationship था, ठीक है, the mother did not like the idea, the mother did not approve of the girl, and भले उनका relationship बहुत strong था, लेकिन अपने parents के लिए उन्होंने उस relationship को गिव अप किया. और ये बहुत सारे बच्चों के साथ होता है आज. लेकिन अब भले वो दूसरी तरफ सेट भी हो जाते हैं, कहीं और शादी हो जाती है, वो कॉन्स्टेंटली वो थॉट इतना डीप है माइंड पर, क्या मैंने सही किया या नहीं किया, लेकिन मेरी खुशी तो वहाँ थी, मैंने ये नहीं किया, मैंने अपनी मदर के लिए किया. अगर बार बार मैंने अपने पेरेंट्स के लिए ये किया, मैंने अपने पेरेंट्स के लिए किया, कहीं ना कहीं आपने पहले तो आप दर्द में रहेंगे फुल टाइम जब तक आपकी वो थॉट है, और वो आपके रिलेशनशिप में आपके पेरेंट्स के साथ वो तो निकल ही आएगा सारा बाहर, मैंने आपके लिए क्या क्या किया. यू नो, एक दिन भी जब सामने वाला जिसके लिए आपने वो किया,
0: उसने अगर कुछ गलत किया, हाँ,
1: exactly.
0: क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन उनसे इतनी ज्यादा हो जाती है,
1: स्पेशली अगर मैंने आपके लिए कुछ कर दिया ये सोच करके मैंने आपके लिए किया, देन आई विल ऑल्सो एक्सपेक्ट के
0: आप वही आप
1: में, एंड अगर आपने फिर नहीं किया, मैंने कहा मैंने आपके लिए क्या क्या किया, और मेरी लिस्ट तो यहाँ टॉप ऑफ द स्क्रीन पे हमेशा रेडी होती है कि मैंने आपके लिए क्या क्या क्या क्या किया, आपने क्या किया, दिस देन बिकम्स मोर लाइक अ बिजनेस एंड इट्स नो मोर अ रिलेशनशिप. फिर वो बहुत दर्द में रहेंगे, तो खुद भी दर्द में रहेंगे, पेरेंट्स के साथ जो एनर्जी एक्सचेंज होगा वो भी दर्द में है, जिस भी प्रोफेशन या जिस भी रिश्ते में जुड़े वहां भी दर्द है, और ये सब हो इसलिए रहा था क्योंकि पेरेंट्स को खुशी देने खुशी दे पाएंगे, इतना दर्द क्रिएट करके खुशी दे पाएंगे नहीं. तो टाइम लो, अपने आप से बात करो, समझाओ, जब तक वो चीज मेरी
0: अपनी
1: नहीं हो जाती. आपको खुशी देने के लिए भी अगर मैंने किया तो मैंने किया क्योंकि मैं खुशी वो देना, देन इट्स ओनली मी माय डिसीजन, अदरवाइज आई वुड फील माइट एज वेल नॉट डू इट. ऐसे करने का कोई फायदा नहीं रहेगा जो पूरा टाइम ये माइंड पर चलता रहेगा आपके लिए क्या आपके लिए क्या आपके लिए क्या, वो दर्द क्रिएट करने वाला है. तो ये जो एक्सपेक्टेशंस हम रखते हैं और एक्सपेक्टेशंस मीट करने की प्रयास में जो सारा दिन लगे हुए हैं, ये भी हमारी स्टेबिलिटी को बहुत ऊपर नीचे करता रहता है. तो एक एक्सपेक्टेशंस भले रखो कि आप ऐसा करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन मेरी खुशी उस पर डिपेंडेंट नहीं है. उससे क्या होगा, आप एक्सपेक्टेशन रखेंगे लेकिन अगर वो पूरी नहीं हो पाई
0: तो दैट्स ओके,
1: आप हर्ट नहीं होंगे. सारा रिएक्शन कब आता है, जब हम हर्ट हो जाते हैं. एक्सपेक्टेशन तो साइड पर हो जाती है, लेकिन मैं हर्ट हो गई तब मैं रिएक्ट करती हूँ. हर्ट नहीं अगर हुई तो रिएक्ट नहीं करूंगी, रिएक्ट नहीं करूंगी तो आपको इम्पावर कर सकूंगी कि आप वो कर लेंगे. यू नो, बच्चे को 90% नहीं मिला, लेकिन अगर मैं हर्ट नहीं हुई, गुस्सा नहीं किया, एंड आई गिव दैट लव एंड एक्सेप्टेंस, वो अगली बार और बेटर परफॉर्म कर लेगा. लेकिन मैं, यू डिड नॉट लिव अप टू माई एक्सपेक्टेशंस, तुम्हारे ऊपर मेहनत हम इसलिए इतनी करते हैं, ऑल दिस वोकैबुलरी विल ब्रिंग यू डाउन. एनीथिंग विच ब्रिंग्स मी डाउन, नेक्स्ट इट विल ब्रिंग यू डाउन. And then it's energy of pain.
0: Wonderful. Somewhere it's unexpected to really understand what we have been expecting. बहुत बार हम कहते तो हैं लेकिन समझ नहीं पाते कि हमारी expectations कितनी high होती हैं और हमारे से जो expectations हैं उन्हें meet करने के लिए हम कितने तत्पर रहते हैं. अगर आपके पास कोई सवाल है, कोई बात मन में उठ रही है, आपका स्वागत. आप हमें ईमेल पर या फिर फोन पर संपर्क कर सकते हैं. हमारे फोन नंबर्स हैं 0124-266-7000, 999-344-555, 999-344-666, 9873-666-555. हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org. आने वाली कड़ियों में कुछ और बातें करेंगे. आपसे विदा लेते हैं. ओम शांति.

0: वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, हमारा सवाल था कि कार्यक्रम में किस क्रांतिकारी की चर्चा की गई। इसका सही जवाब है मोहन किशोर नामदास। और सही जवाब भेजने वाले हमारे इस बार के दो भाग्यशाली श्रोता हैं, खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा और महेश्वर से प्रेमलाल वर्मा। आप दोनों ही श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूर वीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार

भारतीय ज्ञान परंपरा के आकाश में कुछ ऐसे नक्षत्र उदित हुए हैं जिनका प्रकाश समय की सीमाओं को लांघकर पीढ़ियों का मार्ग आलोकित करता रहा है। आयुर्वेद के पुनरुत्थान से जुड़े एक ऐसे ही महान व्यक्तित्व का नाम है डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति। जब परंपरा और आधुनिकता के बीच संवाद की आवश्यकता थी, तब उन्होंने आयुर्वेद की सनातन चेतना को नए युग की धड़कनों से जोड़ा। उनके लिए आयुर्वेद केवल चिकित्सा पद्धति नहीं थी, बल्कि वो आयुर्वेद को भारतीय संस्कृति की जीवंत आत्मा मानते थे। उसे जीवन को संतुलन, स्वास्थ्य और समरसता प्रदान करने वाली एक संपूर्ण दृष्टि मानते थे। ज्ञान उनकी साधना था, सेवा उनका धर्म और आयुर्वेद का उत्थान उनका संकल्प। वो आधुनिक भारत में आयुर्वेद चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के सबसे प्रमुख प्रणेताओं में से एक थे। डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति का जन्म 3 मार्च सन 1880 को आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले के माधोवरम गांव में एक कृषक परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम अचंता रमैया था। परिवार के आध्यात्मिक वातावरण ने उनके व्यक्तित्व की नींव रखी। पिता की प्रेरणा से ही उन्होंने वेद पुराण और संस्कृत भाषा का गहन अध्ययन किया। उनके बाल्यकाल पर उनके दादा सुब्बा रायडू और प्रसिद्ध समाज सुधारक कुंदुकुरी वीरेश लिंगम का गहरा प्रभाव पड़ा। इन दोनों विभूतियों के सानिध्य ने उनके भीतर ज्ञान और समाज सेवा के बीज बोए। इसी बीच एक ऐसी घटना घटी जिसने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। उनकी माताजी गंभीर रूप से बीमार हुईं। उपचार के दौरान अचंता लक्ष्मीपति की भेंट राजमहेंद्रम के एक प्रसिद्ध वैद्य डॉक्टर सीतारमैया से हुई। ये केवल एक वैद्य से भेंट नहीं थी, बल्कि आयुर्वेद से उनका पहला सटीक परिचय था। डॉक्टर सीतारमैया ने उन्हें आयुर्वेद के व्यावहारिक सूत्रों से परिचित करवाया और उनके मन में इस भारतीय चिकित्सा परंपरा के प्रति आदर भाव जागृत किया। इस तरह भारत की इस अमूल्य विरासत को नई प्रतिष्ठा दिलवाने का संकल्प उनके मन में जागा।

ये वो समय था जब भारत में आधुनिक चिकित्सा शिक्षा का प्रभाव बढ़ रहा था। अचंता लक्ष्मीपति ने आधुनिक चिकित्सा पद्धति को समझने का निश्चय किया। सन 1904 में उन्होंने बीए की शिक्षा पूरी की तथा छात्रवृत्ति प्राप्त कर मद्रास मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लिया। इस तरह सन 1909 में उन्होंने एलोपैथी चिकित्सा में प्रामाणिक डिग्री हासिल की। सन 1910 में उन्होंने मद्रास में अपनी प्रैक्टिस शुरू की और वो वेंकटगिरी के राजा जैसे संभ्रांत वर्ग के पारिवारिक चिकित्सक बने। लेकिन सन 1914 में ब्रिटिश सरकार द्वारा मद्रास मेडिकल रजिस्ट्रेशन एक्ट पारित किया गया, जिसका उद्देश्य आयुर्वेद को गैर मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धति घोषित करना था। इसके विरोध में डॉक्टर लक्ष्मीपति ने अपना नाम एलोपैथी के मेडिकल रजिस्टर में दर्ज करवाने से इनकार कर दिया। ब्रिटिश सरकार के इस कदम को उन्होंने केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं माना, उन्होंने इसे भारतीय ज्ञान परंपरा के सम्मान का प्रश्न समझा। ये उनके पेशेवर जीवन के लिए जोखिमपूर्ण समय था, लेकिन इसी समय उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व का प्रवेश हुआ, वैद्य रत्न पंडित दीवी गोपाल चारलु। वो मद्रास के सुप्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान थे जिन्होंने अचंता लक्ष्मीपति की प्रतिभा को पहचाना तथा अपने संरक्षण में उन्हें आयुर्वेद के गहन अध्ययन का अवसर दिया। सन 1914 से 1919 तक अचंता लक्ष्मीपति ने उनसे गहन ज्ञान प्राप्त किया। सन 1919 में विश्व स्पेनिश फ्लू नामक घातक महामारी की चपेट में आ गया। इस महामारी ने दुनिया की एक तिहाई आबादी को अपनी चपेट में ले लिया था। इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण ये महामारी फैली थी। ऐसे कठिन समय में डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति ने आयुर्वेदिक उपचार के माध्यम से हजारों रोगियों को राहत पहुंचाई। इस अनुभव ने उनके इस विश्वास को और भी दृढ़ कर दिया कि भारतीय चिकित्सा पद्धति केवल अतीत की धरोहर नहीं है, बल्कि वर्तमान और भविष्य की आवश्यकता है। इसके बाद उन्होंने एलोपैथी इलाज पूरी तरह से छोड़ दिया और स्वयं को आयुर्वेद के लिए समर्पित कर दिया। सन 1920 में उनके गुरु वैद्य रत्न पंडित दीवी गोपाल चारलु का निधन हो गया और गुरु का दायित्व शिष्य के कंधों पर आ गया। डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति को मद्रास आयुर्वेदिक कॉलेज का प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया। सन 1920 से 1928 तक उन्होंने इस संस्था को केवल एक शिक्षण केंद्र नहीं, बल्कि उसे आयुर्वेदिक चेतना का केंद्र बिंदु बना दिया। इस कॉलेज को चलाने के लिए मुंगला के राजा ने भी बड़ी वित्तीय सहायता प्रदान की थी। डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति स्वास्थ्य को जीवन पद्धति का विषय मानते थे। यही कारण है कि उन्होंने सन 1926 में मद्रास के पास स्थित आवड़ी में आरोग्य आश्रम समिति की स्थापना की। ये केवल एक आश्रम नहीं था, बल्कि स्वास्थ्य और प्रकृति के समन्वय का प्रयोग था। एक ऐसा स्वास्थ्य ग्राम जहां उपचार के साथ साथ जीवन जीने की कला सिखाई जाती थी। डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति ने युवा वैज्ञानिक डॉक्टर यल्ला प्रगदा सुब्बाराव की प्रतिभा को पहचान कर उनके प्रारंभिक शोध कार्यों को प्रोत्साहित किया और उनकी उच्च शिक्षा का मार्ग प्रशस्त किया, जिन्हें चमत्कारिक औषधियों का जनक माना जाता है। डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति पर रमण महर्षि के आध्यात्मिक विचारों का गहरा प्रभाव था, जिन्होंने उनके चिंतन और विचारधारा को एक सार्थक दिशा प्रदान की। वो गांधी जी के विचारों से भी अत्यधिक प्रभावित थे तथा स्वदेशी आंदोलन में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई।

सन 1933 में डॉक्टर अजंता लक्ष्मीपति की सेवाओं और नेतृत्व क्षमता को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हुई। बीकानेर में आयोजित ऑल इंडिया आयुर्वेद महासम्मेलन में उन्हें अध्यक्ष चुना गया। धीरे धीरे उनकी ख्याति पूरे देश में फैल रही थी। लोग उन्हें केवल एक चिकित्सक के रूप में नहीं बल्कि आयुर्वेद का पुनरुत्थान करने वाले मनीषी के रूप में देख रहे थे। लेकिन उनकी सबसे बड़ी यात्रा अभी शेष थी, एक यात्रा जो उन्हें गांधी जी के और निकट ले गई, एक यात्रा जिसने गांव गांव जाकर स्वास्थ्य संदेश पहुंचाया। सन 1938 का साल भारत की स्वाधीनता के स्वप्न से आंदोलित साल था। महात्मा गांधी ग्रामोदय और स्वावलंबन के विचार को जन जन तक पहुंचा रहे थे। इसी समय डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति ने एक अभिनव अभियान आरंभ किया जिसका नाम था आरोग्य यात्रा। वो लगभग 100 चिकित्सकों के साथ पैदल चलते हुए गांव गांव पहुंचे। उन्होंने लोगों को स्वच्छता, संतुलित जीवन शैली और आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सिद्धांतों का महत्व समझाया। वो पंच शुद्धि प्रणालिका के 5 नियमों का संदेश लिए आगे बढ़ते रहे। अपने इस अभियान में उन्होंने प्रत्येक गांव में कम से कम 1 एकड़ भूमि पर औषधीय पौधों का उद्यान विकसित करने हेतु लोगों को प्रेरित किया। उनका मानना था कि स्वास्थ्य अस्पतालों से नहीं बनता, वो विकसित होता है स्वच्छ विचारों, संतुलित आहार और प्रकृति के सानिध्य में। डॉक्टर लक्ष्मीपति के इन प्रयासों से गांधी जी अत्यंत प्रभावित हुए। सन 1939 में गांधी जी ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से सेवाग्राम आश्रम आने का निमंत्रण दिया। वर्धा का सेवाग्राम आश्रम उस समय राष्ट्रीय चेतना का केंद्र था। सेवाग्राम पहुंचकर उन्होंने केवल एक चिकित्सक की भूमिका नहीं निभाई बल्कि उन्होंने स्वास्थ्य और ग्राम विकास के गांधीवादी स्वप्न को मूर्त रूप देने में सहयोग दिया। गांधी जी ने उन्हें आश्रम में एक विशाल उद्यान विकसित करने का दायित्व सौंपा। इस उद्यान का उद्देश्य केवल औषधियां उगाना नहीं था बल्कि ये सिद्ध करना था कि भारत के गांव अपने स्वास्थ्य की रक्षा स्वयं कर सकते हैं। डॉक्टर लक्ष्मीपति की धर्मपत्नी श्रीमती रुक्मिणी लक्ष्मीपति भी राष्ट्र सेवा को समर्पित रहीं। वो एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थीं और सन 1946 में मद्रास प्रांत की सरकार में वो सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्री बनी। इस तरह पति पत्नी ने साथ मिलकर भारतीय चिकित्सा के विकास की एक नई धारा प्रवाहित की। सन 1947 में भारत की आजादी के बाद भी वो राष्ट्र सेवा को समर्पित रहे। गांधी जी के विचारों से प्रेरित होकर वो समाज सुधार के कार्य में भी निरंतर संलग्न रहे। डॉक्टर लक्ष्मीपति अंतरजातीय विवाह के प्रबल पक्षधर थे। यही कारण है कि उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह अपनी जाति से बाहर एक

भाषा में चिकित्सा पद्धतियों पर लगभग 100 पुस्तकें लिखीं, जिनमें से 63 पुस्तकें विशुद्ध रूप से भारतीय चिकित्सा प्रणालियों और आयुर्वेद के अनुवादों पर आधारित थीं। उनकी आत्मकथा आयुर्वेद के पुनरुत्थान का प्रामाणिक दस्तावेज मानी जाती है। डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति को देश भर में भेषज रत्न, प्राणाचार्य तथा आयुर्वेद वाचस्पति जैसी कई उपाधियों से विभूषित किया गया था। आजीवन देश और समाज की सेवा करते हुए उन्होंने 6 अगस्त सन 1962 को अंतिम सांस ली। नमन ऐसी महान विभूति को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की। हमारा सवाल है कि कार्यक्रम किस व्यक्तित्व पर केंद्रित था। सवाल एक बार फिर सुन लें, कार्यक्रम किस व्यक्तित्व पर केंद्रित था। आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

0: बहुदान की तरह साल की अखंड पदयात्रा में विनोबा ने सर्दी, गर्मी और बारिश की सतत मार सहन की है। कुदरत की क्या करामात थी कि जहां सबसे अधिक गर्मी, वहीं गर्मी के दिनों में उनकी पदयात्रा चलती थी। जहां सबसे अधिक ठंड, वहीं ठंड के दिनों में घूमने का कार्यक्रम बनता था। यही हाल बारिश का। बारिश के ही दिनों में उनकी असम यात्रा और केरल यात्रा चली। लोग कहते, बाबा अब तो बैठिए, कब तक घूमते रहेंगे, इतना कष्ट इस जर्जर शरीर को क्यों दे रहे हैं, थोड़ा उसकी तरफ भी तो देखिए।
1: तुम लोग कुछ नहीं जानते, इस यात्रा में इस देह को थोड़ी सी तकलीफ हुई होगी, परंतु बापू सतत मेरे आगे पीछे रहते हैं और मुझे संभालते हैं, इसीलिए तो मुझे ना कोई तकलीफ है ना कोई चिंता।
0: भूदान पदयात्रा में एक डच सज्जन विनोबा जी से मिलने आए। पहले ही मुलाकात में उन्होंने कहा, विनोबा जी आपके भारत में मैं आया था गांधी जी को देखने। मैं दिल्ली गया, बंबई गया और भी कई जगह भटका, परंतु गांधी कहीं नहीं दिखाई दिए। इज ही रियली डेड? क्या वे सचमुच मर गए?
1: नो सर, ही स्टिल लिव्स। सर्वोदय के काम में लगे हुए 4-5 हजार सेवक जो गांव-गांव भटककर तपस्या कर रहे हैं, उनके दिल में गांधी जिंदा बैठा है, उन्हें गांधी जी ही घुमा रहे हैं और मुझे भी।
0: ऐसे ही एक दफा किसी ढलती हुई शाम को बाबा अपने 4-5 साथियों के बीच बैठे हुए थे। लालटेन का हल्का प्रकाश बाबा के मुंह पर पड़ रहा था। बापू के बारे में बातें चल रही थी। बाबा भूतकाल में खोते जा रहे थे, एक के बाद एक प्रसंग कहते जा रहे थे। आखिर उन्होंने आंखें बंद कर ली और धीरे से गदगद आवाज सुनाई दी,
1: वे हुक्म दें और मैं उनके हुक्म को उठा लूं, यही आज तक का मेरा जीवन रहा है।
0: पवनार का पवित्र परमधाम आश्रम, सुबह का शांत शीतल समय। ब्रह्म विद्या मंदिर के सभी सदस्य अपने अपने दैनिक कार्यक्रम में व्यस्त थे। नहा धोकर जब मीराबेन बाबा की छोटी सी कुटिया में जाकर देखती है तो कुछ नई प्रवृत्ति में बाबा अकेले व्यस्त थे। बिछावन अस्त व्यस्त पड़ा था और नीचे बैठक जमाने का प्रयास चल रहा था। पूछा, क्या करना है?
1: नीचे सिर्फ दरी और तकिया ही रखनी है, बाकी सब निकाल दो।
0: मीराबेन ने कहा, बाबा पहले पाट पर की गद्दी निकाल दी, फिर पाट ही निकाल दिया, अब नीचे सिर्फ दरी रखने के लिए कह रहे हैं, क्या बात है?
1: देखो, एक तो हमारी ये छोटी सी कुटिया, उसमें पाट हो तो फिर आने वाले को बैठने में मुश्किल होती है, सब नीचे बैठे और मैं ऊपर बैठूं, यह भी ठीक नहीं। इस दृष्टि से मैंने पाट निकलवा दिया और नीचे बिछाने का शुरू किया, परंतु नीचे की बैठक में मेरी इस मोहिनी पर सबका पांव पड़ता है, यह ठीक नहीं। इसलिए आज से तय किया है कि दिन में दरी पर नीचे ही बैठना और लेटना, रात को पाट पर सोऊंगा और मोहिनी मेरे नीचे नहीं रहेगी परंतु मेरे सिरहाने रहेगी।
0: और विनोबा ने बिस्तर में से एक ब्राउन रंग का कंबल हाथ में लेकर मीराबेन को बुलाया। कोने में बापू का नाम लिखा हुआ था। उनका पारायण बाबा की मुंह से अनेक बार सुनने को मिलता था, आज फिर से सुनने को मिला।
1: तुम जानती हो इस मोहिनी की कहानी? सन 1950 में मेरा दिल्ली जाना हुआ, तब बापू का यह कंबल मुझे बख्शीश में दिया गया, तब से वह मेरे पास ही है। बापू की यह स्मृति है इसलिए उसका नाम मैंने मोहिनी रखा है। रोज नीचे बिछाकर इतने साल सोया हूं, मेरे पास सुरक्षित रहा है। गांधी स्मारक वाले जानेंगे तो मैं मानता हूं कि मुझसे मांगेंगे नहीं, क्योंकि मैं उसे संभालता हूं।
0: वैराग्य के प्रखर वैनाश्वर में जिनके मोह, ममत्व और आसक्ति का कण कण सुलग कर भस्म हो चुका है, निरासक्त सन्यासी का उत्तम नमूना जिसने अपने जीवन के द्वारा दुनिया के समक्ष खड़ा किया है। उस बैरागी को मोहिनी की मोहिनी से मोहित देखा तो मेरा सिर उनके इस अलौकिक प्रेम के आगे झुक गया। मोहन उनके शरीर के रोम रोम में व्याप्त हो गया है। इसकी प्रतीति हुई। मोहन की मीठी याद दिलाने वाली उस मोहिनी सेज पर सोने के लिए रोज रात को जय जगत करके ये शुभ्र वस्त्रधारी मूर्ति जब मच्छरदानी में अदृश्य होती है तब बहुत बार लगता है कि बाबा बापू में समा गए। बापू के शिक्षण का निचोड़ विनोबा ने इस प्रकार रखा है।
1: सत्यम जीवन का लक्ष्य, संयम जीवन की पद्धति, सेवा जीवन का कार्य, यह सब आचरण में उतरे यही भगवान से निरंतर प्रार्थना है।

0: भगवान कृष्ण 12 साल की शिक्षा पूरी करके गुरुकुल से घर जाने वाले हैं। विदा लेते समय गुरु संदीपन के पास आशीर्वाद प्राप्त करते हैं कि जब तक जीऊं मातृ हस्तेन भोजनम मिले। विनोबा जी भी कहते हैं कि
1: जिन श्रीमंत बच्चों को जन्म लेने पर मां के बदले आया का दूध मिलता है वह गर्भ श्रीमंत नहीं, वह गर्भ दरिद्र है। माँ का दूध ना मिले, माँ के हाथ का भोजन ना मिले, उसके जैसा दूसरा दुर्दैव क्या। जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया है उन सबको मैंने अपने हाथों से भोजन पकाकर खिलाया है। जेल में भी जेल को आश्रम बनाते वक्त मैंने रसोई का काम उठा लिया था। मेरे हाथ की रसोई यानी बिना मिर्च मसाले की। पहले तो राजनीतिक कैदियों में से 10-15 लोग ही बिना मिर्च मसाले की रसोई खाते थे क्योंकि सबको तीखा पसंद था। परंतु जब मैंने रसोई बनाना शुरू किया तो सब राजनीतिक कैदी सादी रसोई ही ज़्यादा पसंद करने लगे। धीरे धीरे दूसरे कैदी भी उसमें शामिल होने लगे। फिर तो संख्या इतनी बढ़ गई कि जेलर को प्रार्थना करनी पड़ी कि कृपया आप दूसरे कैदियों के भोजन की जिम्मेदारी मत उठाइए।
0: रसोई को विनोबा फाइन आर्ट कहते हैं। वे हमेशा कहते हैं कि रसोई सुखादु बननी चाहिए और खाना चाहिए अस्वाद की भावना से। रसोई का स्वाद सिर्फ मिर्च मसाले से नहीं आता है, उनमें जब भाव उड़ेला जाता है तब मनपसंद भोजन बनता है। माँ के हाथ से जब रसोई बनती है तब रसोई की प्रत्येक प्रक्रिया में माँ के हृदय का भाव उड़ेला जाता है। उसका वो कर्म उपासना रूप होता है। जेल में सब राजनीतिक कैदी अपने पढ़ने के लिए अपनी रुचि की किताबें मंगवाते रहते थे। जेल का एक सरकारी अफसर उन पुस्तकों को देखकर आपत्तिजनक पुस्तकों पर रोक लगाता था और देने जैसी पुस्तकों की इजाजत देता था। दूसरे सब कैदियों की रोज बर रोज कुछ न कुछ शिकायत सुनाई देती थी कि आज फलानी किताब को रोका गया क्योंकि सरकार की दृष्टि से वो खतरनाक थी। विनोबा की किताबों पर कभी कोई रोक नहीं लगती थी क्योंकि उनकी फेहरिस्त में गीता, उपनिषद, पुराण जैसे आध्यात्मिक ग्रंथ रहते थे। एक दिन किसी ने कहा, हम सहस्त्र किताबें मंगाएंगे तो उनमें से हमें एक दो मिलेंगी और विनोबा की सभी किताबें मंजूर होकर आएंगी। तब विनोबा ने कहा,
1: यह सरकार मूर्ख है, खतरनाक क्या है, उसकी उसे कोई पहचान ही नहीं है। अकल होती तो उपनिषद गीता को सरकार जरूर रोकती और दूसरी किताबें जिनसे वह भड़की हुई रहती है उन्हें आने देती। गीता का आधार नहीं होता तो अंग्रेज सरकार के लिए महाखतरनाक गांधी गांधी ना बनते, तिलक तिलक ना बनते, श्री अरविंद अरविंद ना बनते। जिन ग्रंथों में जीवन का अधिष्ठान है वे ही ग्रंथ जुल्मी सत्ता में बारूद लगा सकते हैं।
0: स्वराज आंदोलन के सैनिकों की सजा थी जेल यात्रा। 1943 में एक बार सिवनी जेल से कैदियों को दक्षिण में वेलूर जेल ले जाया गया। दूसरे कैदियों के साथ विनोबा भी सवेरे वेलूर जेल में पहुंचे। जेलर हाजिर था। सब कैदी राजनीतिक थे इसलिए हर एक को अपनी अपनी आवश्यकता बताने के लिए जेलर ने कहा। प्रत्येक ने अपनी अपनी आवश्यकताएं बताई। जब विनोबा की बारी आई तब उन्होंने कहा,
1: मुझे दो चीजों की जरूरत है। ये जरूरतें पहले पूरी होनी चाहिए। एक तो मेरे सिर के बाल बहुत बढ़ गए हैं इसलिए नाई चाहिए, और दूसरे मैं तमिल सीखना चाहता हूँ इसलिए मुझे कोई तमिल शिक्षक चाहिए।
0: विनोबा ने पहले ही दिन से तमिल भाषा सीखना आरंभ कर दिया। बेचारे तमिल शिक्षक को लगता था कि ये मनुष्य तमिल क्यों सीखता है, क्या मद्रास में व्यापार करना चाहता है। वे जेल में 4 महीने रहे परंतु दूसरे कैदियों की मदद से दक्षिण की चारों भाषाएं तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम उन्होंने सीख ली। वे मानते हैं कि जिस प्रांत का अन्न खाते हैं उस प्रांत की भाषा न सीखे तो वो प्रांत द्रोह माना जाएगा। दूसरा, राष्ट्र की भावनात्मक एकता सिद्ध करने के लिए प्रत्येक अदक्षिणी को दक्षिण की कोई न कोई भाषा सीखनी ही चाहिए। जेल के प्रांगण में एक जगह घास को कतर कर 1945 लिखा था। हर साल ये डिजाइन बदल दी जाती थी। पुरानी घास निकाल डालते थे, चालू वर्ष के अंक बना दिए जाते थे। उसका दृष्टांत देकर विनोबा अपने साथियों को समझाते थे।
1: घास के प्रत्येक तिनके का अपना अपना स्वतंत्र प्रयोजन है, परंतु उन सब तिनकों का मिलाजुला एक सामूहिक प्रयोजन भी है, और वह है 1945 बनाना। यह बात ये तिनके नहीं जानते, वे तो उगते हैं और मिटते हैं, परंतु सब मिलकर एक प्रयोजन सिद्ध होता है। हम सब भी तिनके जैसे ही हैं, हम अपना प्रयोजन देखते हैं, परंतु इस सृष्टि में अपना क्या प्रयोजन है वह हम नहीं जानते, परंतु कोई ऐसा प्रयोजन जरूर है जिसके लिए सृष्टिकर्ता ने हमें पैदा किया।
0: वेलूर जेल में विनोबा और उनके साथी जब पहुंचे, उसके पहले कोंडी वेंकट्टा नाम के भाई वहां पहुंच गए थे और उन्होंने कैदियों में प्रार्थना शुरू करवा दी थी। प्रार्थना में गीता के 11वें अध्याय से कुछ श्लोकों का पाठ कराया जाता था और फिर रामधुन आदि बापू की प्रार्थना करवाते थे। क्रम में कुछ फर्क था। जेल में बापू के कुछ अनुयायी गए, उनको ऐसी प्रार्थना पसंद नहीं आती। वे विनोबा से कहते रहते कि आपको जोर देकर कहना चाहिए कि बापू ने जो क्रम रखा है वही क्रम रखना चाहिए, क्रम भंग होना अच्छा नहीं है, ये बात आपको उन्हें समझानी चाहिए।
1: भाई, मुझसे ये काम नहीं बनेगा। भारत में हिंदुओं में एक ही प्रार्थना चले यह असंभव है। जिसके हृदय को जो स्पर्श करे वही प्रार्थना हो सकती है। हिंदू धर्म की यही विशेषता है कि उसमें हजारों संप्रदाय रह सकते हैं। तिलक ने हिंदू की व्याख्या की, उपास्यानाम अनियमः साधनानाम अनेकता। जिस धर्म में साधना की अनेकता हो, मतलब किसी एक ही निश्चित साधना का आग्रह ना रखा जाए, वही तो हिंदू धर्म है।
0: गोपाल राव काले विनोबा के बचपन के सहपाठी रहे हैं। जेल में रहते समय एक बार उनकी पत्नी विनोबा से मिलने आई। विनोबा की तबीयत के समाचार पूछकर उन्होंने विनोबा से पूछा, क्यों, जेल में कैसा लग रहा है? विनोबा ने लाक्षणिकता में जवाब दिया,
1: आपने सर्कस देखा है ना? सर्कस में मनुष्य पशु पर जुल्म ढाते हैं, जेल में इससे उल्टा होता है। यहां पशु मनुष्य पर जुल्म ढाता है। जेल जीवन का विधायक दर्शन देखिए। सच्चा आश्रमी जीवन तो जेल में भी अनुभव किया जा सकता है। गिनती के कपड़े, पानी का मग और कांजी की कटोरी, इतने से बर्तन, इससे अधिक असंग्रह के व्रत का पालन कहां होगा? नियम से नहाना, खाना, काम करना और घंटी बजते ही सो जाना और उठना, क्रमबद्ध जीवन, बीमार पड़ने की छुट्टी नहीं, भोजन में रोज ही अस्वाद व्रत, इससे अधिक संयम व्रत हम अपने आश्रम में भी कहां पालते हैं? अपने आश्रमों में जेल की अच्छी चीजें अपनाकर सुधार करना होगा।
0: सिवनी जेल में राजनीतिक कैदी अपने रिश्तेदारों को पत्र लिख सकते थे, परंतु विनोबा को यह भेद मंजूर नहीं था, इसलिए वे किसी को भी पत्र नहीं लिखते थे। 3 साल में उन्होंने किसी को पत्र नहीं लिखा था। एक दिन न जाने जेलर का क्या हुआ कि वो विनोबा के पास आकर बैठ गया और पूछने लगा,
2: आपके जीवन में दुख जैसी कोई चीज नहीं है?
1: हाँ है, परंतु वह दुख कौन सा है यह आप ही ढूंढिए। मैं आपको 7 दिन का समय देता हूं।

0: विनोबा जी, पिछले एक सप्ताह में मुझे कुछ मिल नहीं रहा। कृपया आप ही बताइए, आपको कौन सा दुख है?
1: इस जेल में सूर्योदय और सूर्यास्त का दर्शन नहीं होता, यह मेरा सबसे बड़ा दुख है।

0: लोग पूछते कि विनोबा जी, आपको 1200 कैलोरी भोजन कैसे पर्याप्त मालूम होता है? तो हंसते हंसते विनोबा जी जवाब देते,
1: अरे भाई, मेरी खुराक कितनी है यह आप कैसे जानेंगे? इन 1000 कैलोरी के अलावा मैं गीता के 18 अध्याय खाता हूँ और उससे भी अधिक चारों ओर फैला हुआ विशाल आकाश खाता हूँ। अब आपको कुछ कहना है?

0: सर्दी के दिनों के अलावा यात्रा में विनोबा को यदि कभी चार दीवारी के भीतर सोना पड़ता तब उन्हें बहुत खटकता। वे कहते हैं,
1: व्यापक और निर्बंध चिंतन करना हो तो वह गुफा में नहीं खुले आसमान के नीचे ही हो सकता है।
0: स्वराज आंदोलन के कुछ राजनीतिक कैदियों को जेल में बी क्लास मिलता था। इन कैदियों को रसोई बनाने के लिए एक हाथ कैदी भी मिलता था और काम भी कम करना पड़ता था, परंतु कुछ साथियों को सी क्लास भी मिलता था। जेल में सबको आटा पीसना पड़ता था, बूढ़ों और बीमारों को भी छूट नहीं थी। इसीलिए विनोबा ने जेलर से कहा,
1: आपको जितना आटा चाहिए उतना अनाज दे दीजिए, हम पीस कर आपको दे देंगे।
0: और फिर बूढ़ों और बीमारों के हिस्से को आटा वे खुद पीसने को तैयार हो गए। एक दिन विनोबा के कानों बात आई, दूसरों से अधिक आटा पिसाने में विनोबा का क्या बिगड़ता है, उन्हें खुद को थोड़े ही पसीना पड़ता है। इस बात की सच्चाई पकड़कर विनोबा ने रोज 21 पौंड अनाज पीसना तय किया। ऐसा ही एक प्रसंग धुलिया जेल का है। उस जेल में राजनीतिक कैदियों में दो विभाग थे, तीखी वाले और फीकी वाले। जो मिर्च नहीं खाते थे उनके लिए फीकी दाल भाजी बनाई जाती थी। एक दिन जेलर का रुख बदला, सभी को मिर्च वाली दाल भाजी मिले, ऐसा हुक्म उसने निकाल दिया।
1: मैंने कई सालों से मिर्च का स्पर्श नहीं किया था, उस दिन मिर्च वाली दाल भाजी खानी पड़ी। मैं भोजन कर रहा था, आंखों से पानी बह रहा था, नाक से भी। उसी समय जेलर साहब पधारे, मुझे देखते हुए बोले, विनोबा ये क्या हो रहा है? मैंने जवाब में कहा, आपकी भगवती का प्रसाद खा रहा हूँ।
2: मैंने आपकी दाल में मिर्च डालने को तो नहीं कहा था।
1: जो सबको वही मुझे। और दूसरे दिन से फीकी तीखी की अनुमति मिल गई।
0: ब्रह्म विद्या मंदिर के प्रवेश द्वार पर ही छोटी सी कोठरी, उस कोठरी में विनोबा दिन में कई बार घूमते रहते थे। कान की बीमारी के कारण भी चक्कर आ जाते थे, इसीलिए बाहर घूमना बंद करना पड़ा था। परंतु जन्म से ही घूमने की आदत वाला जीव पालथी लगाकर कैसे बैठा रहेगा, अतः एक कोने से दूसरे कोने घूमते रहते थे। एक दिन इसी तरह चक्कर लगाते लगाते कहने लगे,
1: एक बार जेल में मुझे इससे भी छोटी कोठरी मिली थी। उस वक्त राजनीतिक कैदियों को कोई शारीरिक काम भी नहीं दिया जाता था, किताब तक पढ़ने की मनाही थी। पेन पेंसिल कागज कुछ भी साथ नहीं रखने देते थे। दिन भर बेकार रहना, बाहर जाने की भी छूट नहीं, बिल्कुल पागल बनाने का ही कार्यक्रम था। परंतु मैंने तो अपना दिन भर का कार्यक्रम बना लिया था। कुल 10 घंटे में सोता था, 2 घंटे ध्यान, 4 घंटे खाना पीना, नहाना धोना इत्यादि काम, और 8 घंटे घूमना उसी कोठरी में, हाइपोटेनियसली एक कोने से दूसरे कोने तक इसी तरह घूमता था। घंटे का मैं 1.5 मील गिनता था। उस हिसाब से जेल की उस छोटी सी कोठरी में भी मैं रोज 12 मील घूम लेता था।
0: जेल की उस अंधेरी कोठरी में खुला आसमान तो कहां से मिलता, और ये प्राणी था खुले आकाश का प्राणी। परंतु जब जो परिस्थिति मिली उसे सर्वोत्तम रूप में बदल देने की कला विनोबा को आती है। स्थूलाकाश न सही, चिदाकाश की असीमता का आनंद वे लूटते रहे। विनोबा आगे कहने लगे,
1: एक बार रात को 1 बजे रोज की भांति में चक्कर काट रहा था और मेरा चिंतन चल रहा था। इतने में वार्डर आया, उसने मुझे चक्कर काटते देखकर दरवाजा खटखटाया। मैं तो चिंतन में डूबा हुआ था, जवाब कौन देता। वह बेचारा घबराया, नजदीक आकर हिलाकर मुझे पूछने लगा, क्या हुआ है? फिर मैंने चिंतन का अर्थ और चिंतन के परिणाम आदि उसे समझाए। वह खुश हो गया और दूसरे ही दिन प्रसाद रूप से खुले में घूम सकूं ऐसी जगह दी और किताबें पढ़ने की भी इजाजत दी। परंतु उसने कहा कि ये तो ऐसी एकांत जगह में भी आनंदित रहता है, इसे कोई दुख नहीं है, इसको सजा नहीं होती, इसलिए इसे दूसरी जगह भेजो।
0: १९३२ में सरकार ने कांग्रेस को गैर कानूनी करार दिया। उस वक्त विनोबा खानदेश में घूम रहे थे। जलगांव में एक सज्जन ने उनके प्रवचन का प्रबंध किया था। इतने में खबर आई कि कांग्रेस गैर कानूनी करार दे दी गई है। उक्त सज्जन डर गए। विनोबा ऐसे डर से बहुत व्यथित हुए। खादी तो वीर की, अहिंसक की पोशाक है। निश्चित समय पर, नियत स्थान पर उन्होंने बहुत कड़े शब्दों में अपनी व्यथा प्रकट की। आज मैंने अपनी माता का प्रेत देखा, निर्जीव खादी का मुर्दा देखा। भाषण के बाद तुरंत वे पकड़े गए और धूलिया जेल ले जाए गए।

0: जेल में मुझे ऊपर का वर्ग मिला था, परंतु अपने साथियों से अलग होकर आराम से रहना मुझे पसंद नहीं था और मैं स्वयं ही निचले वर्ग में आ गया। धुलिया की इस जेल में जमनालाल बजाज, ऋषभदास राका, साने गुरुजी जैसे सज्जन अनायास एकत्र हो गए थे। सहज ही सबने मुझसे आग्रह किया कि मैं रोज गीता पर कुछ बोलूं। साथियों के प्रेम के वश होकर मैंने अपने अंतर की गहराई से गीता पर प्रवचन किए। दरअसल वह मैं नहीं बोलता था, कोई बुलवाता गया और मैं बोलता गया।
1: प्रवचन करते समय बाबा उसमें तन्मय हो जाते थे। यूं तो गीता के सभी अध्याय पवित्र हैं, परंतु कुछ अध्याय अधिक पवित्र लगते हैं। 5वें, 9वें, 12वें, 15वें अध्याय के प्रवचन का आरंभ करते समय बाबा सिसक सिसक कर रो पड़े। नवे अध्याय के प्रवचन के लिए जब वे खड़े हुए तो सतत अश्रुधारा बहती रही। 5 मिनट तक वे बोल ही नहीं सके।

0: वाई की प्राज्ञ पाठशाला के तर्क तीर्थ लक्ष्मण शास्त्री उस समय धुलिया जेल में थे। एक दिन उन्होंने कहा, कभी कभी बाबा स्वयं स्फूर्त होकर बोलते हैं, ऐसा लगता है सद्भाग्य से गीता के ये प्रवचन अमर हो गए, क्योंकि सुनने वालों में साने गुरुजी जैसे गणेश जी मौजूद थे, जिन्होंने करीब करीब अक्षरशा ये प्रवचन लिख लिए। गीता प्रवचन की जन कहानी सुनाते हुए विनोबा जी बहुत बार कहते हैं,
1: गीता प्रवचन धुलिया जेल में हुए। वह जमाना था सन 1932 के तीव्र आंदोलन का। जेल जीवन में रोज नई नई घटनाएं घटती रहती थीं। सारा जीवन अनिश्चित सा था। ऐसी स्थिति में प्रवचन सांगोपांग पूरे होंगे, सो व्यवस्थित रिपोर्ट के लिए सिद्धहस्त निष्ठावान कोई साहित्यिक मिल जाएगा, भूदान यज्ञ का स्पीयर हेड बनने का इस ग्रंथ को सौभाग्य मिलेगा, हिंदुस्तान की सब भाषाओं में इसका उत्तम अनुवाद करने वाले अनुवादक प्राप्त हो जाएंगे। कौन जानता था, यह सब ईश्वर की योजना ही हो सकती है। प्रवचन करने वाला व्यक्ति तो निमित्त मात्र था, कोई दूसरी प्रेरक शक्ति थी जो बोल रही थी, ऐसा वक्ता श्रोता सभी को अनुभव में आ रहा था।
0: गीता प्रवचन ग्रंथ इतना लोकप्रिय हुआ है कि भारत की सभी भाषाओं के अलावा 2-3 विदेशी भाषाओं में भी ये अनुवादित हुआ है। बिल्कुल सादी सादी सरल भाषा, दृष्टांतों से भरपूर, लगता ही नहीं कि हम कोई तत्व ग्रंथ पढ़ रहे हैं। गीता को जीवन में कैसे उतारना, इसका पथ प्रदर्शन उन प्रवचनों में होता है। निर्मोही बाबा भी अपनी इस किताब पर मुग्ध है और कहते हैं कि आप भारत के घर घर में ये किताब पहुंचा दीजिए, मेरा भूदान का काम हो जाएगा।

0: भारतन कुमारप्पा और मैं जेल में साथ हो गए थे। भारतन जी को हिंदी नहीं आती थी, उनकी मातृभाषा तमिल थी, परंतु तमिल भी वे भूल गए थे। उनका सारा व्यवहार अंग्रेजी में ही चलता था। एक बार उन्होंने मुझसे पूछा, मुझे आप हिंदी सिखाएंगे? और मेरे हाँ कहने पर शिक्षण शुरू हुआ। हिंदी सिखाने के लिए मैंने रामचरितमानस पसंद किया। पहले ही वर्ग में मैंने उनसे कहा कि बाइबल और शेक्सपियर, इन दोनों का जोड़ है तुलसी रामायण। यह सुनते ही भारतन जी खुश हो गए, कहने लगे,
1: ये कई वाक्य में अपने सारा सार बता दिया। तुलसी रामायण में ऐसा कौन सा जादू है जो कि सबको इतना मंत्रमुग्ध करता है, यह आज ही मेरे समझ में आया।
0: सच कहा, ईसाइयों का धर्म ग्रंथ है बाइबल, उसकी भाषा मीठी और सरल है। शेक्सपियर भी महान कवि और नाटककार हो गया है। अंग्रेजी भाषा के साहित्य में उसका अद्वितीय स्थान है। साहित्य की दृष्टि से उनकी योग्यता महान और अध्यात्म की दृष्टि से बाइबल की योग्यता महान। इन दोनों गुणों का सुभग समन्वय तुलसी रामायण में हुआ है।

0: अपनी यात्रा के दौरान 18 अप्रैल 1951 को पोचमपल्ली गांव के हरिजन विनोबा से मिलने आए। अगर हमें जमीन मिली तो हम मेहनत करेंगे और मेहनत का खाएंगे। उन्हें 80 एकड़ जमीन चाहिए थी। विनोबा बोले, मैं तुम्हें जमीन दिलवाऊंगा, परंतु शर्त यह है कि तुम सबको मिलजुल कर काम करना होगा। हर एक को अलग से जमीन नहीं मिलेगी। वे सब मान गए। बाबा ने कहा, तो वैसा लिख कर दो, मैं तुम्हारा निवेदन सरकार के सामने रखता हूं। किंतु वहां उसी सभा में एक सज्जन श्री रामचंद्र रेड्डी 100 एकड़ जमीन हरिजनों को देने को तैयार हो गए। हम 100 एकड़ जमीन आप लोगों को दूंगा, ऐसा वचन बाबा के सामने दिया। उस दिन उन्हें पहला भूदान मिला। रात को सोने गए पर सो नहीं सके। अंदर से आवाज आती रही,
1: आज ये क्या हुआ? जमीन के लिए खून बहाने वाले लोगों से सिर्फ प्रेम से मांगने पर 100 एकड़ भूदान मिला। मांगने पर लोग जमीन दे सकते हैं क्या? आज ही क्या चमत्कार हुआ? इसको ईश्वर का इशारा समझो। अगर तुम्हें अहिंसा में विश्वास है तो ईश्वर के संकेत को उठा लो और जमीन की भूख को मिटाओ। जो ईश्वर तुम्हें मांगने की प्रेरणा देता है, वही भूमिवान को देने की प्रेरणा देगा। तुम्हारे सामने ये चैलेंज है, बस इस काम को यदि नहीं उठा लेते तो अहिंसा का दावा छोड़ दो।
0: रात भर आवाज प्रति आवाज सुनाई देती रही और फिर अगले दिन उन्होंने पिछले दिन का अनुसरण किया। फिर तो वे मांगते गए और लोग देते गए। भिक्षु की झोली मानव हृदय में बहती करुणा ने भर दी। बिहार का दरभंगा जिला, 1953-54 की भूदान यात्रा। बारिश के दिन थे, रास्ते में खेतों से गुजरना पड़ता था। एक बार बीच में ऐसा एक खेत आया जिसमें 8-10 फीट गहरा पानी था। छोटी सी नाव लाई गई, उसमें विनोबा और उनके साथियों को बैठाया। पानी गहरा था, ऊपर से तूफान और बारिश, नाव डोल रही थी। एक दो मनुष्य पानी बाहर फेंकने का काम कर रहे थे। विनोबा जी तो श्लोक पठन में तन्मय थे। जब किनारे पर पहुंचे तब रामदेव बाबू बोले, मुझे बड़ा डर था, मैं तो तैरना जानता था, परंतु आप थे मेरे साथ, दुनिया की इतनी बड़ी अमानत, इसलिए मुझे बहुत डर लग रहा था।
1: अरे अरे, मैं तो जरा भी नहीं डरता। हम चिंता करें ना करें, आखिर होगा वही जो होने वाला है। गांधी जी के भतीजे छगनलाल गांधी ने एक आंखों देखी घटना मुझे सुनाई थी। एक बार समुद्र यात्रा में वे स्टीमर में डेक पर बैठे थे। उनके सामने ही एक स्त्री अपनी गोद में बच्चों को लिए बैठी थी। इतने में पानी की एक लहर आई और उस स्त्री की गोद में से बच्चे को उठाकर बहा ले चली। माँ तो किंग कर्तव्य मूढ़ हो गई। छगन भाई और उनकी पत्नी भी अवाक रह गए। कोई क्या कर सकता था? इतने में ही दूसरी लहर आई और बच्चे को माँ की गोद में छोड़ गई। उन क्षणों में माँ ने क्या किया? उसको ईश्वर में श्रद्धा थी, सो भगवत स्मरण किया, अन्यथा वह बेहोश हो जाती अथवा पानी में कूद पड़ती। तब भी क्या हो सकता था? दुख में मनुष्य को श्रद्धा ही बचाती है।
0: जुलाई 1953 की बात है। दक्षिण बिहार के हजारीबाग जिले में महायात्री की पदयात्रा चल रही थी। उस दिन हजारीबाग शहर में मुकाम था। शहर में दाखिल होते ही कुछ अग्रगण्य नागरिकों ने आकर विनोबा को खबर दी,
2: बिहार सरकार के गोवध बंदी के कानून में गाय के साथ बैल भी शामिल हो, इस वास्ते यहाँ के कार्यकर्ता वीर जी आमरण पर उतरे हैं। आज उपवास का 60वां दिन है। उनकी स्थिति अत्यंत चिंताजनक।

0: है, आप उन्हें समझा कर उपवास छुड़वाइए।
1: विनोबा जी तुरंत सम्मत हुए। वीर जी के घर जाते समय महादेवी ताई से कहा,
2: थोड़े संतरे, चाकू और एक गिलास भी साथ में ले चलना।
3: अच्छा हुआ आपके दर्शन हुए, मैं अब सुख से मर सकूंगा।
2: मरने की कोई जरूरत नहीं है, आपका आमरणांत उपवास सत्याग्रह नहीं है, दुराग्रह है, ऐसा मेरा स्पष्ट अभिप्राय है। यह मैं आपको समझाने के लिए ही यहां आया हूं। देश अब स्वतंत्र हुआ है, लोकतंत्र की पद्धति से देश का कारोबार चलता है, जनता के पास जाकर अपने मत का प्रचार करके जनमत को अपने अनुकूल बनाने का स्वातंत्र है, उसका उपयोग करने के बजाय आपने यह उपवास क्यों शुरू किया है? लोगों को अपना विचार समझाइए, फिर खुद जनता सरकार से उस तरह का कानून बनवा लेगी। उपवास तो सत्याग्रह के तंत्र का आखिरी उपाय है, सब शस्त्र आजमा लेने पर ही आखिर में उसे अपनाना होता है। सत्याग्रह यानी भय धमकी नहीं है, सत्याग्रह यानी प्रेम प्रकर्ष। इसलिए आज की परिस्थिति में आपका उपवास सब दृष्टि से अनुचित है, इसे छोड़ दीजिए।
1: कितने ही क्षण मौत में बीत गए, फिर वीर जी ने अपनी बाजू रखी। विनोबा ने फिर से गहराई में जाकर सत्याग्रह का विचार वीर जी को समझाने का प्रयास किया। अंत में वीर जी ने कहा,
3: यदि आपकी आज्ञा होगी तो मैं उपवास छोड़ दूंगा।
2: ऐसा है तो उपवास बिल्कुल मत छोड़िए। मैं किसी को आज्ञा नहीं देता हूँ, न किसी की आज्ञा मानता हूँ। मैं आपको एक विचार ही समझा रहा हूँ। वह विचार यदि आपको जच जाए तभी आप छोड़िए, यदि ना जचे तो उपवास ना छोड़ते हुए प्रेम पूर्वक मृत्यु के अधीन हो जाइए। आपका यह उपवास सरकार के सामने तानी हुई पिस्तौल है, यह शुद्ध सत्याग्रह नहीं है, ऐसा मेरा स्पष्ट अभिप्राय है।
3: आप आज्ञा दीजिए, मैं आपके जैसे महान संत के शब्द के खातिर उपवास छोड़ दूंगा। बाकी आपके विचार मुझे पसंद नहीं आए हैं, परंतु आप आज्ञा दे सकते हैं।
1: मृत्यु के साथ जूझते हुए अस्थि पंजर को देखकर वहां आए हुए प्रतिष्ठित सज्जन विनोबा से प्रार्थना करने लगे, दीजिए दीजिए, आज्ञा दीजिए और इनके प्राण बचाइए।
2: मैं आपकी इस देह को बचाने नहीं आया हूं, आप ही क्या, किसी की भी देह की मुझे तिल मात्र परवाह नहीं है। यह देह आज नहीं कल गिरने वाली ही है। आपको जो विचार ठीक लगे उसके खातिर मरना आपका कर्तव्य है। मैं तो आपको यही समझाता हूँ कि आपका यह उपवास सत्याग्रह नहीं है, यह विचार जचे तभी उपवास छोड़िए।
1: फिर एक बार स्तब्धता। मृत्यु की शैया पर सोए हुए मनुष्य से ये लापरवाह फकीर कहता था, मुझे आपकी देह की परवाह नहीं है, बुद्धि को विचार जचे तभी उपवास छोड़िए, मैं आज्ञा देने वाला नहीं हूं। वातावरण गंभीर होता गया।
2: मैं आज दिन भर आपके गांव में हूं, कल सुबह यहां से निकलूंगा। दिन भर आप विचार कीजिए, विचार करने पर यदि आपको मेरा कहना सही लगे तो मुझे खबर दीजिए, मैं खुशी से आऊंगा और अपने हाथ से संतरे का रस पिलाकर उपवास छुड़वाऊंगा। परंतु मेरा विचार यदि ना जचे तो मेरा आपको आखिरी प्रणाम, परमेश्वर को सतत याद करते रहिएगा।
1: इतना कहकर विनोबा उठे और अपने मुकाम पर जाने के लिए निकल पड़े। दिन भर मुलाकाती लोग और सभा चर्चा आदि भरपूर कार्यक्रम रहा। रोज की तरह ही विनोबा ने सब कार्यक्रम पूरे किए। शाम को वीर जी के घर से संदेश आया, विनोबा फिर से वीर जी के यहाँ पहुंचे।
3: दिन भर मैं आपकी बात पर सोचता रहा, मुझे आपकी बात ठीक लगती है।
2: पूरा विचार करके ही निर्णय कीजिए, शरीर बचाने के लिए नहीं। आपके ये उपवास ठीक नहीं है ऐसा समझ में आए तभी उपवास छोड़ने का निर्णय कीजिए।
1: वीर जी को विचार ठीक ठाक समझा है, इसका पूरा भरोसा होने पर ही विनोबा ने अपने हाथ से संतरे के रस का गिलास वीर जी के हाथ में दिया। तमिलनाडु का वेदनायकन पालयम नाम का छोटा सा गांव, गांव का छुआछूत का प्रश्न विनोबा को अपने यात्रा पथ से मोड़कर भी इस गांव में लाने में समर्थ हुआ था। गांव में हरिजनों के लिए पक्के मकान बनाए गए थे, परंतु गांव के दूसरे लोगों को ये अधर्म लगता था कि हरिजन लोग ऐसे पक्के मकानों में आकर रहे। घर खाली पड़े थे, गांव की पुरानी परंपराओं की जंजीरों को तोड़ने की हिम्मत गांव के युवक वर्ग में भी नहीं थी। सूर्योदय की मंगल बेला में बाबा उस गांव में जा पहुंचे।

0: होगा, उनकी किरणें घर घर पहुंच जाएंगी, मुसलमान के घर में भी वे पहुंचेंगी, ब्राह्मण के घर में भी, अमीर के घर में भी और गरीब के घर में भी। इनके मन में कोई भेद नहीं है, जहां सभी का प्रवेश है वहीं प्रभु का वास है। सबको अपनाइए, सबको अपनाइए। हरिजन भाइयों को भी नहा धोकर स्वच्छ रहना चाहिए, किसी से डरना नहीं चाहिए।
1: हम स्वच्छ कपड़े पहनते हैं तो ये लोग डराते हैं, धमकाते हैं और मारते भी हैं।
0: क्यों भाई, आप लोग उन्हें डराते हैं?
2: ये लोग स्वच्छ रहेंगे तो हमें कुछ नहीं करना है।
1: आपके सामने तो ये लोग ऐसा नहीं करेंगे।
0: आप सब लोग सामने आइए और एक दूसरे से हाथ मिलाइए। यदि आप लोग सच्चे दिल से कहते हैं कि बाबा के जाने पर सब हिल मिल कर रहेंगे, तो आइए आइए और हाथ मिलाइए।
3: सब दो मिनट के लिए मौन और स्तब्ध। संत के स्पर्श के बिना रूढ़ी श्रृंखला टूटना नहीं चाहती थी। विनोबा उठे और एक हरिजन भाई का हाथ पकड़कर गांव के सवर्ण भाई के हाथ से मिलाया। रूढ़ी जंजीर पर प्रहार हो चुका था, वो श्रृंखला कमजोर हो गई थी। लोगों ने कहा, ये लोग साफ सुथरे रहेंगे, मांस नहीं खाएंगे तो हमें कोई उर्ज नहीं है।
0: आपके घर में बिल्ली आती है ना, वह क्या खाती है? चूहा खाती है, तो भी आप उसे अपने घर में आने देते हैं? ये बात ठीक है कि सफाई रहनी चाहिए, परंतु ऊपर ऊपर की सफाई का इतना महत्व नहीं है जितना महत्व अंदर की सफाई का है। ऊपर से साफ सुथरे कपड़े पहनने वाले लोग भी झूठ बोलते हैं, गलत काम करते हैं। हरिजन भाइयों, अब तुम लोग डरो मत, साफ रहना। अब तुम नए घरों में रहने के लिए आ जाओ।
3: भेद मिट गया, हरिजनों का वहां आकर रहना तय हुआ। इतने में बाबा के भोजन का समय हो गया। जय भाई ने दही की कटोरी उनके हाथ में रखी। दही का चम्मच मुंह में रखते हुए बाबा बोले,
0: देखिए भाइयों, मैंने अभी इस हरिजन को स्पर्श किया है और मैं खाने को बैठा हूं। अब मैं नरक में जाऊंगा और आप लोग स्वर्ग में जाएंगे। जहां कुछ लोग डोली में बैठते हैं और कुछ लोग उसे उठाते हैं, ऐसी असमानता वाली जगह स्वर्ग हो तो भी विनोबा को वह पसंद नहीं है।
3: उस गांव के एक भाई अपनी सारी 30 एकड़ जमीन दान करने आए थे, परंतु बाबा ने उनमें से थोड़ी सी रखी और बाकी की जमीन उन्हीं को लौटा दी। बड़े भाई का पुण्य कार्य छोटे भाई उस भाई की लड़की में भी जागा और दान पत्रों के साथ उस परिवार ने विनोबा के चरणों में तिरुक्कुरल, भागवत, रामायण और दिव्य प्रबंध के धर्म ग्रंथ भी रख दिए।

18वीं सदी का सुधार युग। उस युग के प्रमुख समाज सुधारक थे राजा राममोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, देवेंद्रनाथ ठाकुर, रामकृष्ण परमहंस आदि। उन्होंने अपने अपने प्रयासों से समाज कल्याण का बीड़ा उठाया था। इन महापुरुषों के पदचिन्हों का अनुसरण कर स्वामी विवेकानंद ने समाज और देश ही नहीं विदेशों में भी अपनी पहचान बनाई। पश्चिमी देशों को भारत की एक नई पहचान मिली। भारतीय ज्ञान, दर्शन और आध्यात्मिकता से उनका परिचय हुआ और सारा विश्व इस तरुण सन्यासी के प्रति आकर्षित हो गया।

0: आपने 19वीं सदी के भारत और मुख्यतः बंगाल के बारे में भी जाना। हमने सुना वो कितना अशांत युग था, समाज दिशाहीन तथा अंधकारमय था। कुछ समाज सुधारकों ने समाज को कुछ हद तक सुधारा, दिशा दी, परंतु सदियों की रूढ़िवादिता, धर्मांधता तथा कदाचार पर संपूर्ण रूप से विजय पाना संभव न था।
1: उसी अशांत कालखंड में स्वामी विवेकानंद का आविर्भाव हुआ। अपने ज्ञान, कर्मयोग, भक्ति एवं वैदांतिक राष्ट्रवाद से उन्होंने समूचे भारत का ही नहीं बल्कि पूरे संसार का दिल जीत लिया। दिशाहीन भारत को एक सच्चा पथ प्रदर्शक मिला। जाति, प्रांत और भाषाई अंतर को भुलाकर भारतवासियों ने उन्हें अपने प्रेरणा पुरुष के रूप में स्वीकार कर लिया। उनकी बहुमुखी प्रतिभा से लोग मुग्ध हुए।
0: ऐसे दिव्य महापुरुषों की जीवन कथा बहुत ही रोचक है। अपने छोटे से जीवन काल में उन्होंने हजार वर्षों का काम कर दिखलाया था। इतने सारे गुणों से धनी स्वामी विवेकानंद को संस्कार अपने परिवार से मिले थे। उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि बहुत मजबूत थी, अतः विवेकानंद को जानने से पहले उनके परिवार के बारे में जानना बेहद जरूरी है। 19वीं सदी की शुरुआत में कलकत्ता नगरी के उत्तरी भाग में सिमुलिया या सिमला मोहल्ले में गौर मोहन मुखर्जी स्ट्रीट पर दत्त परिवार का विशाल भवन अपनी संपन्नता के लिए प्रसिद्ध था। आज भी उस भवन का जीर्ण द्वार अतीत वैभव का साक्षी बना खड़ा है। दत्त वंश का ऐश्वर्य और ख्याति उनके 12 महीने के 13 उत्सव पर्व का आडंबर उस समय के कलकत्ता के धनी समाज में चर्चा का विषय रहा।
1: कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के नामी वकील राममोहन दत्त के समय में सिमुलिया के दत्तों ने नगर में काफी प्रभाव और प्रतिष्ठा प्राप्त की थी। राममोहन दत्त के पुत्र दुर्गाचरण ने उस समय की प्रथानुसार संस्कृत तथा फारसी भाषा में शिक्षा प्राप्त की और राजभाषा अंग्रेजी भी सीखी। उन्होंने भी वकालत प्रारंभ कर दी, परंतु पिता जैसी धनोपार्जन की प्रवृत्ति उनमें न थी। तत्कालीन धनी संतानों के समान नवीन नागरिक सभ्यता के भोग विलास भी उन्हें आकर्षित न कर सके।
0: ये धर्मानुरागी युवक अवसर और मौका पाते ही धर्म शास्त्रों की चर्चा तथा सत्संग किया करता था। उत्तर पश्चिम प्रदेशों से आए हुए हिंदी भाषी वेदांती साधुओं से प्रभावित होकर दुर्गाचरण ने 25 वर्ष की उम्र में ही सारा ऐश्वर्य और सम्मान त्याग कर सन्यास ले लिया।
1: सन्यासियों के नियमानुसार 12 वर्ष के बाद दुर्गाचरण एक बार अपने जन्मस्थान का दर्शन करने आए थे और अपने एकमात्र पुत्र विश्वनाथ को आशीर्वाद दे गए थे। उसके बाद उन्हें किसी ने नहीं देखा। उनके आगमन के एक वर्ष पहले ही उनकी पत्नी यानी विश्वनाथ की माता का निधन हो गया था। सन्यासी पुत्र विश्वनाथ ही सन्यासी विवेकानंद के पिता थे।
0: विश्वनाथ ने अपने दादा राममोहन का अनुसरण कर वकालत करना प्रारंभ किया। वे प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। वकालत में व्यस्त रहते हुए भी अध्ययन में उनका प्रबल अनुराग था। वे फारसी जानते थे, हाफिज की कविताएं पढ़ते थे, अंग्रेजी साहित्य और इतिहास आदि पढ़ने के कारण धार्मिक कट्टरता उनमें ना थी। कई ऊंचे खानदान के मुस्लिम उनके मुवक्किल थे तथा लखनऊ, इलाहाबाद, दिल्ली, लाहौर आदि स्थानों की यात्रा करने के कारण वे उस समय के अनेक खानदानी मुस्लिम परिवारों के संपर्क में आ चुके थे। अतः वे उनके रीति रिवाजों को सम्मान की दृष्टि से देखते थे और उनकी पाबंदी भी करते थे। बाइबल के अध्ययन के कारण वे ईसाई धर्म के भी प्रेमी थे, अर्थात धर्म, ईश्वर आदि के बारे में कोई भेदभाव नहीं रखते थे। वे काफी धनोपार्जन करते थे और खर्च भी वैसा ही करते थे। रिश्तेदारों दोस्तों का आदर सत्कार करना तथा ठाट बाट से रहना वे पसंद करते थे। उनके घर में अनेक आश्रित पलते थे और उस विशाल भवन में किसी चीज की कमी ना थी।
1: परंतु विश्वनाथ की पत्नी भुवनेश्वरी देवी एक पारंपरिक महिला थी। इस बुद्धिमती कुशल गृहिणी की देखरेख में उनके विराट परिवार के सभी कार्य बड़ी कुशलता से संपन्न होते थे। वे बंगला पढ़ना लिखना भली भांति जानती थी। रामायण, महाभारत, पुराण, भागवत आदि का नियमित पाठ करती और साथ ही अपने पति पुत्र के साथ चर्चा करके तत्कालीन विचारधारा से भी परिचित रहती थी। आस पड़ोस के लोग उन्हें श्रद्धा करते थे। वो मीठा बोलने वाली गंभीर धर्म परायणा महिला प्रतिदिन शिव पूजा करती थी।
0: भुवनेश्वरी देवी के मन में एक दुख था। दो कन्याओं की माता तो वे थीं, पर उनका कोई पुत्र ना था। पुत्र मुख देखने की लालसा ने उन्हें धीरे धीरे बहुत ही व्याकुल कर डाला। वे प्रतिदिन सुबह शाम शिव मंदिर में प्रार्थना करती और शिव को संतुष्ट करने के लिए कठोर व्रतों का पालन करती।

कैलाशपति भुजंगेश्वराय नमः। हे देवाधिदेव, मैं भक्ति पूर्वक तन मन से तुम्हारी सेवा में रत हूँ। सभी कठोर व्रतों का नियम पूर्वक पालन करती हूँ। तुमसे आज्ञा या आशीर्वाद लिए बिना मैं कोई भी काम नहीं करती प्रभु। फिर तुम्हारी कृपा कब होगी? कब आप प्रसन्न होंगे? कब मेरी गोद में एक पुत्र आएगा प्रभु? कब तुम्हारी दया होगी? बोलो बोलो ना, कब होगी दया? कब होगी तुम्हारी दया?

0: इतने व्रत उपवास पूजा अर्चना के बाद भी उनके मन को शांति न हुई। शिव को और भी अधिक तुष्ट करने के लिए उन्होंने काशी में रहने वाली एक रिश्तेदार महिला को पत्र लिखा।
1: आपको तो मालूम है कि मैं शिव की पूजा नियमित रूप से करती हूँ, उनके नाम का व्रत उपवास भी करती हूँ, पर उनकी कृपा मुझ पर आज तक नहीं हुई। मेरी पुत्र कामना अधूरी ही रह गई। आप तो भाग्यवती हैं, शिव की नगरी में ही निवास करती हैं। आपसे मेरा यही अनुरोध है कि आप हर दिन मेरी ओर से बाबा विश्वेश्वर के मंदिर में पुत्र कामना करते हुए पूजा एवं होम यज्ञ आदि की व्यवस्था कर दें। मुझे आशा है आप मुझे निराश नहीं करेंगी।
2: ये जानकर कि उनकी इच्छा के अनुसार पूजा पाठ हो रहा है, माता भुवनेश्वरी प्रफुल्लित और आश्वस्त हुई। वे शिव अर्चना में और भी ज्यादा डूब गईं। ग्रह देवता शिव मंदिर में ही उनका अधिकतर समय व्यतीत होने लगा।
0: एक दिन प्रातः काल शिव अर्चना के बाद वे ध्यान मग्न हो गईं। परिवार के लोगों ने और दास दासियों ने उन्हें कई बार आवाज दी, पर वे सब कुछ भूलकर बेसुध बैठी रहीं। सारा दिन बीत गया, सांझ हो आई। पति विश्वनाथ के अदालत से लौटने पर उन्हें ये समाचार मिला। वे पत्नी से बेहद प्यार करते थे, व्याकुल होकर पूजा कक्ष में आए और भुवनेश्वरी को आवाज दी।
3: भुवन, ओ भुवन, भुवन, क्या हो गया है तुम्हें? सुना है सुबह से यहां ऐसी ही बैठी हो, क्या बात है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? भुवन, तुम सुन रही हो ना? मेरी ओर देखो, जवाब दो भुवन, भुवन।
0: भुवनेश्वरी ने कोई जवाब नहीं दिया और धीरे धीरे वहीं पर थककर सो गईं। किसी की हिम्मत नहीं हुई उन्हें छूने या जगाने की। सूर्योदय के समय अचानक घर वालों की नींद खुली। उन्हें पूजा घर से घंटा बजने और मंत्रोच्चार की आवाज आई। सब दौड़ते हुए वहां जाकर एकत्रित हुए। भुवनेश्वरी होश में आ गई थी और जोर जोर से मंत्र पढ़कर शिव को प्रणाम कर रही थी।
1: हे शिव, हे शंकर, हे करुणामय, तुमने मुझे ये क्या दिखाया, क्या दिखाया? क्या ये निरा सपना था या सच का पूर्वाभास? कहो देव, कहो ना। अरे अरे, सुना तुमने? तुम लोगों ने सुना? मेरे इतने दिनों की तपस्या पूरी होने वाली है। हाँ हाँ, शिव ने मुझ पर दया की है। हे शिव, हे शंकर, हे शिव, हे प्रभु।
3: भुवन, भुवन, शांत हो जाओ, सब ठीक तो है ना? क्या देखा तुमने? कहो, इतनी खुश क्यों हो? कहो तो।
1: मैं क्या कहूँ, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। मैंने ये कैसा सपना देखा? हाँ,
3: क्या देखा तुमने? कहो भुवन।
1: मैंने देखा तुषार धवल पर्वत श्रृंग से कैलाशपति शिव उतर कर आ रहे हैं। हाँ, और वो ठीक मेरे सामने आकर खड़े हो गए। वो मुस्कुरा रहे थे, कह रहे थे, तुम्हारी कठोर तपस्या का फल तुम्हें मिलेगा भुवनेश्वरी। और कहते कहते शिव एक छोटे से शिशु का रूप धारण कर मेरी गोद में आ गए। हाँ हाँ, वो मेरी गोद में आ गए और मेरी ओर देखकर मुस्कुराने लगा। हाँ, सच। ओह, हे शिव, हे शंकर, हे शिव, हे शिव,
2: हे शिव, हे शंकर कहती हुई वे बारंबार माथा टेकती रहीं। परिवार वाले हतप्रभ रह गए।
0: उस दिन 1863 ईस्वी की 12 जनवरी थी, पौष संक्रांति का पुण्य प्रभात। शीत से ठिठुरते हुए नर नारी स्नान के लिए भागीरथी की ओर जा रहे थे। इसी समय सूर्योदय से 6 मिनट पूर्व 6:33:33 पर भुवनेश्वरी देवी ने विश्व विजयी पुत्र को जन्म दिया।

0: आनंद उल्लास और हर्ष से दत्त भवन मुखरित हो उठा। मंगल शंख बजने लगे। बंगाल के हर घर में पौष पर्व का आनंदोत्सव मनाया जा रहा था, मानो नवजात शिशु को सादर अभ्यर्थना करने प्रत्येक गृह प्रांगण मुखरित हो उठा।
1: नामकरण का दिन। बालक की आकृति बहुत कुछ उसके सन्यासी पितामह की तरह देखकर परिवार के कुछ लोगों ने शिशु का नाम दुर्गादास रखने की इच्छा प्रकट की, परंतु माता ने अपने स्वप्न को स्मरण कर कहा,
2: जी इसका नाम शिव के नाम पर वीरेश्वर रखा जाए। ठीक है, वे ही तो शिशु का रूप धरकर मेरे घर आए हैं। ये मेरा शिव, मेरा शंभु, मेरा महेश और मेरा शंकर है, मेरा बच्चा।
0: सभी ने उनका कहना मान लिया। वे उसे वीरेश्वर से वीरे और अंततः बिले कहने लगे। अंत में अन्नप्राशन के समय बालक का नाम रखा गया नरेंद्रनाथ, और भविष्य में यह बालक नरेंद्रनाथ या नरेन नाम से ही परिचित हुआ।
1: बचपन में नरेंद्रनाथ बहुत ही नटखट थे। उनके उधम से घरवाले हमेशा परेशान रहते थे। वे माँ को बहुत तंग करते थे। एक दिन बालक नरेन आंगन में दौड़ दौड़ कर माँ को सता रहा था।
2: बिले, अरे ओ बिले, आना इधर आ, बात सुन मेरी। बिले, ओहो आना, कपड़े बदल ले। अब ओहो
3: नहीं नहीं बदलूंगा कपड़े, लो पकड़ो मुझे।
2: अरे सुन ना।
3: नहीं पकड़ पाई ना, मैं अभी पेड़ पर चढ़ने जा रहा हूँ, नहीं आऊंगा तुम्हारे पास।
2: ठहर, पकड़ती हूँ तुझे। बस ये पकड़ लिया। बोल अब कहाँ जाएगा। हाँ ठहर ठहर, मैं मजा चखाती हूँ। नहीं सुनेगा ना मेरी बात। हाँ नहीं सुनेगा, चल चल आ इधर आ, ये इधर आ, इधर आ, ये ले ये ले, ये शिव, ओ शिव, शिव शंभु, शिव शंभु, शिव शंभु, ले। अब तेरा माथा कुछ ठंडा हुआ ना, चल चल अब अंदर चल, चल बेटा सर पोंछ दू, फिर कपड़े बदल लेना। ओह शिव शंकर, शिव शंकर, शिव शंकर।
1: पिता विश्वनाथ बरामदे में खड़े होकर माँ बेटे का ये नाटक देख रहे थे। उन्होंने हंसते हुए कहा,
4: भुवन तुम क्यों हमेशा बिले के पीछे पड़ी रहती हो, अरे खेलने दो ना उसे। देखो ना, नाहक उसके सर पर ठंडा पानी डाल दिया, अगर उसे जुखाम हो गया तो जाओ जल्दी से पोंछो उसका सर।
2: हाँ हाँ, तुम्हें तो हमेशा मेरी ही गलती दिखाई देती है, बेटे की शरारत तुम्हें दिखती ही नहीं। अरे देखो तो, दौड़ा दौड़ा कर मेरा तो दम निकाल दिया, और उसे भिगोने में देखो ना, ये देखो मैं पूरी तरह भीग गई। अरे बिले चल ना, चल जल्दी चल चल।
4: पर तुमने दोबारा उसे नहलाया क्यों, और वो भी ठंडे पानी से।
2: क्या आप नहीं जानते कि आशुतोष शिव जलाभिषेक से ही संतुष्ट होते हैं, और मेरा बिले भी तो शिव का ही अंश है, इसलिए जब मैं इसे किसी भी तरह से शांत नहीं कर पाती तो ठंडा पानी डालकर शिव शिव की जाप करती हूँ, और ये भी शांत हो जाता है।
4: तुम माँ बेटे की महिमा अपरंपार है, मुझे समझ में नहीं आता। अरे बच्चा है अभी, शरारत तो करेगा ही।
2: ए देखो जी, वकालत करते हो उसी को संभालो, हम माँ बेटे के बीच ना आना, ठीक है। ए, ए, ए, अरे अरे अब फिर भाग गया। अरे देखो तो, ओहो फिर भाग गया बिले।
4: लो संभालो अब।
2: ओ माँ गो माँ, मैं तो इसकी शरारतों से तंग आ गई हूँ। ओ अरे अरे, ओ राधा शामू, अरे देख तो किधर भाग गया, वो भाग रहा है, वो जा पकड़। पकड़ लिया ना, ले आ इधर, इधर ले आ। मांगो मां, महादेव शिव ने स्वयं ना आकर जाने कहां से एक भूत को भेज दिया है, सबको परेशान कर रखा है। ओह, अरे तू तो फिर से रोने लगा। देखा देखा जी, अपने लाडले की करामत। हाँ हे, देख देख बिले, अगर तू ज्यादा उधम मचाएगा ना तो महादेव तुझे कैलाश में नहीं आने देंगे। हाँ
3: सच कह रही हो ना माँ, शिव जी मुझे कैलाश नहीं आने देंगे तो मैं नंदी बैल की सवारी कैसे करूंगा।
2: अच्छा बच्चा बनो बेटा, तो शिव जी तुझे खुद वहां ले जाएंगे, खूब प्यार करेंगे, समझा। अच्छा अच्छा, अब चल, तो चल भीगे कपड़े बदल ले। हाँ चल चल बेटा, चल चल, आजा आजा आजा आजा, चल चल।
4: तुम दोनों माँ बेटे की बातें तुम दोनों ही जानो, और जाने तुम्हारे शिव जी। भाई मैं तो चला। नरेंद्रनाथ सबके प्रिय थे, मोहल्ले के धनी निर्धन सभी परिवारों के साथ उन्होंने संबंध स्थापित कर लिया था। यदि उनके परिचितों में से किसी लड़के के यहाँ किसी की मृत्यु हो जाती तो उसे सांत्वना देने वे ही पहले रहते थे। हर घर में आना जाना उनके परिवारजनों को पसंद ना था। एक दिन,
5: ए ए ए बिले, क्यों रे बिले, तू कहाँ गया था, तेरी माँ तुझे ढूंढ रही थी।
3: अरे मैं तो देवू के घर गया था, आपको मालूम नहीं पड़ा क्या, आज देवू के दादाजी गुजर गए। देवू बहुत रो रहा था, उसी के साथ बैठा था।
5: हे भगवान, इस लड़के को जात पात का कोई ध्यान नहीं है, तूने देवू के दादाजी के शव को छुआ तो नहीं। हे ईश्वर,
3: छुआ नहीं, सब दादाजी को आखिरी बार प्रणाम कर रहे थे, सो मैंने भी किया।
5: तूने प्रणाम किया, चल आज तेरी अच्छी पिटाई होगी, चल माँ के पास।
3: आप मुझे डांट क्यों रहे हैं, देवू मेरा दोस्त है, उसके दादाजी को मैं भी दादाजी कहता था, और दादाजी को प्रणाम करने में क्या बुराई है, माँ ही तो कहती है बड़ों का आदर करना चाहिए।
5: अरे अरे अरे अरे अरे, इस मलेच्छु को कौन समझाए, चल चल तू तो अंदर चल, फिर देखना क्या होता है तेरा। ए ए ए ए, किसी चीज को छूना मत, पहले नहा ले, चल पहले नहा।
3: ये लीजिए ये लीजिए ये लीजिए, आपको छू दिया, क्या हो गया, कुछ भी तो नहीं हुआ, आप तो वैसे ही हैं।
5: हाय हाय हाय हाय हाय, ये क्या कर दिया, मैं तो नहा धोकर घर से बाहर जा रहा था, छू दिया ना, अब फिर से नहाना पड़ेगा, राम राम राम।
3: तो जाइए फिर से नहाइए।
5: राम राम राम राम राम।
0: और नरेंद्र हंसते हुए अंदर चले गए। चाचा जी के गुस्से का अंदाजा तो आप खुद लगा सकते हैं।

0: नरेंद्र बचपन से ही बहुत हाजिर जवाब और शरारती थे, पर उनकी बाल सुलभ शरारतों से अधिकतर लोगों का मनोरंजन होता था। उनकी मजेदार बोलचाल और मनगढ़ंत किस्से कहानियों को सुनकर गंभीर स्वभाव वाले बड़े बूढ़े भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे। उनके दोस्त तो नरेंद्र से कहानियां सुनने के लिए हमेशा उत्सुक रहते थे, और नरेंद्र भी मौका मिलते ही कहीं भी मंडली जमा कर बैठ जाते और दोस्तों को तरह तरह की कहानियां सुनाते। रामायण महाभारत की कथा कहानियां तो सुनाते ही थे, साथ ही अलिफ लैला की कहानियां, ईसप की नीति कथाएं तथा देश विदेश की परिकथाएं भी सुनाया करते थे।
1: नरेंद्र को किसी प्रकार का संकोच न था। अगर कोई कहानी याद न आती तो मनगढ़ंत पात्रों की काल्पनिक कहानियां दोस्तों को सुनाया करते। उनकी काल्पनिक कहानियां भी इतनी मजेदार हुआ करती थीं कि दोस्त यह समझकर भी कि नरेंद्र झूठी कहानियां सुना रहे हैं घंटों मंत्रमुग्ध हो सुनते रहते थे। बचपन से ही उनकी कल्पना शक्ति अद्भुत थी।
0: जीवन के आरंभ में ही देखा गया था कि अपने हम उम्र साथियों के साथ झुंड बनाकर क्रीड़ा कौतुक करते समय नरेंद्र ही इन सब आयोजनों के नेता होते। नेतृत्व सुलभ गुण तब से ही उनके चरित्र में प्रस्फुटित होकर धीरे धीरे समुचित रूप धारण कर रहा था।
1: उन दिनों पाठशाला में मकर संक्रांति के दिन गंगा की वंदना के गीत गाकर गंगा के तट पर जाकर पूजा अर्चना करने की प्रथा थी। नरेंद्र के पिता विश्वनाथ बाबू मकर संक्रांति के दिन गुरुजी एवं छात्रों को नई धोती कुर्ता दिया करते थे, एवं गुरुजी छात्रों को गाजे बाजे के साथ गंगा पूजा कर आने की अनुमति देते थे।
0: लौट कर आने पर प्रथा अनुसार घर पर बनी मिठाइयां खाने को मिलती थीं। नरेंद्र ने पिता से छात्रों के साथ गंगा पूजन की अनुमति मांगी। बाजा गाजा और पताका आदि की व्यवस्था पिता के खर्चे से सहज ही हो गई। अतः गंगा की महिमा गाते हुए बच्चे जुलूस बनाकर गंगा तट पहुंचे। वहां केले के पेड़ के छिलकों से नाव बनाकर उनमें दिया जलाकर रख दिया गया और फूल मालाओं से सजाकर नावों को गंगा जल में बहा दिया गया।
1: छोटे छोटे नाव धीर गति से गंगा में बहने लगी। संध्या के झुरमुट अंधेरे में जगमगाती हुई नाव दियों के साथ साथ धीरे धीरे लहरों के साथ झूमती हुई सागर की ओर बढ़ चली। बच्चे ढोल मंजीरों के साथ गाते रहे।

0: अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। आलेख डॉक्टर पापियादास गुप्ता, निर्देशन चैतन्य भट्ट, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वरा संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
1: श्रोतेहोत्तच आपण युग प्रवर्तक स्वामी विवेकानंद ऐकलात। हा कार्यक्रम स्वराज संस्थान संचालनालय यांच्या सहकार्याने विद्यावाणी सामुदायिक रेडिओवरून प्रसारित करण्यात आला। ऐकत रहा विद्यावाणी 107.4 FM।

इतिहास के सफों पे दर्ज हैं कहानियां कई देशों के संघर्ष के दौर की, वो दौर जब जन्म लिया था इन देशों के राष्ट्रगीतों ने। ये राष्ट्रगीत कभी किसी राष्ट्रनायक के इर्द गिर्द लिखे गए तो कभी किसी देश के ध्वज के संदर्भ में, कहीं ये विशुद्ध प्रार्थना बने तो कभी गाए गए लोकगीत के रूप में, कहीं ये कामना है महारानी की दीर्घायु की तो कहीं है वंदना मातृभूमि की।

0: आप सुन रहे हो रेडियो मन भावन 90.8 FM, always heart touching. आपले खानदेश, आपली मानसर.
1: नमस्कार, मेरा नाम है मनोज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साधो. दोस्तों, जब हम किसी बहुत ऊंचे पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाते हैं तो वहां का नजारा कैसा होता है. वहां नीचे की घाटियों का कोलाहल, धूल मिट्टी और शोर शराबा सब बहुत पीछे छूट जाता है. वहां केवल एक असीम शांति होती है, साफ हवा होती है और खुला आसमान होता है. उस ऊंचाई पर पहुंचकर आप नीचे के छोटे छोटे झगड़ों और प्रपंचों से पूरी तरह मुक्त हो जाते हैं. अध्यात्म की यात्रा में भी एक ऐसी ही ऊंची चोटी है, एक ऐसा भीतरी शिखर है जहां पहुंचकर हमारा यह चंचल मन पूरी तरह शांत और भारहीन हो जाता है. कबीर साहब आज हमें चेतना की उसी परम ऊंचाई और उस शाश्वत मिलाप की कहानी सुना रहे हैं जहां पहुंचने के बाद मनुष्य कभी दुखी नहीं होता. आइए सुनते हैं कबीर साहब का यह रसमय सूत्र. मनवा तो अधर बसया, बहुतक झीणा होई. मनवा तो अधर बसया, बहुतक झीणा होई. आलोकत सचु पाईया, कबहू न न्यारा सोई. मनवा तो अधर बसया, बहुतक झीणा हो. मनवा तो अधर बसया, बहुतक झीणा हो. हलो

श्रोताओं, कबीर साहब अपनी समाधि के भीतर अनुभव को साझा करते हुए कहते हैं, मनवा तो अधर बसया। साधना और सुमिरन के बल पर मेरा यह जो मनवा यानी मन है, वह इस संसार की वासनाओं और मिट्टी के धरातल को छोड़कर अब अधर यानी उस भीतरी शून्य आकाश, उस ब्रह्मारंध्र के शिखर पर जाकर बस गया है। बहुतक झीणा होई और वहाँ पहुँचकर यह मन इतना झीणा यानी इतना महीन, हल्का और विचार शून्य हो गया है कि इसका अपना कोई अहंकार बचा ही नहीं। जब मन इतना सूक्ष्म हो जाता है तब क्या घटित होता है? अगली पंक्ति में कबीर कहते हैं, अलोकत सचु पाइया। उस परम ऊंचाई पर, उस अलोकत यानी अलौकिक अदृश्य निराकार परमात्मा का दर्शन करते ही इस आत्मा ने सचु यानी उस परम सत्य और अखंड आनंद को पा लिया है। कब हो न न्यारा सोई, और अब आनंद की स्थिति यह है कि वह परमात्मा मुझसे कब हूँ यानी कभी भी न्यारा यानी अलग नहीं होता। हम दोनों मिलकर एक हो गए हैं, जब वहाँ कोई जुदाई ही नहीं बची। यह दोहा योग दर्शन की अमनस्क अवस्था और वेदांत के जीवन मुक्ति का साक्षात प्रमाण है। अधर का अर्थ केवल आसमान नहीं बल्कि योग की भाषा में शून्य या सहस्रार चक्र है, जहाँ पहुँचकर साधक की ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो जाती है। जब तक मन स्थूल संसार की चिंताओं में फंसा है वह भारी रहता है। कबीर समझा रहे हैं कि जब ज्ञान के प्रकाश में मन झीणा यानी पूरी तरह शुद्ध हो जाता है तो ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय का भेद मिट जाता है। आत्मा जब उस सचु यानी सत्य को देख लेती हैं तो उसी में लीन हो जाती हैं। जैसे नमक की पुतली समुद्र की थाह लेने जाए और खुद समुद्र ही बन जाए, वैसे ही यह मन भी गोविंद से मिलकर गोविंद ही हो जाता है। आज का चिंतन, मेरे दोस्तों, आज जरा देखिए कि हमारा मन किस कदर नीचे कीचड़ में ईर्ष्या, नफरत, कलह और छोटी मोटी चिंताओं के धरातल पर रेंग रहा है। हम रोज खुद को भारी और थका हुआ महसूस करते हैं क्योंकि हमने अपने मन को ऊंचा उठने ही नहीं दिया।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज फिर आप सबका स्वागत। जब हमने ये समझ लिया कि आप जिस हैप्पीनेस के हम बात कर रहे हैं वो एक स्टेबिलिटी को दर्शाता है, मेरे अंदर की स्टेबिलिटी। कोई भी सिचुएशन हो, व्यक्ति कुछ भी कह रहा हो, कोई मेरा अपना भी कुछ भी क्रिएट कर रहा हो, वो स्टेबल रहना मेरा अपना कार्य है। मैं खुद उस स्टेबिलिटी को क्रिएट कर सकती हूँ, यानी कि मैं अपनी हैप्पीनेस इंडेक्स को खुद स्टेबल कर सकती हूँ, वो ऐसे ऊपर नीचे नहीं होगा। लेकिन सुबह अगर बैठकर या आज अभी बैठकर मैंने ये सोच लिया कि मैं कर सकती हूँ, करा भी, थोड़ी देर के लिए किया भी, लेकिन कौन सी ऐसी बातें हैं, अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो दिन भर में होती हैं और मुझे पता ही नहीं चलता कि वो क्यों जो इंडेक्स है वो फिर ऊपर उठना या नीचे जाना शुरू कर देता है। तो इस पर बात करते हैं, हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: अगर हम देखें, मैंने तय तो कर लिया कि ठीक है, मैं ही क्रिएट करूंगा वो थॉट कि आई एम अ हैप्पी बीइंग। और अगर लास्ट कड़ी को देखें तो हमने उसमें भी बात की थी अपने मेडिटेशन के दौरान भी। दिन भर में क्या हो जाता है, ऐसे कौन सी ऐसी बातें हैं अगर हम उन पर आज देखने की कोशिश करें कि जिनसे वो धीरे धीरे फिर खत्म होने लगते हैं शक्ति।
1: सबसे पहले अब हमारा बिलीफ सिस्टम चेंज हुआ। ये बिलीफ सिस्टम कि आई वॉन्ट हैप्पीनेस, इससे चेंज हो गया I am a happy being. This itself is a big shift in the way I'm going to think. और दूसरा, फिर जब मैंने ये समझा कि मेरी happiness dependent नहीं है, मेरी happiness बाहर से नहीं आनी है, तो I stop looking for it outside. You know, अभी तक I'm always looking for it. And मैं सब कुछ यही सोच कर रही हूँ कि इससे खुशी मिलेगी, इससे खुशी मिलेगी। अब मुझे ये decide करना है, मुझे खुश रह कर
0: चीजें करनी
1: ये है। करना है। यू नो द फोकस शिफ्ट्स, एक है ये करना है फिर खुशी मिलेगी, और एक है खुश रहना है, मतलब खुश रह कर फिर ये करना है। इवन अ सिंपल थिंग लाइक गेटिंग अप इन द मॉर्निंग, गो टू वर्क, यू नो हाउ डज इट स्टार्ट। जैसे ही हम सुबह उठते हैं, हमारी फर्स्ट थॉट क्या है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है हर एक के लिए। एवरी वन नीड्स टू चेक वॉट इज माई फर्स्ट थॉट। अगर मेरी फर्स्ट थॉट ये होती है, ओह सुबह हो गई अब उठना है, एंड नॉर्मली मोस्ट ऑफ अस हैव दिस थॉट आई हैव टू गो टू वर्क। तो जो हैव टू सोच कर करेगा वो खुश नहीं हो सकता कभी भी। पहली बात तो हमें ये समझना पड़ेगा, वाई डू आई हैव टू गो टू वर्क, आई डोंट हैव टू, नो वन इज सिटिंग देयर कि आपको जाना ही है काम पर। लेकिन हम खुद जाते हैं ये सोचकर कि आई हैव टू गो टू वर्क बिकॉज आई हैव टू गेट द मनी, वाई बिकॉज आई हैव टू बाय द थिंग्स, वाई बिकॉज एट द एंड ऑफ इट आई विल गेट हैप्पीनेस। नाउ इट कैन चेंज टू आई एम हैप्पी एंड आई वॉन्ट टू गो टू वर्क। किस लिए जाना है, अभी काम पर जाना था क्योंकि वहां से लाना है, वहां से लाना है और उससे खुशी आएगी। अब ये हो सकता है कि मुझे काम पर जाना है, वो तो ठीक है, जब वो पार्ट तो है ही धन का, लेकिन एक अलग पर्पस के लिए जाना है। एंड दैट पर्पस कुड बी कि ये जो मेरी वैल्यूज है, हैप्पीनेस है, लव, पीस, हर एक के साथ जिसको मैं मिलने वाली हूँ आज सारा दिन में, आई एम गेटिंग द अपॉर्चुनिटी टू हैव एन एक्सचेंज ऑफ दिस एनर्जी। आई एम नॉट गोइंग टू गो टू वर्क ताकि मुझे ये मिले, लेकिन आई एम गोइंग टू गो टू वर्क ताकि आई गेट द अपॉर्चुनिटी टू शेयर दिस। पूरा पर्पस शिफ्ट हो जाता है। एंड एक फर्स्ट थॉट जो मॉर्निंग की है, ये क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम अपनी वोकैबुलरी को चेक करें तो ये हैव टू वर्ड इसको निकालना,
0: इसको डिलीट ही कर देना चाहिए। एंड समवेयर अमेजिंग, ओ माय गॉड, आई कांट बिलीव इट कि मैं सुबह उठूं और मैं ये सोचूं कि मैं आज अगर काम पर जाऊंगी तो मैं प्यार शेयर करूंगी, मैं हैप्पीनेस शेयर करूंगी। कैन वी डू दैट? या हम ये सोचें कि मेरा बॉस क्या करने वाला है?
1: देखो सारा दिन कैसा बीतता है ना, आज मेरा सारा दिन ऑफिस में कैसा बीतता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि मेरी नेक्स्ट डे मॉर्निंग की थॉट कैसी होगी। अगर मेरा ऑफिस का एक्सपीरियंस सारा दिन एक स्ट्रगल है, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे है, देन ऑब्वियसली आई डोंट लुक फॉरवर्ड टू इट। मैं कल क्यों देखूंगी, जैसे आई हैव टू गो, ये एक मजबूरी है। लेकिन इफ़ आई गो टू वर्क ये स्टेबिलिटी के साथ, और सारा दिन मैं जिनके साथ भी मिलूं, मैं उनके साथ ये एनर्जी शेयर करती हूँ, मैं छोटी छोटी बातों में डिस्टर्ब नहीं होती, तो मेरा पूरा दिन कैसे बीतेगा? वो पूरा दिन तो बहुत, इट विल बी वेरी फुलफिलिंग, क्योंकि हैप्पीनेस, लव, ये एक ऐसी एनर्जी है कि जितना हम इसको शेयर करते जाएंगे ये मेरे अंदर सिर्फ बढ़ती जाएगी। तो अगर मैं ऑफिस जाकर 10, 20, 50 लोगों से मिलने वाली हूँ और वो एनर्जी हर टाइम शेयर करते हुए मेरे अंदर बढ़ती जाएगी, विल आई नॉट एंजॉय गोइंग टू वर्क? और उसके लिए भले आप रात को वो थॉट क्रिएट करके सो. ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि रात को हम क्या प्रोग्रामिंग करते हैं वो थॉट हमारे माइंड पर ऑटोमेटिकली पॉप अप करेगी नेक्स्ट मॉर्निंग. सो अगर सुबह एकदम से नहीं याद रहने वाला है, आधा काम तो आप पहले रात को कर दो. रात को प्रिपेयर योरसेल्फ कि मेरा कल का दिन ऐसे, एंड लुक एट सी इट्स अ कॉन्शियस एफर्ट. कुछ भी अपने आप नहीं होगा. हम सोचते हैं हाँ समझ में आ गया ये तो अपने आप हो जाएगा. अपने आप नहीं,
0: you'll have to do this.
1: अपने आप नहीं होगा. नहीं, बहुत ब्यूटिफुल चीज है जब हम अपने थॉट्स को देखना शुरू करते हैं. जैसे ही दिखाई देता है कि दिस थॉट इज नॉट वेरी, स्टॉप. Change it. And changing it means substituting it with something else. हमने पहले ही देखा कि thought feeling को generate करती है. ठीक है, thought पर नहीं पता चला कि अच्छी है या बुरी है. Feeling पर पता चल जाता है. Feeling पर पता चलेगा. Why not change the thought? जैसे ही हम ये thought create करते हैं, I have to go to work. कैसी feeling create होगी? हमें ये पता है. अभी अभी करो. I want to go to work. कैसी फीलिंग क्रिएट होगी? इट इज इमीडिएटली हैपनिंग इट साइड. लेट्स ट्राई टुमारो मॉर्निंग. आई वॉन्ट टू गो टू वर्क. क्योंकि जिससे आप शुरुआत करोगे, अगर हम यही सोचकर काम पे जाएंगे कि ये मेरी मजबूरी है, ये मुझे करना पड़ता है, जबरदस्ती है, इस क्या एनर्जी फ्लो होगा? आप किस एनर्जी से वॉक इन करते हैं? सो अभी ये होगा कि अगर सारा दिन अच्छा बीतेगा तब मैं अच्छी थॉट क्रिएट करूं. अब वो नहीं, मैं अच्छी थॉट क्रिएट करती हूं
0: तो मेरा दिन अच्छा बीतेगा.
1: So let me start from my tomorrow morning thought, my first thought in the morning. And agar wo automatically apne aap sirf nahi create ho rahi, baith kar usko karna hai. Baithna hai, apne aap se 2 minute baat karni hai, pehli good morning apne saath honi chahiye. It is very important. And prepare, I want to go to work. I'm very happy. Not, I have to go to work to earn this to get happiness. Nahin. Equation change hai. I am a happy being. Aur wo jo 2 minute hum reflection roz karte hain, usko subah mein karke shuru karna hai. Ab aap nikle morning.
0: To apne saath, chahe hum baaki sare kaam bhi kar rahe hain, this conversation actually can go on.
1: Waise bhi sare kaam karte hue conversation to andar chalti rehti hai.
0: You know, so why don't we consciously create this conversation?
1: Aur isliye hum kehte hain ki meditation कोई 2 मिनट 10 मिनट या 1 घंटे की चीज नहीं है. मेडिटेशन तो सारा दिन चलती रहती है. क्योंकि मेडिटेशन मींस क्या? मेडिटेशन की फर्स्ट स्टेज है अपनी इंटरनल कॉन्वर्सेशन. मेडिटेशन मींस थॉट्स तो चल रहे हैं, लेकिन मेडिटेशन मींस अवेयर होके कॉन्शियसली राइट थॉट्स क्रिएट करना. राइट पावरफुल पॉजिटिव हैप्पी थॉट्स. तो ये हमें क्या बैठ कर करना पड़ेगा? हम सारा दिन कर सकते हैं, लेकिन क्यों बैठ कर करते हैं? क्योंकि सारा दिन में हम कहते हैं पता ही नहीं चलता कितनी. तो प्रैक्टिस थोड़ी सी बैठ कर अगर हो गई, फिर अवेयरनेस सारा दिन करना बहुत ईजी है. अब आप कल की अपनी जो दिन है ना, उसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके अभी साथ साथ देखते जाओ कि सुबह उठे विद द राइट थॉट. राइट थॉट से उठे, प्रोमिस योर सेल्फ इमिडिएटली कि अब मेरा बच्चों को उठाने का तरीका, बच्चों को तैयार करने का मेरा तरीका. क्योंकि हम अपनी थॉट्स के साथ जो एनर्जी क्रिएट करते हैं, उसी से एनर्जी भी पूरे घर के अंदर क्रिएट हो जाती है. कॉन्शियसली टेल योरसेल्फ ये सब कुछ आज स्टेबिलिटी के साथ होने वाला है. चाहे कुछ भी हो जाए, आई विल रिमेन स्टेबल. करना तो वही काम होता है, तैयार करना है, ब्रेकफास्ट देना है, स्कूल तक छोड़ना है. अब उसी को या तो ऐसे करके करो या
0: बच्चे सुनते ही नहीं है, उठते ही नहीं है, तैयार नहीं
1: होते. पहले से ही तो थॉट क्रिएट कर लेते हैं इतने सारे. अच्छा, बच्चे सुनते नहीं है, उठते नहीं है, एक्सेप्ट इट ना, दिस इज पार्ट ऑफ चाइल्डहुड. मेरे चिल्लाने से कोई ज्यादा थोड़ी हो जाएगी वो चीज. हाँ ये है, एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो जाएगा. नाउ वंस आई स्टार्ट माय डे, चाहे वो घर पे है चाहे वो ऑफिस में है, हमें कुछ एक बातों का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता. एक जो हमने पिछली बार भी देखी, जजमेंटल. ये तो फंडामेंटल है. आई डोंट नो अगर सबने ट्राई किया हो, नहीं किया हो तो अभी भी करें कि जजमेंटल होने से हमारी बहुत सारी शक्ति वेस्ट हो रही है.
0: बच्चे ने होमवर्क नहीं किया, सुबह पता चला आप ऐसे ही हो.
1: अब आपको शाम को ही करना पड़ेगा उसके ऊपर सोल्यूशन. सी, अब क्रिटिसाइज करके कुछ नहीं होने वाला. या तो कल शाम देखना चाहिए था उस बात को, या अब आज शाम को आकर देखेंगे. रॉन्ग एनर्जी देकर उसे भी स्कूल भेजना या खुद भी वो रॉन्ग एनर्जी क्रिएट करना, जब वो चीज का अब कुछ नहीं हो सकता, तो व्हाट इज द पॉइंट अननेसेसरली वी आर क्रिएटिंग. सी लेट्स बी केयरफुल. जैसे हम बाकी शक्तियों का बहुत ध्यान रखते हैं, रिसोर्सेस का ध्यान रखते हैं, पानी तो हम वेस्ट नहीं करते आजकल बिल्कुल, इलेक्ट्रिसिटी हम वेस्ट नहीं करते, पेट्रोल हम वेस्ट नहीं करते, एंड अपनी संकल्प शक्ति वेस्ट करते जाते वेस्ट करते. तो हमें ध्यान रखना है मेरी एनर्जी कहाँ वेस्ट हो रही है. और ये बार बार से चिल्लाना चीखना गुस्सा करना, दिस इज वेस्टेज ऑफ एनर्जी. खुशी चाहिए नहीं, खुशी है उसको वेस्ट मत कीजिए. आपके पास टैंक है उतना पानी का, आप एवं सारी दुनिया में ढूंढ रहे हैं पानी चाहिए, टैंक है. अब सिर्फ ध्यान रखो ना, ऐसे ही उसका नल चलता ना रहे, बह ही जा रहा है वो पानी, तो खुशी है. अब सिर्फ ध्यान रखना है कि अब जजमेंटल क्रिटिकल क्रिटिसाइज सारा दिन करते रहना, दिस इज वन बिग वेस्टेज ऑफ एनर्जी. और जजमेंटल
0: मतलब
1: में
0: दूसरों की स्क्रिप्ट लिखना, वो हम बार बार कहते हैं कि दूसरा क्या कर रहा है. और कितनी बार तो हम पड़ोसी क्या कर रहा है उसके ऊपर भी बात करने लगते हैं, मतलब हम सोचने लगते हैं अननेसेसरली देखते हुए ही. इनफैक्ट सो मेनी टाइम्स वी डू इट अननोइंगली.
1: हमें इसलिए देखना पड़ेगा, जिस तब जब तक हम देखेंगे नहीं ना एक दिन अपने आप को, हमें ये भी नहीं पता चलेगा कि हम कितना ज्यादा करते हैं ये. और ये एक एक वेस्टेज ऑफ एनर्जी है. मैं कितना भी बैठकर औरों के बारे में सोचती रहूं, औरों ने मेरे हिसाब से चलना नहीं, वही एनर्जी अगर मैं अपने बारे में सोचते में लगा देती तो आई वुड हैव बीन एबल टू डू मिरेकल्स. आई एम डूइंग माई वर्क and I'm thinking about other people and other people's work and the scenario, duniya mein kya ho raha hai, uske wastage of energy. ab jaise hi ye hum judgmental hone lagte hain, lekin log to hamare anusar nahi chalte, to frustration create hota hai. suppose senior hai junior ko bol rahe hain bar bar, lekin wo manta hi nahi, to ab kya hoga, aur frustration aayegi aur gussa aayega, hum out of control chale jate hain. that is why we say anger is like temporary insanity. you go temporary insane. Why insane? क्योंकि आप out of control चले गए हैं. पहली चीज तो वो emotion ने आपको overpower कर लिया है. So you lose your creativity.
0: Actually अगर हम देखें सचिवानी, हम बाहर लोगों को देख भी क्यों रहे थे, क्योंकि हमें कुछ और थोड़ा दिख रहा था, हमें जो दिख रहा था हम उसी को देख रहे थे. और फिर हमें गुस्सा चढ़ता था कि क्यों नहीं चेंज कर लेता, मुझे समझ में आ रहा है कि ये इसके लिए ठीक है.
1: बिल्कुल.
0: तो सिमिलरली अगर हम अपने आप को देखना शुरू करेंगे तो मुझे वही दिखेगा
1: और मुझे ये समझ में आएगा कि मेरे लिए क्या सही है. जिसको देखते हैं उनके लिए कितना इजी है. ऐसे ही मैं आपको देखूं और मेरे को पता है कि आपके लिए क्या सही है, आप मुझे देखो और आपको ये पता चले मेरे लिए क्या सही है. लेकिन हम दोनों एक दूसरे को चेंज तो नहीं कर सकते. लेकिन दोनों अगर अपने आप को देखना शुरू करें उतने ही टाइम में कि मेरे लिए क्या सही है, वी विल डू वंडर्स. एंड दैट्स व्हाई एट द ब्रह्मा कुमारीज वी से कि व्हेन वी चेंज द वर्ल्ड चेंजेस. हम बदलेंगे तो जग बदलेगा. क्यों? हम एक एक अगर बदलते गए, एक तो हम बदले तो हमारा दृष्टिकोण बदला, जग ही बदल गया हमारे लिए. और प्लस हम अगर एक एक बदलते गए तो विश्व तो परिवर्तन अपने आप हो जाएगा. इट इज सच अ नेचुरल प्रोसेस. लेकिन हमने उसको डिफिकल्ट इसलिए बना दिया, जब आप बदलेंगे तब मैं बदलूंगी.
0: क्योंकि अभी तक मुझे दिख ही आप रहे थे.
1: yes. अवेयरनेस सारी बाहर है ना?
0: और मेरी डिपेंडेबिलिटी भी आपके ऊपर हो रही थी.
1: yes.
0: मेरी डिपेंडेंसी आपके ऊपर थी, मेरा हर चीज आपके ऊपर थी. तो फिर पूरा फोकस yes. आपके ऊपर था.
1: एंड दूसरी चीज जो बहुत बड़ा लीकेज बनती है हमारी खुशी में, वो होती है हमारी एक्सपेक्टेशंस. हमने बहुत सभी से अपेक्षाएं बना कर रखी हैं, और जब फिर लोग हमारी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरते तो हमारी खुशी का इंडेक्स पूरी तरह से नीचे. इवन अ सिंपल चीज लाइक बस नहीं आई टाइम पर. मेरी एक्सपेक्टेशन थी ना कि बस अगर रोज सुबह 8 बजे आती है तो आनी चाहिए. तो जैसे ही वो टाइम पर नहीं आई, मेरा हैप्पीनेस इंडेक्स फॉल हो जाता. इसी तरह से अगर हम चेक करें हमने जीवन में किन किन लोगों से एक्सपेक्टेशंस बनाई हुई हैं, हाउ मच डू यू थिंक इट विल कम अप टू, हाउ मेनी पीपल डू वी हैव एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम? ऑलमोस्ट
0: एवरीवन. यस,
1: एवरीवन.
0: एंड देन वी कीप ऑन सेइंग वी डोंट हैव एनी एक्सपेक्टेशंस. व्हाट इज रियली मेंट बाय एक्सपेक्टेशंस?
1: या व्हाट इज मेंट बाय एक्सपेक्टेशंस? एक्सपेक्टेशंस मतलब क्या? एक्सपेक्टेशंस मतलब दूसरे के फ्यूचर बिहेवियर को प्रेडिक्ट करना.
0: ओके.
1: मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप ऐसा करेंगे.
0: आपके कर्म को ही मैंने
1: कर्म या बोल व्यवहार जो भी, आई एक्सपेक्ट दैट यू विल डू दिस, मतलब आने वाले भविष्य में, दैट कुड बी द नेक्स्ट मिनट और इट कुड बी व्हाटएवर, आप क्या करने वाले हैं उसको मैं पहले से ही प्रेडिक्ट कर लेती हूँ.
0: तो मुझे आपसे ये उम्मीद न थी, ये कहते थे.
1: एग्जैक्टली. That's the point. तो आपको खुद को भी नहीं पता कि आप
0: तो I know. जब वो हो जाता है तब हम कहते हैं ना कि मुझे आपसे ये उम्मीद न थी.
1: तो मैंने आपका फ्यूचर बिहेवियर ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर लिया है. एंड जब अगर आपका फ्यूचर वो नहीं हुआ जो मैंने प्रिडिक्ट किया था देन आई विल से यू डिड नॉट मीट अप टू माई एक्सपेक्टेशंस. तो अब आई हैव टू स्टॉप और अपने आप से लॉजिकली पूछना पड़ेगा कितना इंटेलिजेंट आइडिया है ये.
0: हुए माई
1: तो फिर भी ठीक है. हुए माई तो डेफिनेटली इज अ क्वेश्चन. लेकिन फिर भी लोग कहते हैं क्यों एज अ पेरेंट हम एक्सपेक्ट ना करें. एज अ हस्बैंड या एज अ वाइफ मैं एक्सपेक्ट ना करूँ. एज अ टीचर मैं अपने स्टूडेंट से एक्सपेक्ट ना करूँ. एक्सपेक्ट दैट्स वे इट्स वेरी ये एक चीज है जिसको लेट गो करना बहुत डिफिकल्ट है.
0: एक्चुअली वो तब तक नहीं पता चल पाता जब तक कि वो फेल नहीं होता कि मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे.
1: यस लेकिन आप सारा दिन में देखना ना. सपोज मैं आप एन एक्सपेक्टेशन किस आधार पे भी है बेस्ड है कि जैसे आप जिस तरह से बोलते आए हैं मेरे साथ कल भी आप इसी तरह से बात करेंगे. लेकिन अगर कल आपने एक अलग तरह से बात कर ली ऐसे आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू. सो एक्सपेक्टेशन मतलब मैंने पहले ही सोचा हुआ था कि कल आप इस तरह से बात करेंगे. ये आज आपने डिफरेंट तरह से कैसे कर लिया. सो आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू. तो किसी के पास्ट के साथ उसको कंपेयर करना कि ये जैसे करते आए हैं जैसा वैसे ही करेंगे या जो आपके बिलीफ सिस्टम्स पहले थे आप वैसे ही चलेंगे. ये मैं पहले से ही दूसरे के लिए डिसाइड कर लेती हूँ और फिर जब वो वैसा नहीं करते हैं आई फील वेरी वेरी लेट डाउन.
0: यस
1: वेरी लेट डाउन. एंड वो हर्ट फिर सैडनेस एंड फिर एंगर भी निकलता है. आउटबर्स्ट तो निकलती है. अब बहुत दो बातों में हम फंसते हैं. एक तो औरों से एक्सपेक्ट करना उसमें भी बहुत चैलेंजेस और दूसरों की एक्सपेक्टेशंस को मीट करना वो भी. ये दोनों चीजें हमारे हैप्पीनेस इंडेक्स को
0: Yes, you know. What did you expect of me? मुझसे क्या उम्मीद करते हो मुझसे क्या चाहिए. बच्चे कितनी बार बोल रहे होते हैं पेरेंट्स कितनी बार बोल रहे होते हैं.
1: अब दोनों केस में क्या है इफ यू मीट माय एक्सपेक्टेशंस आई विल बी हैप्पी. एंड अगर मैं आपकी एक्सपेक्टेशंस मीट करती हूँ फिर आप खुश होंगे
0: तो मैं खुश हो जाऊंगी.
1: तो दोनों चीजों में एक्सपेक्टेशंस का हैप्पीनेस के साथ बहुत डायरेक्ट हमने कनेक्शन रखा हुआ है. और हमें सोचना पड़ेगा कि हमने अपनी खुशी को किस चीज पर डिपेंडेंट कर दिया कि भविष्य में ये क्या करेंगे कैसे बात करेंगे कैसे बिहेव करेंगे वो मैं पहले प्रिडिक्ट करती हूँ और उसके ऊपर अपनी खुशी को डिपेंडेंट कर देती हूँ. फिर वो वैसा करते नहीं हैं और फिर मैं उदास हो जाती हूँ. Whose fault is this?
0: उनकी so natural. See again, you know, it's now फिर हम बिल्कुल उस deep belief systems पे आ गए हैं जो जिन पर हम वही पूरा मेरा process उसी पे खड़ा है कि जो आप मुझसे एक तरह से behave करते हुए आ रहे हो एक तरह से बात करते हुए आ रहे हो अगर आप मुझसे अलग तरह से बात करोगे तो it's actually
1: It's so natural I get hurt.
0: I get hurt, yes.
1: Belief system change करने ना अपने सारे. I didn't hurt you.
0: I think language.
1: I just changed my behavior. ये बहुत critical हो जाता है कि future prediction पर अपनी खुशी को आधारित कर दिया है. वो खुशी कैसे स्टेबल होगी
0: तो ये इस बिलीफ
1: क्योंकि वो तो एक भविष्य का प्रिडिक्शन है ना. दिस इज लाइक एन एस्ट्रोलॉजी कि मैंने भविष्य का आपका प्रिडिक्शन कर दिया और उस पर अपनी खुशी को बेस कर दिया और फिर अगर वो सही नहीं निकली तो मेरी खुशी गई ऐसे. एंड फिर मैं उसका ब्लेम किस पर डाल देती हूँ. यू डिड नॉट मीट अप टू माई एक्सपेक्टेशंस. नो मैंने एक्सपेक्टेशंस पहले क्रिएट क्यों की
0: लेकिन मुझे पता भी नहीं होता ना कि मैंने की हुई है.
1: इसी को तो अब अवेयरनेस रखनी है कि किन किन लोगों से क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हम रखते हैं.
0: ऐसे हम कटते जाएंगे फिर सबसे.
1: नहीं कटते क्यों जाएंगे हम सबसे. आपको पता है हमारे रिलेशनशिप्स कितने अच्छे हो जाएंगे अगर हमने एक्सपेक्टेशंस नहीं रखे. क्या होगा
0: एक्सपेक्टेशंस ही नहीं रखी. बच्चे के साथ अगर हमने नहीं रखे तो आई डोंट इवन एक्सपेक्ट कि ईदर यू गोइंग टू गिव मी रिस्पेक्ट इवन दिस मच दिस इज आल्सो एक्सपेक्टेशन.
1: अच्छा इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं. एक्सपेक्टेशंस क्योंकि आपने कहा एक्सपेक्टेशंस रखना नेचुरल है लेकिन क्या डिटैच्ड एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं कि एक्सपेक्टेशंस रखेंगे
0: तब भी ठीक नहीं भी किया तब
1: लेकिन
0: भी
1: अगर नहीं किया okay. तो हम ऐसे नहीं जाएंगे. ये तो कर सकते हैं साथ साथ या ये नहीं कर सकते.
0: आई थिंक सो यस,
1: क्योंकि नहीं तो फिर हम ऐसे ऐसे,
0: ऐसे
1: होते,
0: होते रहेंगे.
1: अगर हमें अपने जीवन,
0: गुड यू गिव अस वन सम ब्रीदिंग स्पेस, वी कैन डू दैट.
1: ये तो कर सकते हैं.
0: इवन हस्बैंड ने भी अगर बुरे तरह से रिएक्ट किया, मतलब अच्छा वाला प्यार से बात करते थे और आज आके ऐसे गंदे तरीके से रिएक्ट किया, तो हम परेशान नहीं करेंगे अपने आप को.
1: वो तो हो सकता है ना, क्योंकि जैसे ही आप वो करोगे तब हो सकता है कि आपके एक्सपेक्टेशंस फिर मीट भी हो जाएंगे कि वो आपकी स्टेबिलिटी से वो भी जल्दी से ठीक होकर ही विल कम बैक टू. सी इवन सेइंग आई एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू, दिस इज अ वोकैबुलरी विच सेज डू इट अकॉर्डिंग टू मी. जो मुझे चाहिए आप अपने जीवन को वैसा. सी हम क्या होता है, लोगों की एक्सपेक्टेशंस मीट करने की कोशिश में कहीं ना कहीं हम अंदर बहुत सफोकेट होने लगते हैं हम, और फिर हमारी वोकैबुलरी भी ये कहती है मैं उनके लिए ये कर रहा हूँ, मैं उनके लिए ये कर रहा हूँ. इमेजिन अ लाइफ लाइक दिस, मैं इनके लिए ये कर रहा हूँ. नहीं, अगर किसी के कहने पर आप कुछ कर भी रहे हैं तो वोकैबुलरी शुड बी मुझे अच्छा लग रहा है इसीलिए मैं ये कर रहा हूँ. क्योंकि अगर मैं आपके लिए कर रहा हूँ ना, और फिर अगर आप मेरे से खुश नहीं हुए तो आपको पता है मैं कितना रिजेक्टेड फील करने वाले हूँ उसके बाद.
0: नो, बट इफ आई वांट टू मीट योर एक्सपेक्टेशंस, यू नो, सपोज मुझे पता है
1: आई वांट टू मीट योर एक्सपेक्टेशंस. इफ यू वांट टू मीट माय एक्सपेक्टेशंस, सबसे पहले आपको उनको अपना एक्सपेक्टेशंस बनाना पड़ेगा. सी अगर एक पेरेंट्स बच्चे से कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है, अगर बच्चा ये सोच सोच कर करेगा मैं उनके लिए कर रहा हूँ, मैं उनके लिए कर रहा हूँ, आई डोंट थिंक इट्स द राइट एनर्जी. अगर बच्चे को पेरेंट की वो बात अच्छी लग रही है, समझ में आ गई है, एक्सेप्ट कर लिया, अब मैं अपने लिए कर रहा हूँ.
0: लेकिन बच्चा जो है समझता है कि मेरे लिए ये ठीक नहीं है. सपोज एनडीए में जाना, मेरा मन है एनडीए में जाने का, पेरेंट ने मना कर दिया नहीं जाना, बच्चा मान जाएगा कि ठीक है, क्योंकि वो बहुत पेन में चले जाएंगे, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, ये हो जाएगा. उसे नहीं पसंद था, बट ही एक्सेप्टेड पेरेंट्स वर्डिक्ट, यू नो, पेरेंट्स एक्सपेक्टेशंस, और उसने वो किया जो वो चाह रहे थे, बिकॉज ही वॉज नॉट एबल टू सी.
1: नहीं, वो करने से पहले उसको अपने साथ सॉर्ट आउट करनी पड़ेगी बात. दोनों में से एक तरफ डिसीशन लेने से पहले या तो बात करके उनके साथ अपनी बात शेयर करके आप सॉर्ट आउट कर लो. लेकिन अगर आप उनकी बात को स्वीकार कर रहे हो, आप उसको तब तक नहीं करो जब तक आपने उसको अपना नहीं बनाया. सी इफ आई रिस्पेक्ट यू, या मैंने आपकी खुशी के लिए कर लिया, चलो आपने कहा पेरेंट्स बहुत हर्ट हो जाएंगे, मैंने आपके लिए किया ना, लेकिन मुझे अपने आप को कहना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा ये कि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये खुश हो, और उसके लिए मैं ये करना चाहता हूँ. इट हैज टू बी मी. इफ इट इज नॉट माय डिसीजन आई विल बी इन पेन थ्रू आउट व्हाइल आई एम डूइंग इट. लेकिन अगर मैंने उसको अपने लिए कर लिया, फिर उसकी जिम्मेवारी, उसमें जितना एफर्ट चाहेगा. देखो, खुश रहकर कैसे करोगे, बात ये हो रही है खुश रहकर करो.
0: अगेन ओके, मैंने इसलिए किया कि मेरे पेरेंट्स खुश हो जाते और उससे मुझे खुशी मिल रही,
1: लेकिन अब मैं अपने लिए ये कर रहा हूँ.
0: ओके, मैंने किया क्योंकि मुझे पता था ये करने से मेरे पेरेंट्स को खुशी मिल रही थी, विच वॉज गिविंग मी हैप्पीनेस, राइट. फिर काफी टाइम बाद मैंने किया, तो मेरे पास वो बात तो रही कि मैंने इसे अपना थॉट, अपनी सोच तब बनाया था, क्योंकि तभी तो मैं उसमें एक्सेल कर पाऊंगा. अगर मैंने उस अपना बनाया होगा, मैं उसे एक्सेल भी कर जाता हूँ. लेकिन ये थॉट तो मेरे साथ ही रहा कि मेरे पेरेंट्स की खुशी इसमें थी और इसीलिए मैंने भी किया था.
1: लेकिन आपने सोच समझ के उस टाइम किया था. देखो, उसके बाद एक बार उसने आपने उस चीज को अपना बना लिया, आपके पेरेंट्स उस इक्वेशन से बाहर हो जाते हैं.
0: Because it is between you and the work.
1: Yeah, when whatever decision आपने जो निर्णय लिया अपने लाइफ में, चाहे वो करियर का है, चाहे वो आपके रिलेशनशिप्स का है, जब तक आई नो वन ब्रदर जिनका एक रिलेशनशिप था, ठीक है, द मदर डिड नॉट लाइक द आइडिया, द मदर डिड नॉट अप्रूव ऑफ द गर्ल. एंड भले उनका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग था, लेकिन अपने पेरेंट्स के लिए उन्होंने उस रिलेशनशिप को गिव अप किया. और ये बहुत सारे बच्चों के साथ होता है आज. लेकिन अब भले वो दूसरी तरफ सेट भी हो जाते हैं, कहीं और शादी हो जाती है, वो कॉन्स्टेंटली वो थॉट इतना डीप है माइंड पर, क्या मैंने सही किया या नहीं किया, लेकिन मेरी खुशी तो वहाँ थी, मैंने ये नहीं किया, मैंने अपनी मदर के लिए किया. अगर बार बार मैंने अपने पेरेंट्स के लिए ये किया, मैंने अपने पेरेंट्स के लिए किया, कहीं ना कहीं आपने पहले तो आप दर्द में रहेंगे फुल टाइम जब तक आपके वो थॉट है, और वो आपके रिलेशनशिप में आपके पेरेंट्स के साथ वो तो निकल ही आएगा सारा बाहर, मैंने आपके लिए क्या क्या किया. यू नो, एक दिन भी जब सामने वाला जिसके लिए आपने वो किया,
0: उसने अगर कुछ गलत किया, हाँ,
1: exactly.
0: क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन उनसे इतनी ज्यादा हो जाती है फिर.
1: Especially अगर मैंने आपके लिए कुछ कर दिया ये सोच करके मैंने आपके लिए किया, then I will also expect के
0: आप वही आप
1: में. And अगर आपने फिर नहीं किया, मैंने कहा मैंने आपके लिए क्या क्या किया, और मेरी लिस्ट तो यहाँ टॉप ऑफ द स्क्रीन पे हमेशा रेडी होती है कि मैंने आपके लिए क्या क्या क्या क्या किया, आपने क्या किया. दिस देन बिकम्स मोर लाइक अ बिजनेस एंड इट्स नो मोर अ रिलेशनशिप. फिर वो बहुत दर्द में रहेंगे, तो खुद भी दर्द में रहेंगे, पेरेंट्स के साथ जो एनर्जी एक्सचेंज होगा वो भी दर्द में है, जिस भी प्रोफेशन या जिस भी रिश्ते में जुड़े वहां भी दर्द है. और ये सब हो इसलिए रहा था क्योंकि पेरेंट्स को खुशी देने खुशी दे पाएंगे, इतना दर्द क्रिएट करके खुशी दे पाएंगे नहीं. तो टाइम लो, अपने आप से बात करो, समझाओ, जब तक वो चीज मेरी
0: अपनी,
1: अपनी नहीं हो जाती. आपको खुशी देने के लिए भी अगर मैंने किया तो मैंने किया क्योंकि मैं खुशी वो दिन, देन इट्स ओनली मी माय डिसीजन, अदरवाइज आई वुड फील माइट एज वेल नॉट डू इट. ऐसे करने का कोई फायदा नहीं रहेगा जो पूरा टाइम ये माइंड पर चलता रहेगा आपके लिए क्या आपके लिए क्या आपके लिए क्या, वो दर्द क्रिएट करने वाला है. तो ये जो एक्सपेक्टेशंस हम रखते हैं और एक्सपेक्टेशंस मीट करने की प्रयास में जो सारा दिन लगे हुए हैं, ये भी हमारी स्टेबिलिटी को बहुत ऊपर नीचे करता रहता है. तो एक एक्सपेक्टेशंस भले रखो कि आप ऐसा करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन मेरी खुशी उस पर डिपेंडेंट नहीं है. उससे क्या होगा, आप एक्सपेक्टेशन रखेंगे लेकिन अगर वो पूरी नहीं हो पाई
0: तो दैट्स ओके,
1: आप हर्ट नहीं होंगे. सारा रिएक्शन कब आता है, जब हम हर्ट हो जाते हैं. एक्सपेक्टेशन तो साइड पर हो जाती है, लेकिन मैं हर्ट हो गई तब मैं रिएक्ट करती हूँ. हर्ट नहीं अगर हुई तो रिएक्ट नहीं करूंगी, रिएक्ट नहीं करूंगी तो आपको इम्पावर कर सकूंगी कि आप वो कर लेंगे. यू नो, बच्चे को 90% नहीं मिला, लेकिन अगर मैं हर्ट नहीं हुई, गुस्सा नहीं किया, एंड आई गिव दैट लव एंड एक्सेप्टेंस, वो अगली बार और बेटर परफॉर्म कर लेगा. लेकिन मैं, यू डिड नॉट लिव अप टू माई एक्सपेक्टेशंस, तुम्हारे ऊपर मेहनत हम इसलिए इतनी करते हैं, ऑल दिस वोकैबुलरी विल ब्रिंग यू डाउन. एनीथिंग विच ब्रिंग्स मी डाउन, नेक्स्ट इट विल ब्रिंग यू डाउन. And then it's energy of pain.
0: Wonderful. Somewhere it's unexpected to really understand what we have been expecting. बहुत बार हम कहते तो हैं लेकिन समझ नहीं पाते कि हमारी expectations कितनी high होती हैं और हमारे से जो expectations हैं उन्हें meet करने के लिए हम कितने तत्पर रहते हैं. अगर आपके पास कोई सवाल है, कोई बात मन में उठ रही है, आपका स्वागत. आप हमें ईमेल पर या फिर फोन पर संपर्क कर सकते हैं. हमारे फोन नंबर्स हैं 0124-266-7000, 9999-344-555, 9999-344-666, 9873-666-555. हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org. आने वाली कड़ियों में कुछ और बातें करेंगे. आपसे विदा लेते हैं. ओम शांति.

0: वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, हमारा सवाल था कि कार्यक्रम में किस क्रांतिकारी की चर्चा की गई। इसका सही जवाब है मोहन किशोर नामदास। और सही जवाब भेजने वाले हमारे इस बार के दो भाग्यशाली श्रोता हैं, खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा और महेश्वर से प्रेमलाल वर्मा। आप दोनों ही श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूर वीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार अवकाश।

भारतीय ज्ञान परंपरा के आकाश में कुछ ऐसे नक्षत्र उदित हुए हैं जिनका प्रकाश समय की सीमाओं को लांघकर पीढ़ियों का मार्ग आलोकित करता रहा है। आयुर्वेद के पुनरुत्थान से जुड़े एक ऐसे ही महान व्यक्तित्व का नाम है डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति। जब परंपरा और आधुनिकता के बीच संवाद की आवश्यकता थी, तब उन्होंने आयुर्वेद की सनातन चेतना को नए युग की धड़कनों से जोड़ा। उनके लिए आयुर्वेद केवल चिकित्सा पद्धति नहीं थी, बल्कि वो आयुर्वेद को भारतीय संस्कृति की जीवंत आत्मा मानते थे। उसे जीवन को संतुलन, स्वास्थ्य और समरसता प्रदान करने वाली एक संपूर्ण दृष्टि मानते थे। ज्ञान उनकी साधना था, सेवा उनका धर्म और आयुर्वेद का उत्थान उनका संकल्प। वो आधुनिक भारत में आयुर्वेद चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के सबसे प्रमुख प्रणेताओं में से एक थे। डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति का जन्म 3 मार्च सन 1880 को आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले के माधववरम गांव में एक कृषक परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम अचंता रमैया था। परिवार के आध्यात्मिक वातावरण ने उनके व्यक्तित्व की नींव रखी। पिता की प्रेरणा से ही उन्होंने वेद पुराण और संस्कृत भाषा का गहन अध्ययन किया। उनके बाल्यकाल पर उनके दादा सुब्बा रायडू और प्रसिद्ध समाज सुधारक कुंदुकुरी वीरेश लिंगम का गहरा प्रभाव पड़ा। इन दोनों विभूतियों के सानिध्य ने उनके भीतर ज्ञान और समाज सेवा के बीज बोए। इसी बीच एक ऐसी घटना घटी जिसने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। उनकी माताजी गंभीर रूप से बीमार हुईं। उपचार के दौरान अचंता लक्ष्मीपति की भेंट राजमहेंद्रम के एक प्रसिद्ध वैद्य डॉक्टर सीतारमैया से हुई। ये केवल एक वैद्य से भेंट नहीं थी, बल्कि आयुर्वेद से उनका पहला सटीक परिचय था। डॉक्टर सीतारमैया ने उन्हें आयुर्वेद के व्यावहारिक सूत्रों से परिचित करवाया और उनके मन में इस भारतीय चिकित्सा परंपरा के प्रति आदर भाव जागृत किया। इस तरह भारत की इस अमूल्य विरासत को नई प्रतिष्ठा दिलवाने का संकल्प उनके मन में जागा।

वो समय था जब भारत में आधुनिक चिकित्सा शिक्षा का प्रभाव बढ़ रहा था। अचंता लक्ष्मीपति ने आधुनिक चिकित्सा पद्धति को समझने का निश्चय किया। सन 1904 में उन्होंने बीए की शिक्षा पूरी की तथा छात्रवृत्ति प्राप्त कर मद्रास मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लिया। इस तरह सन 1909 में उन्होंने एलोपैथी चिकित्सा में प्रामाणिक डिग्री हासिल की। सन 1910 में उन्होंने मद्रास में अपनी प्रैक्टिस शुरू की और वो वेंकटगिरी के राजा जैसे संभ्रांत वर्ग के पारिवारिक चिकित्सक बने। लेकिन सन 1914 में ब्रिटिश सरकार द्वारा मद्रास मेडिकल रजिस्ट्रेशन एक्ट पारित किया गया, जिसका उद्देश्य आयुर्वेद को गैर मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धति घोषित करना था। इसके विरोध में डॉक्टर लक्ष्मीपति ने अपना नाम एलोपैथी के मेडिकल रजिस्टर में दर्ज करवाने से इनकार कर दिया। ब्रिटिश सरकार के इस कदम को उन्होंने केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं माना, उन्होंने इसे भारतीय ज्ञान परंपरा के सम्मान का प्रश्न समझा। ये उनके पेशेवर जीवन के लिए जोखिमपूर्ण समय था, लेकिन इसी समय उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व का प्रवेश हुआ, वैद्य रत्न पंडित दीवी गोपाल चारलु। वो मद्रास के सुप्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान थे जिन्होंने अचंता लक्ष्मीपति की प्रतिभा को पहचाना तथा अपने संरक्षण में उन्हें आयुर्वेद के गहन अध्ययन का अवसर दिया। सन 1914 से 1919 तक अचंता लक्ष्मीपति ने उनसे गहन ज्ञान प्राप्त किया। सन 1919 में विश्व स्पेनिश फ्लू नामक घातक महामारी की चपेट में आ गया। इस महामारी ने दुनिया की एक तिहाई आबादी को अपनी चपेट में ले लिया था। इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण ये महामारी फैली थी। ऐसे कठिन समय में डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति ने आयुर्वेदिक उपचार के माध्यम से हजारों रोगियों को राहत पहुंचाई। इस अनुभव ने उनके इस विश्वास को और भी दृढ़ कर दिया कि भारतीय चिकित्सा पद्धति केवल अतीत की धरोहर नहीं है, बल्कि वर्तमान और भविष्य की आवश्यकता है। इसके बाद उन्होंने एलोपैथी इलाज पूरी तरह से छोड़ दिया और स्वयं को आयुर्वेद के लिए समर्पित कर दिया। सन 1920 में उनके गुरु वैद्य रत्न पंडित दीवी गोपाल चारलु का निधन हो गया और गुरु का दायित्व शिष्य के कंधों पर आ गया। डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति को मद्रास आयुर्वेदिक कॉलेज का प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया। सन 1920 से 1928 तक उन्होंने इस संस्था को केवल एक शिक्षण केंद्र नहीं, बल्कि उसे आयुर्वेदिक चेतना का केंद्र बिंदु बना दिया। इस कॉलेज को चलाने के लिए मुंगला के राजा ने भी बड़ी वित्तीय सहायता प्रदान की थी। डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति स्वास्थ्य को जीवन पद्धति का विषय मानते थे। यही कारण है कि उन्होंने सन 1926 में मद्रास के पास स्थित आवड़ी में आरोग्य आश्रम समिति की स्थापना की। ये केवल एक आश्रम नहीं था, बल्कि स्वास्थ्य और प्रकृति के समन्वय का प्रयोग था। एक ऐसा स्वास्थ्य ग्राम जहां उपचार के साथ साथ जीवन जीने की कला सिखाई जाती थी। डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति ने युवा वैज्ञानिक डॉक्टर यल्ला प्रगदा सुब्बाराव की प्रतिभा को पहचान कर उनके प्रारंभिक शोध कार्यों को प्रोत्साहित किया और उनकी उच्च शिक्षा का मार्ग प्रशस्त किया, जिन्हें चमत्कारिक औषधियों का जनक माना जाता है। डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति पर रमण महर्षि के आध्यात्मिक विचारों का गहरा प्रभाव था, जिन्होंने उनके चिंतन और विचारधारा को एक सार्थक दिशा प्रदान की। वो गांधी जी के विचारों से भी अत्यधिक प्रभावित थे तथा स्वदेशी आंदोलन में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई।

सन 1933 में डॉक्टर अजंता लक्ष्मीपति की सेवाओं और नेतृत्व क्षमता को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हुई। बीकानेर में आयोजित ऑल इंडिया आयुर्वेद महासम्मेलन में उन्हें अध्यक्ष चुना गया। धीरे धीरे उनकी ख्याति पूरे देश में फैल रही थी। लोग उन्हें केवल एक चिकित्सक के रूप में नहीं बल्कि आयुर्वेद का पुनरुत्थान करने वाले मनीषी के रूप में देख रहे थे। लेकिन उनकी सबसे बड़ी यात्रा अभी शेष थी, एक यात्रा जो उन्हें गांधी जी के और निकट ले गई, एक यात्रा जिसने गांव गांव जाकर स्वास्थ्य संदेश पहुंचाया। सन 1938 का साल भारत की स्वाधीनता के स्वप्न से आंदोलित साल था। महात्मा गांधी ग्रामोदय और स्वावलंबन के विचार को जन जन तक पहुंचा रहे थे। इसी समय डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति ने एक अभिनव अभियान आरंभ किया जिसका नाम था आरोग्य यात्रा। वो लगभग 100 चिकित्सकों के साथ पैदल चलते हुए गांव गांव पहुंचे। उन्होंने लोगों को स्वच्छता, संतुलित जीवन शैली और आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सिद्धांतों का महत्व समझाया। वो पंच शुद्धि प्रणालिका के 5 नियमों का संदेश लिए आगे बढ़ते रहे। अपने इस अभियान में उन्होंने प्रत्येक गांव में कम से कम 1 एकड़ भूमि पर औषधीय पौधों का उद्यान विकसित करने हेतु लोगों को प्रेरित किया। उनका मानना था कि स्वास्थ्य अस्पतालों से नहीं बनता, वो विकसित होता है स्वच्छ विचारों, संतुलित आहार और प्रकृति के सानिध्य में। डॉक्टर लक्ष्मीपति के इन प्रयासों से गांधी जी अत्यंत प्रभावित हुए। सन 1939 में गांधी जी ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से सेवाग्राम आश्रम आने का निमंत्रण दिया। वर्धा का सेवाग्राम आश्रम उस समय राष्ट्रीय चेतना का केंद्र था। सेवाग्राम पहुंचकर उन्होंने केवल एक चिकित्सक की भूमिका नहीं निभाई बल्कि उन्होंने स्वास्थ्य और ग्राम विकास के गांधीवादी स्वप्न को मूर्त रूप देने में सहयोग दिया। गांधी जी ने उन्हें आश्रम में एक विशाल उद्यान विकसित करने का दायित्व सौंपा। इस उद्यान का उद्देश्य केवल औषधियां उगाना नहीं था बल्कि ये सिद्ध करना था कि भारत के गांव अपने स्वास्थ्य की रक्षा स्वयं कर सकते हैं। डॉक्टर लक्ष्मीपति की धर्मपत्नी श्रीमती रुक्मिणी लक्ष्मीपति भी राष्ट्र सेवा को समर्पित रहीं। वो एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थीं और सन 1946 में मद्रास प्रांत की सरकार में वो सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्री बनी। इस तरह पति पत्नी ने साथ मिलकर भारतीय चिकित्सा के विकास की एक नई धारा प्रवाहित की। सन 1947 में भारत की आजादी के बाद भी वो राष्ट्र सेवा को समर्पित रहे। गांधी जी के विचारों से प्रेरित होकर वो समाज सुधार के कार्य में भी निरंतर संलग्न रहे। डॉक्टर लक्ष्मीपति अंतरजातीय विवाह के प्रबल पक्षधर थे। यही कारण है कि उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह अपनी जाति से बाहर एक गैर ब्राह्मण युवक से किया। इसके साथ ही वो पृथक आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना के भी पक्षधर थे। सन 1960 में भारत सरकार ने उन्हें योजना आयोग में भारतीय चिकित्सा पद्धतियों का राष्ट्रीय सलाहकार नियुक्त किया जहां उन्होंने रोग प्रतिरोधक चिकित्सा और जीवन शैली सुधार पर विशेष बल दिया। उन्होंने तेलुगु और अंग्रेजी भाषा में चिकित्सा पद्धतियों पर लगभग 100 पुस्तकें लिखीं जिनमें से 63 पुस्तकें विशुद्ध रूप से भारतीय चिकित्सा प्रणालियों और आयुर्वेद के अनुवादों पर आधारित थीं। उनकी आत्मकथा आयुर्वेद के पुनरुत्थान का प्रामाणिक दस्तावेज मानी जाती है। डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति को देश भर में भिषग रत्न, प्राणाचार्य तथा आयुर्वेद वाचस्पति जैसी कई उपाधियों से विभूषित किया गया था। आजीवन देश और समाज की सेवा करते हुए उन्होंने 6 अगस्त सन 1962 को अंतिम सांस ली। नमन ऐसी महान विभूति को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की। हमारा सवाल है कि कार्यक्रम किस व्यक्तित्व पर केंद्रित था। सवाल एक बार फिर सुन लें, कार्यक्रम किस व्यक्तित्व पर केंद्रित था। आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

अभूदान की तरह साल की अखंड पदयात्रा में विनोबा ने सर्दी, गर्मी और बारिश की सतत मार सहन की है। कुदरत की क्या करामात थी कि जहां सबसे अधिक गर्मी, वही गर्मी के दिनों में उनकी पदयात्रा चलती थी। जहां सबसे अधिक ठंड, वही ठंड के दिनों में घूमने का कार्यक्रम बनता था। यही हाल बारिश का। बारिश के ही दिनों में उनकी असम यात्रा और केरल यात्रा चली। लोग कहते, बाबा अब तो बैठिए, कब तक घूमते रहेंगे।

0: इतना कष्ट इस जर्जर शरीर को क्यों दे रहे हैं? थोड़ा उसकी तरफ भी तो देखिए।
1: तुम लोग कुछ नहीं जानते, इस यात्रा में इस देह को थोड़ी सी तकलीफ हुई होगी, परंतु बापू सतत मेरे आगे पीछे रहते हैं और मुझे संभालते हैं, इसीलिए तो मुझे ना कोई तकलीफ है ना कोई चिंता।
0: भूदान पद यात्रा में एक डच सज्जन विनोबा जी से मिलने आए। पहली ही मुलाकात में उन्होंने कहा, विनोबा जी, आपके भारत में मैं आया था गांधी जी को देखने। मैं दिल्ली गया, बंबई गया और भी कई जगह भटका, परंतु गांधी कहीं नहीं दिखाई दिए। इज ही रियली डेड? क्या वे सचमुच मर गए?
1: नो सर, ही स्टिल लिव्स। सर्वोदय के काम में लगे हुए 4-5 हजार सेवक जो गांव-गांव भटककर तपस्या कर रहे हैं, उनके दिल में गांधी जिंदा बैठा है, उन्हें गांधी जी ही घुमा रहे हैं और मुझे भी।
0: ऐसे ही एक दफा किसी ढलती हुई शाम को बाबा अपने 4-5 साथियों के बीच बैठे हुए थे। लालटेन का हल्का प्रकाश बाबा के मुंह पर पड़ रहा था। बापू के बारे में बातें चल रही थी। बाबा भूतकाल में खोते जा रहे थे, एक के बाद एक प्रसंग कहते जा रहे थे। आखिर उन्होंने आंखें बंद कर ली और धीरे से गदगद आवाज सुनाई दी।
1: वे हुक्म दें और मैं उनके हुक्म को उठा लूं, यही आज तक का मेरा जीवन रहा है।
0: पवनार का पवित्र परमधाम आश्रम, सुबह का शांत शीतल समय। ब्रह्म विद्या मंदिर के सभी सदस्य अपने अपने दैनिक कार्यक्रम में व्यस्त थे। नहा धोकर जब मीराबेन बाबा की छोटी सी कुटिया में जाकर देखती है तो कुछ नई प्रवृत्ति में बाबा अकेले व्यस्त थे। बिछावन अस्त व्यस्त पड़ा था और नीचे बैठक जमाने का प्रयास चल रहा था। पूछा, क्या करना है?
1: नीचे सिर्फ दरी और तकिया ही रखनी है, बाकी सब निकाल दो।
0: मीराबेन ने कहा, बाबा पहले पाट पर की गद्दी निकाल दी, फिर पाट ही निकाल दिया, अब नीचे सिर्फ दरी रखने के लिए कह रहे हैं, क्या बात है?
1: देखो, एक तो हमारी ये छोटी सी कुटिया, उसमें पाट हो तो फिर आने वाले को बैठने में मुश्किल होती है। सब नीचे बैठे और मैं ऊपर बैठूं, ये भी ठीक नहीं। इस दृष्टि से मैंने पाट निकलवा दिया और नीचे बिछाने का शुरू किया, परंतु नीचे की बैठक में मेरी इस मोहिनी पर सबका पांव पड़ता है, यह ठीक नहीं। इसलिए आज से तय किया है कि दिन में दरी पर नीचे ही बैठना और लेटना, रात को पाट पर सोऊंगा और मोहिनी मेरे नीचे नहीं रहेगी परंतु मेरे सिरहाने रहेगी।
0: और विनोबा ने बिस्तर में से एक ब्राउन रंग का कंबल हाथ में लेकर मीराबेन को बुलाया। कोने में बापू का नाम लिखा हुआ था। उनका पारायण बाबा की मुंह से अनेक बार सुनने को मिलता था, आज फिर से सुनने को मिला।
1: तुम जानती हो इस मोहिनी की कहानी? सन 1950 में मेरा दिल्ली जाना हुआ, तब बापू का यह कंबल मुझे बख्शीश में दिया गया, तब से वह मेरे पास ही है। बापू की यह स्मृति है इसलिए उसका नाम मैंने मोहिनी रखा है। रोज नीचे बिछाकर इतने साल सोया हूं, मेरे पास सुरक्षित रहा है। गांधी स्मारक वाले जानेंगे तो मैं मानता हूं कि मुझसे मांगेंगे नहीं, क्योंकि मैं उसे संभालता हूं।
0: वैराग्य के प्रखर वैनाश्वर में जिनके मोह ममत्व और आसक्ति का कण कण सुलग कर भस्म हो चुका है, निरासक्त सन्यासी का उत्तम नमूना जिसने अपने जीवन के द्वारा दुनिया के समक्ष खड़ा किया है, उस बैरागी को मोहिनी की मोहिनी से मोहित देखा तो मेरा सिर उनके इस अलौकिक प्रेम के आगे झुक गया। मोहन उनके शरीर के रोम रोम में व्याप्त हो गया है, इसकी प्रतीति हुई। मोहन की मीठी याद दिलाने वाली उस मोहिनी सेज पर सोने के लिए रोज रात को जय जगत करके ये शुभ्र वस्त्रधारी मूर्ति जब मच्छरदानी में अदृश्य होती है तब बहुत बार लगता है कि बाबा बापू में समा गए। बापू के शिक्षण का निचोड़ विनोबा ने इस प्रकार रखा है।
1: सत्यम जीवन का लक्ष्य, संयम जीवन की पद्धति, सेवा जीवन का कार्य, यह सब आचरण में उतरे, यही भगवान से निरंतर प्रार्थना है।

0: भगवान कृष्ण 12 साल की शिक्षा पूरी करके गुरुकुल से घर जाने वाले हैं। विदा लेते समय गुरु संदीपन के पास आशीर्वाद प्राप्त करते हैं कि जब तक जीऊं मातृ हस्तेन भोजनम मिले। विनोबा जी भी कहते हैं कि
1: जिन श्रीमंत बच्चों को जन्म लेने पर माँ के बदले आया का दूध मिलता है वह गर्भ श्रीमंत नहीं, वह गर्भ दरिद्र है। माँ का दूध ना मिले, माँ के हाथ का भोजन ना मिले, उसके जैसा दूसरा दुर्दैव क्या है। जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया है उन सबको मैंने अपने हाथों से भोजन पकाकर खिलाया है। जेल में भी जेल को आश्रम बनाते वक्त मैंने रसोई का काम उठा लिया था। मेरे हाथ की रसोई यानी बिना मिर्च मसाले की। पहले तो राजनीतिक कैदियों में से 10-15 लोग ही बिना मिर्च मसाले की रसोई खाते थे क्योंकि सबको तीखा पसंद था। परंतु जब मैंने रसोई बनाना शुरू किया तो सब राजनीतिक कैदी सादी रसोई ही ज़्यादा पसंद करने लगे। धीरे धीरे दूसरे कैदी भी उसमें शामिल होने लगे। फिर तो संख्या इतनी बढ़ गई कि जेलर को प्रार्थना करनी पड़ी कि कृपया आप दूसरे कैदियों के भोजन की जिम्मेदारी मत उठाइए।
0: रसोई को विनोबा फाइन आर्ट कहते हैं। वे हमेशा कहते हैं कि रसोई सुखादु बननी चाहिए और खाना चाहिए अस्वाद की भावना से। रसोई का स्वाद सिर्फ मिर्च मसाले से नहीं आता है, उनमें जब भाव उड़ेला जाता है तब मनपसंद भोजन बनता है। माँ के हाथ से जब रसोई बनती है तब रसोई की प्रत्येक प्रक्रिया में माँ के हृदय का भाव उड़ेला जाता है। उसका वो कर्म उपासना रूप होता है। जेल में सब राजनीतिक कैदी अपने पढ़ने के लिए अपनी रुचि की किताबें मंगवाते रहते थे। जेल का एक सरकारी अफसर उन पुस्तकों को देखकर आपत्तिजनक पुस्तकों पर रोक लगाता था और देने जैसी पुस्तकों की इजाजत देता था। दूसरे सब कैदियों की रोज बर रोज कुछ न कुछ शिकायत सुनाई देती थी कि आज फलानी किताब को रोका गया क्योंकि सरकार की दृष्टि से वो खतरनाक थी। विनोबा की किताबों पर कभी कोई रोक नहीं लगती थी क्योंकि उनकी फेहरिस्त में गीता, उपनिषद, पुराण जैसे आध्यात्मिक ग्रंथ रहते थे। एक दिन किसी ने कहा, हम सहस्त्र किताबें मंगाएंगे तो उनमें से हमें एक दो मिलेंगी और विनोबा की सभी किताबें मंजूर होकर आएंगी। तब विनोबा ने कहा,
1: यह सरकार मूर्ख है, खतरनाक क्या है, उसकी उसे कोई पहचान ही नहीं है। अकल होती तो उपनिषद गीता को सरकार जरूर रोकती और दूसरी किताबें जिनसे वह भड़की हुई रहती है उन्हें आने देती। गीता का आधार नहीं होता तो अंग्रेज सरकार के लिए महाखतरनाक गांधी गांधी ना बनते, तिलक तिलक ना बनते, श्री अरविंद अरविंद ना बनते। जिन ग्रंथों में जीवन का अधिष्ठान है वे ही ग्रंथ जुल्मी सत्ता में बारूद लगा सकते हैं।
0: स्वराज आंदोलन के सैनिकों की सजा थी जेल यात्रा। 1943 में एक बार सिवनी जेल से कैदियों को दक्षिण में वेलूर जेल ले जाया गया। दूसरे कैदियों के साथ विनोबा भी सवेरे वेलूर जेल में पहुंचे। जेलर हाजिर था। सब कैदी राजनीतिक थे इसलिए हर एक को अपनी अपनी आवश्यकता बताने के लिए जेलर ने कहा। प्रत्येक ने अपनी अपनी आवश्यकताएं बताई। जब विनोबा की बारी आई तब उन्होंने कहा,
1: मुझे दो चीजों की जरूरत है। ये जरूरतें पहले पूरी होनी चाहिए। एक तो मेरे सिर के बाल बहुत बढ़ गए हैं इसलिए नाई चाहिए, और दूसरे मैं तमिल सीखना चाहता हूँ इसलिए मुझे कोई तमिल शिक्षक चाहिए।
0: विनोबा ने पहले ही दिन से तमिल भाषा सीखना आरंभ कर दिया। बेचारे तमिल शिक्षक को लगता था कि ये मनुष्य तमिल क्यों सीखता है, क्या मद्रास में व्यापार करना चाहता है। वे जेल में 4 महीने रहे परंतु दूसरे कैदियों की मदद से दक्षिण की चारों भाषाएं तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम उन्होंने सीख ली। वे मानते हैं कि जिस प्रांत का अन्न खाते हैं उस प्रांत की भाषा न सीखे तो वो प्रांत द्रोह माना जाएगा। दूसरा, राष्ट्र की भावनात्मक एकता सिद्ध करने के लिए प्रत्येक अदक्षिणी को दक्षिण की कोई न कोई भाषा सीखनी ही चाहिए। जेल के प्रांगण में एक जगह घास को कतर कर 1945 लिखा था। हर साल ये डिजाइन बदल दी जाती थी। पुरानी घास निकाल डालते थे, चालू वर्ष के अंक बना दिए जाते थे। उसका दृष्टांत देकर विनोबा अपने साथियों को समझाते थे।
1: घास के प्रत्येक तिनके का अपना अपना स्वतंत्र प्रयोजन है, परंतु उन सब तिनकों का मिलाजुला एक सामूहिक प्रयोजन भी है, और वह है 1945 बनाना। यह बात ये तिनके नहीं जानते, वे तो उगते हैं और मिटते हैं, परंतु सब मिलकर एक प्रयोजन सिद्ध होता है। हम सब भी तिनके जैसे ही हैं, हम अपना प्रयोजन देखते हैं, परंतु इस सृष्टि में अपना क्या प्रयोजन है वह हम नहीं जानते, परंतु कोई ऐसा प्रयोजन जरूर है जिसके लिए सृष्टिकर्ता ने हमें पैदा किया।
0: वेलूर जेल में विनोबा और उनके साथी जब पहुंचे, उसके पहले कोंडी वेंकट्टा नाम के भाई वहां पहुंच गए थे और उन्होंने कैदियों में प्रार्थना शुरू करवा दी थी। प्रार्थना में गीता के 11वें अध्याय से कुछ श्लोकों का पाठ कराया जाता था और फिर रामधुन आदि बापू की प्रार्थना करवाते थे। क्रम में कुछ फर्क था। जेल में बापू के कुछ अनुयायी गए, उनको ऐसी प्रार्थना पसंद नहीं आती। वे विनोबा से कहते रहते कि आपको जोर देकर कहना चाहिए कि बापू ने जो क्रम रखा है वही क्रम रखना चाहिए, क्रम भंग होना अच्छा नहीं है, ये बात आपको उन्हें समझानी चाहिए।
1: भाई, मुझसे ये काम नहीं बनेगा। भारत में हिंदुओं में एक ही प्रार्थना चले, यह असंभव है। जिसके हृदय को जो स्पर्श करे वही प्रार्थना हो सकती है। हिंदू धर्म की यही विशेषता है कि उसमें हजारों संप्रदाय रह सकते हैं। तिलक ने हिंदू की व्याख्या की, उपास्यानाम अनियमः साधनानाम अनेकता। जिस धर्म में साधना की अनेकता हो, मतलब किसी एक ही निश्चित साधना का आग्रह ना रखा जाए, वही तो हिंदू धर्म है।
0: गोपाल राव काले विनोबा के बचपन के सहपाठी रहे हैं। जेल में रहते समय एक बार उनकी पत्नी विनोबा से मिलने आई। विनोबा की तबीयत के समाचार पूछकर उन्होंने विनोबा से पूछा, क्यों, जेल में कैसा लग रहा है? विनोबा ने लाक्षणिकता में जवाब दिया,
1: आपने सर्कस देखा है ना? सर्कस में मनुष्य पशु पर जुल्म ढाते हैं, जेल में इससे उल्टा होता है। यहां पशु मनुष्य पर जुल्म ढाता है। जेल जीवन का विधायक दर्शन देखिए। सच्चा आश्रमी जीवन तो जेल में भी अनुभव किया जा सकता है। गिनती के कपड़े, पानी का मग और कांजी की कटोरी, इतने से बर्तन, इससे अधिक असंग्रह के व्रत का पालन कहां होगा? नियम से नहाना, खाना, काम करना और घंटी बजते ही सो जाना और उठना, क्रमबद्ध जीवन, बीमार पड़ने की छुट्टी नहीं, भोजन में रोज ही अस्वाद व्रत, इससे अधिक संयम व्रत हम अपने आश्रम में भी कहां पालते हैं? अपने आश्रमों में जेल की अच्छी चीजें अपनाकर सुधार करना होगा।
0: सिवनी जेल में राजनीतिक कैदी अपने रिश्तेदारों को पत्र लिख सकते थे, परंतु विनोबा को यह भेद मंजूर नहीं था, इसीलिए वे किसी को भी पत्र नहीं लिखते थे। 3 साल में उन्होंने किसी को पत्र नहीं लिखा था। एक दिन न जाने जेलर का क्या हुआ कि वो विनोबा के पास आकर बैठ गया और पूछने लगा,
2: आपके जीवन में दुख जैसी कोई चीज नहीं है?
1: हाँ है, परंतु वह दुख कौन सा है यह आप ही ढूंढिए। मैं आपको 7 दिन का समय देता हूं।

0: विनोबा जी, पिछले एक सप्ताह में मुझे कुछ मिल नहीं रहा। कृपया आप ही बताइए, आपको कौन सा दुख है?
1: इस जेल में सूर्योदय और सूर्यास्त का दर्शन नहीं होता, यह मेरा सबसे बड़ा दुख है।

0: लोग पूछते कि विनोबा जी, आपको 1200 कैलोरी भोजन कैसे पर्याप्त मालूम होता है? तो हंसते हंसते विनोबा जी जवाब देते,
1: अरे भाई, मेरी खुराक कितनी है यह आप कैसे जानेंगे? इन 1000 कैलोरी के अलावा मैं गीता के 18 अध्याय खाता हूँ और उससे भी अधिक चारों ओर फैला हुआ विशाल आकाश खाता हूँ। अब आपको कुछ कहना है?

0: सर्दी के दिनों के अलावा यात्रा में विनोबा को यदि कभी चार दीवारी के भीतर सोना पड़ता तब उन्हें बहुत खटकता। वे कहते हैं,
1: व्यापक और निर्बंध चिंतन करना हो तो वह गुफा में नहीं खुले आसमान के नीचे ही हो सकता है।
0: स्वराज आंदोलन के कुछ राजनीतिक कैदियों को जेल में बी क्लास मिलता था। इन कैदियों को रसोई बनाने के लिए एक हाथ कैदी भी मिलता था और काम भी कम करना पड़ता था, परंतु कुछ साथियों को सी क्लास भी मिलता था। जेल में सबको आटा पीसना पड़ता था, बूढ़ों और बीमारों को भी छूट नहीं थी। इसीलिए विनोबा ने जेलर से कहा,
1: आपको जितना आटा चाहिए उतना अनाज दे दीजिए, हम पीस कर आपको दे देंगे।
0: और फिर बूढ़ों और बीमारों के हिस्से को आटा वे खुद पीसने को तैयार हो गए। एक दिन विनोबा के कानों बात आई, दूसरों से अधिक आटा पिसाने में विनोबा का क्या बिगड़ता है, उन्हें खुद को थोड़े ही पसीना पड़ता है। इस बात की सच्चाई पकड़कर विनोबा ने रोज 21 पौंड अनाज पीसना तय किया। ऐसा ही एक प्रसंग धुलिया जेल का है। उस जेल में राजनीतिक कैदियों में दो विभाग थे, तीखी वाले और फीकी वाले। जो मिर्च नहीं खाते थे उनके लिए फीकी दाल भाजी बनाई जाती थी। एक दिन जेलर का रुख बदला, सभी को मिर्च वाली दाल भाजी मिले ऐसा हुक्म उसने निकाल दिया।
1: मैंने कई सालों से मिर्च का स्पर्श नहीं किया था, उस दिन मिर्च वाली दाल भाजी खानी पड़ी। मैं भोजन कर रहा था, आंखों से पानी बह रहा था, नाक से भी। उसी समय जेलर साहब पधारे, मुझे देखते हुए बोले, विनोबा ये क्या हो रहा है? मैंने जवाब में कहा, आपकी भगवती का प्रसाद खा रहा हूँ।
2: मैंने आपकी दाल में मिर्च डालने को तो नहीं कहा था।
1: जो सबको वही मुझे। और दूसरे दिन से फीकी तीखी की अनुमति मिल गई।
0: ब्रह्म विद्या मंदिर के प्रवेश द्वार पर ही छोटी सी कोठरी, उस कोठरी में विनोबा दिन में कई बार घूमते रहते थे। कान की बीमारी के कारण भी चक्कर आ जाते थे, इसीलिए बाहर घूमना बंद करना पड़ा था। परंतु जन्म से ही घूमने की आदत वाला जीव पालथी लगाकर कैसे बैठा रहेगा, अतः एक कोने से दूसरे कोने घूमते रहते थे। एक दिन इसी तरह चक्कर लगाते लगाते कहने लगे,
1: एक बार जेल में मुझे इससे भी छोटी कोठरी मिली थी। उस वक्त राजनीतिक कैदियों को कोई शारीरिक काम भी नहीं दिया जाता था, किताब तक पढ़ने की मनाही थी, पेन पेंसिल कागज कुछ भी साथ नहीं रखने देते थे, दिन भर बेकार रहना, बाहर जाने की भी छूट नहीं, बिल्कुल पागल बनाने का ही कार्यक्रम था। परंतु मैंने तो अपना दिन भर का कार्यक्रम बना लिया था। कुल 10 घंटे में सोता था, 2 घंटे ध्यान, 4 घंटे खाना पीना, नहाना धोना इत्यादि काम, और 8 घंटे घूमना उसी कोठरी में हाइपोटेनियसली एक कोने से दूसरे कोने तक इसी तरह घूमता था। घंटे का मैं 1.5 मील गिनता था। उस हिसाब से जेल की उस छोटी सी कोठरी में भी मैं रोज 12 मील घूम लेता था।
0: जेल की उस अंधेरी कोठरी में खुला आसमान तो कहां से मिलता, और ये प्राणी था खुले आकाश का प्राणी। परंतु जब जो परिस्थिति मिली उसे सर्वोत्तम रूप में बदल देने की कला विनोबा को आती है। स्थूलाकाश न सही, चिदाकाश की असीमता का आनंद वे लूटते रहे। विनोबा आगे कहने लगे,
1: एक बार रात को 1 बजे रोज की भांति में चक्कर काट रहा था और मेरा चिंतन चल रहा था। इतने में वार्डर आया, उसने मुझे चक्कर काटते देखकर दरवाजा खटखटाया। मैं तो चिंतन में डूबा हुआ था, जवाब कौन देता। वह बेचारा घबराया, नजदीक आकर हिलाकर मुझे पूछने लगा, क्या हुआ है? फिर मैंने चिंतन का अर्थ और चिंतन के परिणाम आदि उसे समझाए। वह खुश हो गया और दूसरे ही दिन प्रसाद रूप से खुले में घूम सकूं ऐसी जगह दी और किताबें पढ़ने की भी इजाजत दी। परंतु उसने कहा कि ये तो ऐसी एकांत जगह में भी आनंदित रहता है, इसे कोई दुख नहीं है, इसको सजा नहीं होती, इसलिए इसे दूसरी जगह भेजो।
0: १९३२ में सरकार ने कांग्रेस को गैर कानूनी करार दिया। उस वक्त विनोबा खानदेश में घूम रहे थे। जलगांव में एक सज्जन ने उनके प्रवचन का प्रबंध किया था। इतने में खबर आई कि कांग्रेस गैर कानूनी करार दे दी गई है। उक्त सज्जन डर गए। विनोबा ऐसे डर से बहुत व्यथित हुए। खादी तो वीर की, अहिंसक की पोशाक है। निश्चित समय पर, नियत स्थान पर उन्होंने बहुत कड़े शब्दों में अपनी व्यथा प्रकट की। आज मैंने अपनी माता का प्रेत देखा, निर्जीव खादी का मुर्दा देखा। भाषण के बाद तुरंत वे पकड़े गए और धूलिया जेल ले जाए गए।

0: जेल में मुझे ऊपर का वर्ग मिला था, परंतु अपने साथियों से अलग होकर आराम से रहना मुझे पसंद नहीं था और मैं स्वयं ही निचले वर्ग में आ गया। धुलिया की इस जेल में जमनालाल बजाज, ऋषभदास रांका, साने गुरुजी जैसे सज्जन अनायास एकत्र हो गए थे। सहज ही सबने मुझसे आग्रह किया कि मैं रोज गीता पर कुछ बोलूं। साथियों के प्रेम के वश होकर मैंने अपने अंतर की गहराई से गीता पर प्रवचन किए। दरअसल वह मैं नहीं बोलता था, कोई बुलवाता गया और मैं बोलता गया।
1: प्रवचन करते समय बाबा उसमें तन्मय हो जाते थे। यूं तो गीता के सभी अध्याय पवित्र हैं, परंतु कुछ अध्याय अधिक पवित्र लगते हैं। 5वें, 9वें, 12वें, 15वें अध्याय के प्रवचन का आरंभ करते समय बाबा सिसक सिसक कर रो पड़े। नवे अध्याय के प्रवचन के लिए जब वे खड़े हुए तो सतत अश्रुधारा बहती रही। 5 मिनट तक वे बोल ही नहीं सके।

0: वाई की प्राज्ञ पाठशाला के तर्क तीर्थ लक्ष्मण शास्त्री उस समय धुलिया जेल में थे। एक दिन उन्होंने कहा, कभी कभी बाबा स्वयं स्फूर्त होकर बोलते हैं, ऐसा लगता है सद्भाग्य से गीता के ये प्रवचन अमर हो गए, क्योंकि सुनने वालों में साने गुरुजी जैसे गणेश जी मौजूद थे, जिन्होंने करीब करीब अक्षरशा ये प्रवचन लिख लिए। गीता प्रवचन की जन कहानी सुनाते हुए विनोबा जी बहुत बार कहते हैं,
1: गीता प्रवचन धुलिया जेल में हुए। वह जमाना था सन 1932 के तीव्र आंदोलन का। जेल जीवन में रोज नई नई घटनाएं घटती रहती थीं। सारा जीवन अनिश्चित सा था। ऐसी स्थिति में प्रवचन सांगोपांग पूरे होंगे, सो व्यवस्थित रिपोर्ट के लिए सिद्धहस्त निष्ठावान कोई साहित्यिक मिल जाएगा, भूदान यज्ञ का स्पीयर हेड बनने का इस ग्रंथ को सौभाग्य मिलेगा, हिंदुस्तान की सब भाषाओं में इसका उत्तम अनुवाद करने वाले अनुवादक प्राप्त हो जाएंगे, कौन जानता था, यह सब ईश्वर की योजना ही हो सकती है। प्रवचन करने वाला व्यक्ति तो निमित्त मात्र था, कोई दूसरी प्रेरक शक्ति थी जो बोल रही थी, ऐसा वक्ता श्रोता सभी को अनुभव में आ रहा था।
0: गीता प्रवचन ग्रंथ इतना लोकप्रिय हुआ है कि भारत की सभी भाषाओं के अलावा 2-3 विदेशी भाषाओं में भी ये अनुवादित हुआ है। बिल्कुल साधी साधी सरल भाषा, दृष्टांतों से भरपूर, लगता ही नहीं कि हम कोई तत्व ग्रंथ पढ़ रहे हैं। गीता को जीवन में कैसे उतारना, इसका पथ प्रदर्शन उन प्रवचनों में होता है। निर्मोही बाबा भी अपनी इस किताब पर मुग्ध है और कहते हैं कि आप भारत के घर घर में ये किताब पहुंचा दीजिए, मेरा भूदान का काम हो जाएगा।

0: पापा और मैं जेल में साथ हो गए थे। भारतन जी को हिंदी नहीं आती थी, उनकी मातृभाषा तमिल थी, परंतु तमिल भी वे भूल गए थे। उनका सारा व्यवहार अंग्रेजी में ही चलता था। एक बार उन्होंने मुझसे पूछा, मुझे आप हिंदी सिखाएंगे? और मेरे हाँ कहने पर शिक्षण शुरू हुआ। हिंदी सिखाने के लिए मैंने रामचरितमानस पसंद किया। पहले ही वर्ग में मैंने उनसे कहा कि बाइबल और शेक्सपियर इन दोनों का जोड़ है तुलसी रामायण। यह सुनते ही भारतन जी खुश हो गए, कहने लगे,
1: ये कई वाक्य में अपने सारा सार बता दिया। तुलसी रामायण में ऐसा कौन सा जादू है जो कि सबको इतना मंत्रमुग्ध करता है? यह आज ही मेरे समझ में आया।
0: सच कहा, ईसाइयों का धर्म ग्रंथ है बाइबल। उसकी भाषा मीठी और सरल है। शेक्सपियर भी महान कवि और नाटककार हो गया है। अंग्रेजी भाषा के साहित्य में उसका अद्वितीय स्थान है। साहित्य की दृष्टि से उनकी योग्यता महान और अध्यात्म की दृष्टि से बाइबल की योग्यता महान। इन दोनों गुणों का सुभग समन्वय तुलसी रामायण में हुआ है।

0: अपनी यात्रा के दौरान 18 अप्रैल 1951 को पोचमपल्ली गांव के हरिजन विनोबा से मिलने आए। अगर हमें जमीन मिली तो हम मेहनत करेंगे और मेहनत का खाएंगे। उन्हें 80 एकड़ जमीन चाहिए थी। विनोबा बोले, मैं तुम्हें जमीन दिलवाऊंगा, परंतु शर्त यह है कि तुम सबको मिलजुल कर काम करना होगा। हर एक को अलग से जमीन नहीं मिलेगी। वे सब मान गए। बाबा ने कहा, तो वैसा लिख कर दो, मैं तुम्हारा निवेदन सरकार के सामने रखता हूं। किंतु वहां उसी सभा में एक सज्जन श्री रामचंद्र रेड्डी 100 एकड़ जमीन हरिजनों को देने को तैयार हो गए। हम 100 एकड़ जमीन आप लोगों को दूंगा, ऐसा वचन बाबा के सामने दिया। उस दिन उन्हें पहला भूदान मिला। रात को सोने गए पर सो नहीं सके। अंदर से आवाज आती रही,
1: आज ये क्या हुआ? जमीन के लिए खून बहाने वाले लोगों से सिर्फ प्रेम से मांगने पर 100 एकड़ भूदान मिला। मांगने पर लोग जमीन दे सकते हैं क्या? आज ही क्या चमत्कार हुआ? इसको ईश्वर का इशारा समझो। अगर तुम्हें अहिंसा में विश्वास है तो ईश्वर के संकेत को उठा लो और जमीन की भूख को मिटाओ। जो ईश्वर तुम्हें मांगने की प्रेरणा देता है वही भूमिवान को देने की प्रेरणा देगा। तुम्हारे सामने ये चैलेंज है, बस इस काम को यदि नहीं उठा लेते तो अहिंसा का दावा छोड़ दो।
0: रात भर आवाज प्रति आवाज सुनाई देती रही और फिर अगले दिन उन्होंने पिछले दिन का अनुसरण किया। फिर तो वे मांगते गए और लोग देते गए। भिक्षु की झोली मानव हृदय में बहती करुणा ने भर दी। बिहार का दरभंगा जिला 1953-54 की भूदान यात्रा। बारिश के दिन थे, रास्ते में खेतों से गुजरना पड़ता था। एक बार बीच में ऐसा एक खेत आया जिसमें 8-10 फीट गहरा पानी था। छोटी सी नाव लाई गई, उसमें विनोबा और उनके साथियों को बैठाया। पानी गहरा था, ऊपर से तूफान और बारिश, नाव डोल रही थी। एक दो मनुष्य पानी बाहर फेंकने का काम कर रहे थे। विनोबा जी तो श्लोक पठन में तन्मय थे। जब किनारे पर पहुंचे तब रामदेव बाबू बोले, मुझे बड़ा डर था, मैं तो तैरना जानता था, परंतु आप थे मेरे साथ, दुनिया की इतनी बड़ी अमानत, इसलिए मुझे बहुत डर लग रहा था।
1: अरे अरे, मैं तो जरा भी नहीं डरता। हम चिंता करें ना करें, आखिर होगा वही जो होने वाला है। गांधी जी के भतीजे छगनलाल गांधी ने एक आंखों देखी घटना मुझे सुनाई थी। एक बार समुद्र यात्रा में वे स्टीमर में डेक पर बैठे थे। उनके सामने ही एक स्त्री अपनी गोद में बच्चों को लिए बैठी थी। इतने में पानी की एक लहर आई और उस स्त्री की गोद में से बच्चे को उठाकर बहा ले चली। माँ तो किंग कर्तव्य मूढ़ हो गई। छगन भाई और उनकी पत्नी भी अवाक रह गए। कोई क्या कर सकता था? इतने में ही दूसरी लहर आई और बच्चे को माँ की गोद में छोड़ गई। उन क्षणों में माँ ने क्या किया? उसको ईश्वर में श्रद्धा थी।

0: शहर में दाखिल होते ही कुछ अग्रगण्य नागरिकों ने आकर विनोबा को खबर दी।
1: बिहार सरकार के गोवध बंदी के कानून में गाय के साथ बैल भी शामिल हो, इस वास्ते यहाँ के कार्यकर्ता वीर जी आमरण पर उतरे है। आज उपवास का 60वां दिन है, उनकी स्थिति अत्यंत चिंताजनक है, आप उन्हें समझा कर उपवास छुड़वाइए।
0: विनोबा जी तुरंत सम्मत हुए। वीर जी के घर जाते समय महादेवी ताई से कहा,
2: थोड़े संतरे, चाकू और एक गिलास भी साथ में ले चलना।
3: अच्छा हुआ आपके दर्शन हुए, मैं अब सुख से मर सकूंगा।
2: मरने की कोई जरूरत नहीं है, आपका आमरणांत उपवास सत्याग्रह नहीं है, दुराग्रह है, ऐसा मेरा स्पष्ट अभिप्राय है। यह मैं आपको समझाने के लिए ही यहां आया हूं। देश अब स्वतंत्र हुआ है, लोकतंत्र की पद्धति से देश का कारोबार चलता है, जनता के पास जाकर अपने मत का प्रचार करके जनमत को अपने अनुकूल बनाने का स्वातंत्र है, उसका उपयोग करने के बजाय आपने यह उपवास क्यों शुरू किया है? लोगों को अपना विचार समझाइए, फिर खुद जनता सरकार से उस तरह का कानून बनवा लेगी। उपवास तो सत्याग्रह के तंत्र का आखिरी उपाय है, सब शस्त्र आजमा लेने पर ही आखिर में उसे अपनाना होता है। सत्याग्रह यानी भय धमकी नहीं है, सत्याग्रह यानी प्रेम प्रकर्ष। इसलिए आज की परिस्थिति में आपका उपवास सब दृष्टि से अनुचित है, इसे छोड़ दीजिए।
0: कितने ही क्षण मौत में बीत गए, फिर वीर जी ने अपनी बाजू रखी। विनोबा ने फिर से गहराई में जाकर सत्याग्रह का विचार वीर जी को समझाने का प्रयास किया। अंत में वीर जी ने कहा,
3: यदि आपकी आज्ञा होगी तो मैं उपवास छोड़ दूंगा।
2: ऐसा है तो उपवास बिल्कुल मत छोड़िए। मैं किसी को आज्ञा नहीं देता हूँ, न किसी की आज्ञा मानता हूँ। मैं आपको एक विचार ही समझा रहा हूँ, वह विचार यदि आपको जच जाए तभी आप छोड़िए, यदि ना जचे तो उपवास ना छोड़ते हुए प्रेम पूर्वक मृत्यु के अधीन हो जाइए। आपका यह उपवास सरकार के सामने तानी हुई पिस्तौल है, यह शुद्ध सत्याग्रह नहीं है, ऐसा मेरा स्पष्ट अभिप्राय है।
3: आप आज्ञा दीजिए, मैं आपके जैसे महान संत के शब्द के खातिर उपवास छोड़ दूंगा। बाकी आपके विचार मुझे पसंद नहीं आए हैं, परंतु आप आज्ञा दे सकते हैं।
0: मृत्यु के साथ जूझते हुए अस्थि पंजर को देखकर वहां आए हुए प्रतिष्ठित सज्जन विनोबा से प्रार्थना करने लगे, दीजिए दीजिए, आज्ञा दीजिए और इनके प्राण बचाइए।
2: मैं आपकी इस देह को बचाने नहीं आया हूं, आप ही क्या, किसी की भी देह की मुझे तिलमात्र परवाह नहीं है। यह देह आज नहीं कल गिरने वाली ही है। आपको जो विचार ठीक लगे उसके खातिर मरना आपका कर्तव्य है। मैं तो आपको यही समझाता हूँ कि आपका यह उपवास सत्याग्रह नहीं है, यह विचार जचे तभी उपवास छोड़िए।
0: फिर एक बार स्तब्धता। मृत्यु की शैया पर सोए हुए मनुष्य से ये लापरवाह फकीर कहता था, मुझे आपकी देह की परवाह नहीं है, बुद्धि को विचार जचे तभी उपवास छोड़िए, मैं आज्ञा देने वाला नहीं हूं। वातावरण गंभीर होता गया।
2: मैं आज दिन भर आपके गांव में हूं, कल सुबह यहां से निकलूंगा। दिन भर आप विचार कीजिए, विचार करने पर यदि आपको मेरा कहना सही लगे तो मुझे खबर दीजिए, मैं खुशी से आऊंगा और अपने हाथ से संतरे का रस पिलाकर उपवास छुड़वाऊंगा। परंतु मेरा विचार यदि ना जचे तो मेरा आपको आखिरी प्रणाम, परमेश्वर को सतत याद करते रहिएगा।
0: इतना कहकर विनोबा उठे और अपने मुकाम पर जाने के लिए निकल पड़े। दिन भर

0: मुलाकाती लोग और सभा चर्चा आदि भरपूर कार्यक्रम रहा। रोज की तरह ही विनोबा ने सब कार्यक्रम पूरे किए। शाम को वीर जी के घर से संदेश आया। विनोबा फिर से वीर जी के यहाँ पहुंचे।
1: दिन भर मैं आपकी बात पर सोचता रहा। मुझे आपकी बात ठीक लगती है।
2: पूरा विचार करके ही निर्णय कीजिए, शरीर बचाने के लिए नहीं। आपके ये उपवास ठीक नहीं है ऐसा समझ में आए तभी उपवास छोड़ने का निर्णय कीजिए।
0: वीर जी को विचार ठीक ठाक समझा है, इसका पूरा भरोसा होने पर ही विनोबा ने अपने हाथ से संतरे के रस का गिलास वीर जी के हाथ में दिया। तमिलनाडु का वीद नायकन पालयम नाम का छोटा सा गांव, गांव का छुआछूत का प्रश्न विनोबा को अपने यात्रा पथ से मोड़कर भी इस गांव में लाने में समर्थ हुआ था। गांव में हरिजनों के लिए पक्के मकान बनाए गए थे, परंतु गांव के दूसरे लोगों को ये अधर्म लगता था कि हरिजन लोग ऐसे पक्के मकानों में आकर रहे। घर खाली पड़े थे। गांव की पुरानी परंपराओं की जंजीरों को तोड़ने की हिम्मत गांव के युवक वर्ग में भी नहीं थी। सूर्योदय की मंगल बेला में बाबा उस गांव में जा पहुंचे।

0: उनकी किरणें घर घर पहुंच जाएंगी, मुसलमान के घर में भी वे पहुंचेंगी, ब्राह्मण के घर में भी, अमीर के घर में भी और गरीब के घर में भी। इनके मन में कोई भेद नहीं है, जहां सभी का प्रवेश है वहीं प्रभु का वास है। सबको अपनाइए, सबको अपनाइए। हरिजन भाइयों को भी नहा धोकर स्वच्छ रहना चाहिए, किसी से डरना नहीं चाहिए।
1: हम स्वच्छ कपड़े पहनते हैं तो ये लोग डराते हैं, धमकाते हैं और मारते भी हैं।
0: क्यों भाई, आप लोग उन्हें डराते हैं?
2: ये लोग स्वच्छ रहेंगे तो हमें कुछ नहीं करना है।
1: आपके सामने तो ये लोग ऐसा नहीं करेंगे।
0: आप सब लोग सामने आइए और एक दूसरे से हाथ मिलाइए। यदि आप लोग सच्चे दिल से कहते हैं कि बाबा के जाने पर सब हिल मिल कर रहेंगे, तो आइए आइए और हाथ मिलाइए।
3: सब दो मिनट के लिए मौन और स्तब्ध। संत के स्पर्श के बिना रूढ़ी श्रृंखला टूटना नहीं चाहती थी। विनोबा उठे और एक हरिजन भाई का हाथ पकड़कर गांव के सवर्ण भाई के हाथ से मिलाया। रूढ़ी जंजीर पर प्रहार हो चुका था, वो श्रृंखला कमजोर हो गई थी। लोगों ने कहा, ये लोग साफ सुथरे रहेंगे, मांस नहीं खाएंगे तो हमें कोई उर्ज नहीं है।
0: आपके घर में बिल्ली आती है ना, वह क्या खाती है? चूहा खाती है, तो भी आप उसे अपने घर में आने देते हैं? ये बात ठीक है कि सफाई रहनी चाहिए, परंतु ऊपर ऊपर की सफाई का इतना महत्व तो नहीं है जितना महत्व तो अंदर की सफाई का है। ऊपर से साफ सुथरे कपड़े पहनने वाले लोग भी झूठ बोलते हैं, गलत काम करते हैं। हरिजन भाइयों, अब तुम लोग डरो मत, साफ रहना। अब तुम नए घरों में रहने के लिए आ जाओ।
3: भेद मिट गया, हरिजनों का वहां आकर रहना तय हुआ। इतने में बाबा के भोजन का समय हो गया। जय भाई ने दही की कटोरी उनके हाथ में रखी। दही का चम्मच मुंह में रखते हुए बाबा बोले,
0: देखिए भाइयों, मैंने अभी इस हरिजन को स्पर्श किया है और मैं खाने को बैठा हूं। अब मैं नरक में जाऊंगा और आप लोग स्वर्ग में जाएंगे। जहां कुछ लोग डोली में बैठते हैं और कुछ लोग उसे उठाते हैं, ऐसी असमानता वाली जगह स्वर्ग हो तो भी विनोबा को वह पसंद नहीं है।
3: उस गांव के एक भाई अपनी सारी 30 एकड़ जमीन दान करने आए थे, परंतु बाबा ने उनमें से थोड़ी सी रखी और बाकी की जमीन उन्हीं को लौटा दी। बड़े भाई का पुण्य कार्य छोटे भाई उस भाई की लड़की में भी जागा और दान पत्रों के साथ उस परिवार ने विनोबा के चरणों में तिरुक्कुरल, भागवत, रामायण और दिव्य प्रबंध के धर्म ग्रंथ भी रख दिए।

18वीं सदी का सुधार युग। उस युग के प्रमुख समाज सुधारक थे राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, देवेंद्रनाथ ठाकुर, रामकृष्ण परमहंस आदि। उन्होंने अपने अपने प्रयासों से समाज कल्याण का बीड़ा उठाया था। इन महापुरुषों के पदचिन्हों का अनुसरण कर स्वामी विवेकानंद ने समाज और देश ही नहीं विदेशों में भी अपनी पहचान बनाई। पश्चिमी देशों को भारत की एक नई पहचान मिली। भारतीय ज्ञान, दर्शन और आध्यात्मिकता से उनका परिचय हुआ और सारा विश्व इस तरुण सन्यासी के प्रति आकर्षित हो गया।

0: आपने 19वीं सदी के भारत और मुख्यतः बंगाल के बारे में भी जाना। हमने सुना वो कितना अशांत युग था, समाज दिशाहीन तथा अंधकारमय था। कुछ समाज सुधारकों ने समाज को कुछ हद तक सुधारा, दिशा दी, परंतु सदियों की रूढ़िवादिता, धर्मांधता तथा कदाचार पर संपूर्ण रूप से विजय पाना संभव न था।
1: उसी अशांत कालखंड में स्वामी विवेकानंद का आविर्भाव हुआ। अपने ज्ञान, कर्मयोग, भक्ति एवं वैदांतिक राष्ट्रवाद से उन्होंने समूचे भारत का ही नहीं बल्कि पूरे संसार का दिल जीत लिया। दिशाहीन भारत को एक सच्चा पथ प्रदर्शक मिला। जाति, प्रांत और भाषाई अंतर को भुलाकर भारतवासियों ने उन्हें अपने प्रेरणा पुरुष के रूप में स्वीकार कर लिया। उनकी बहुमुखी प्रतिभा से लोग मुग्ध हुए।
0: ऐसे दिव्य महापुरुषों की जीवन कथा बहुत ही रोचक है। अपने छोटे से जीवन काल में उन्होंने हजार वर्षों का काम कर दिखलाया था। इतने सारे गुणों से धनी स्वामी विवेकानंद को संस्कार अपने परिवार से मिले थे। उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि बहुत मजबूत थी, अतः विवेकानंद को जानने से पहले उनके परिवार के बारे में जानना बेहद जरूरी है। 19वीं सदी की शुरुआत में कलकत्ता नगरी के उत्तरी भाग में सिमुलिया या शिमला मोहल्ले में गौर मोहन मुखर्जी स्ट्रीट पर दत्त परिवार का विशाल भवन अपनी संपन्नता के लिए प्रसिद्ध था। आज भी उस भवन का जीर्ण द्वार अतीत वैभव का साक्षी बना खड़ा है। दत्त वंश का ऐश्वर्य और ख्याति, उनके 12 महीने के 13 उत्सव पर्व का आडंबर उस समय के कलकत्ता के धनी समाज में चर्चा का विषय रहा।
1: कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के नामी वकील राममोहन दत्त के समय में सिमुलिया के दत्तों ने नगर में काफी प्रभाव और प्रतिष्ठा प्राप्त की थी। राममोहन दत्त के पुत्र दुर्गाचरण ने उस समय की प्रथानुसार संस्कृत तथा फारसी भाषा में शिक्षा प्राप्त की और राजभाषा अंग्रेजी भी सीखी। उन्होंने भी वकालत प्रारंभ कर दी, परंतु पिता जैसी धनोपार्जन की प्रवृत्ति उनमें न थी। तत्कालीन धनी संतानों के समान नवीन नागरिक सभ्यता के भोग विलास भी उन्हें आकर्षित न कर सके।
0: ये धर्मानुरागी युवक अवसर और मौका पाते ही धर्म शास्त्रों की चर्चा तथा सत्संग किया करता था। उत्तर पश्चिम प्रदेशों से आए हुए हिंदी भाषी वेदांती साधुओं से प्रभावित होकर दुर्गाचरण ने 25 वर्ष की उम्र में ही सारा ऐश्वर्य और सम्मान त्याग कर सन्यास ले लिया।
1: सन्यासियों के नियमानुसार 12 वर्ष के बाद दुर्गाचरण एक बार अपने जन्मस्थान का दर्शन करने आए थे और अपने एकमात्र पुत्र विश्वनाथ को आशीर्वाद दे गए थे। उसके बाद उन्हें किसी ने नहीं देखा। उनके आगमन के एक वर्ष पहले ही उनकी पत्नी यानी विश्वनाथ की माता का निधन हो गया था। सन्यासी पुत्र विश्वनाथ ही सन्यासी विवेकानंद के पिता थे।
0: विश्वनाथ ने अपने दादा राममोहन का अनुसरण कर वकालत करना प्रारंभ किया। वे प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। वकालत में व्यस्त रहते हुए भी अध्ययन में उनका प्रबल अनुराग था। वे फारसी जानते थे, हाफिज की कविताएं पढ़ते थे, अंग्रेजी साहित्य और इतिहास आदि पढ़ने के कारण धार्मिक कट्टरता उनमें ना थी। कई ऊंचे खानदान के मुस्लिम उनके मुवक्किल थे तथा लखनऊ, इलाहाबाद, दिल्ली, लाहौर आदि स्थानों की यात्रा करने के कारण वे उस समय के अनेक खानदानी मुस्लिम परिवारों के संपर्क में आ चुके थे। अतः वे उनके रीति रिवाजों को सम्मान की दृष्टि से देखते थे और उनकी पाबंदी भी करते थे। बाइबल के अध्ययन के कारण वे ईसाई धर्म के भी प्रेमी थे, अर्थात धर्म, ईश्वर आदि के बारे में कोई भेदभाव नहीं रखते थे। वे काफी धनोपार्जन करते थे और खर्च भी वैसा ही करते थे। रिश्तेदारों दोस्तों का आदर सत्कार करना तथा ठाट बाट से रहना वे पसंद करते थे। उनके घर में अनेक आश्रित पलते थे और उस विशाल भवन में किसी चीज की कमी ना थी।
1: परंतु विश्वनाथ की पत्नी भुवनेश्वरी देवी एक पारंपरिक महिला थी। इस बुद्धिमती कुशल गृहिणी की देखरेख में उनके विराट परिवार के सभी कार्य बड़ी कुशलता से संपन्न होते थे। वे बंगला पढ़ना लिखना भली भांति जानती थी। रामायण, महाभारत, पुराण, भागवत आदि का नियमित पाठ करती और साथ ही अपने पति पुत्र के साथ चर्चा करके तत्कालीन विचारधारा से भी परिचित रहती थी। आस पड़ोस के लोग उन्हें श्रद्धा करते थे। वो मीठा बोलने वाली गंभीर धर्म परायणा महिला प्रतिदिन शिव पूजा करती थी।
0: भुवनेश्वरी देवी के मन में एक दुख था। दो कन्याओं की माता तो वे थीं, पर उनका कोई पुत्र ना था। पुत्र मुख देखने की लालसा ने उन्हें धीरे धीरे बहुत ही व्याकुल कर डाला। वे प्रतिदिन सुबह शाम शिव मंदिर में प्रार्थना करती और शिव को संतुष्ट करने के लिए कठोर व्रतों का पालन करती।

कैलाशपति भुजंगेश्वराय नमः। हे देवाधिदेव, मैं भक्ति पूर्वक तन मन से तुम्हारी सेवा में रत हूँ। सभी कठोर व्रतों का नियम पूर्वक पालन करती हूँ। तुमसे आज्ञा या आशीर्वाद लिए बिना मैं कोई भी काम नहीं करती प्रभु। फिर तुम्हारी कृपा कब होगी? कब आप प्रसन्न होंगे? कब मेरी गोद में एक पुत्र आएगा प्रभु? कब तुम्हारी दया होगी? बोलो बोलो ना, कब होगी दया? कब कब होगी तुम्हारी दया?

0: इतने व्रत उपवास पूजा अर्चना के बाद भी उनके मन को शांति न हुई। शिव को और भी अधिक तुष्ट करने के लिए उन्होंने काशी में रहने वाली एक रिश्तेदार महिला को पत्र लिखा।
1: आपको तो मालूम है कि मैं शिव की पूजा नियमित रूप से करती हूँ, उनके नाम का व्रत उपवास भी करती हूँ, पर उनकी कृपा मुझ पर आज तक नहीं हुई। मेरी पुत्र कामना अधूरी ही रह गई। आप तो भाग्यवती हैं, शिव की नगरी में ही निवास करती हैं। आपसे मेरा यही अनुरोध है कि आप हर दिन मेरी ओर से बाबा विश्वेश्वर के मंदिर में पुत्र कामना करते हुए पूजा एवं होम यज्ञ आदि की व्यवस्था कर दें। मुझे आशा है आप मुझे निराश नहीं करेंगी।
2: ये जानकर कि उनकी इच्छा के अनुसार पूजा पाठ हो रहा है, माता भुवनेश्वरी प्रफुल्लित और आश्वस्त हुई। वे शिव अर्चना में और भी ज्यादा डूब गईं। ग्रह देवता शिव मंदिर में ही उनका अधिकतर समय व्यतीत होने लगा।
0: एक दिन प्रातः काल शिव अर्चना के बाद वे ध्यान मग्न हो गईं। परिवार के लोगों ने और दास दासियों ने उन्हें कई बार आवाज दी, पर वे सब कुछ भूल कर बेसुध बैठी रहीं। सारा दिन बीत गया, सांझ हो आई। पति विश्वनाथ के अदालत से लौटने पर उन्हें ये समाचार मिला। वे पत्नी से बेहद प्यार करते थे। व्याकुल होकर पूजा कक्ष में आए और भुवनेश्वरी को आवाज दी।
3: भुवन, ओ भुवन, भुवन, क्या हो गया है तुम्हें? सुना है सुबह से यहां ऐसी ही बैठी हो, क्या बात है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? भुवन, तुम सुन रही हो ना? मेरी ओर देखो, जवाब दो भुवन, भुवन।
0: भुवनेश्वरी ने कोई जवाब नहीं दिया और धीरे धीरे वहीं पर थककर सो गईं। किसी की हिम्मत नहीं हुई उन्हें छूने या जगाने की। सूर्योदय के समय अचानक घर वालों की नींद खुली। उन्हें पूजा घर से घंटा बजने और मंत्रोच्चार की आवाज आई। सब दौड़ते हुए वहां जाकर एकत्रित हुए। भुवनेश्वरी होश में आ गई थी और जोर जोर से मंत्र पढ़कर शिव को प्रणाम कर रही थी।
1: हे शिव, हे शंकर, हे करुणामय, तुमने मुझे ये क्या दिखाया, क्या दिखाया? क्या ये निरा सपना था या सच का पूर्वाभास? कहो देव, कहो ना। अरे अरे, सुना तुमने? तुम लोगों ने सुना? मेरे इतने दिनों की तपस्या पूरी होने वाली है। हाँ हाँ, शिव ने मुझ पर दया की है। हे शिव, हे शंकर, हे शिव, हे प्रभु।
3: भुवन, भुवन, शांत हो जाओ, सब ठीक तो है ना? क्या देखा तुमने, कहो, इतनी खुश क्यों हो, कहो तो।
1: मैं क्या कहूँ, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। मैंने ये कैसा सपना देखा? हाँ,
3: क्या देखा तुमने, कहो भुवन।
1: ओह, मैंने देखा, मैंने देखा, तुषार धवल पर्वत श्रृंग से कैलाशपति शिव उतर कर आ रहे हैं। हाँ, और वो ठीक मेरे सामने आकर खड़े हो गए। वो मुस्कुरा रहे थे, कह रहे थे, तुम्हारी कठोर तपस्या का फल तुम्हें मिलेगा भुवनेश्वरी। और कहते कहते शिव एक छोटे से शिशु का रूप धारण कर मेरी गोद में आ गए। हाँ हाँ, वो मेरी गोद में आ गए और मेरी ओर देखकर मुस्कुराने लगा। हाँ, सच। ओह, हे शिव, हे शंकर, हे शिव, हे शिव,
2: हे शिव, हे शंकर कहती हुई वे बारंबार माथा टेकती रहीं। परिवार वाले हतप्रभ रह गए।
0: उस दिन 1863 ईस्वी की 12 जनवरी थी, पौष संक्रांति का पुण्य प्रभात। शीत से ठिठुरते हुए नर नारी स्नान के लिए भागीरथी की ओर जा रहे थे। इसी समय सूर्योदय से 6 मिनट पूर्व 6:33:33 पर भुवनेश्वरी देवी ने विश्व विजयी पुत्र को जन्म दिया।

0: आनंद उल्लास और हर्ष से दत्त भवन मुखरित हो उठा। मंगल शंख बजने लगे। बंगाल के हर घर में पौष पर्व का आनंदोत्सव मनाया जा रहा था, मानो नवजात शिशु को सादर अभ्यर्थना करने प्रत्येक गृह प्रांगण मुखरित हो उठा।
1: नामकरण का दिन। बालक की आकृति बहुत कुछ उसके सन्यासी पितामह की तरह देखकर परिवार के कुछ लोगों ने शिशु का नाम दुर्गादास रखने की इच्छा प्रकट की, परंतु माता ने अपने स्वप्न को स्मरण कर कहा,
2: जी इसका नाम शिव के नाम पर वीरेश्वर रखा जाए। ठीक है, वे ही तो शिशु का रूप धरकर मेरे घर आए हैं। ये मेरा शिव, मेरा शंभू, मेरा महेश और मेरा शंकर है, मेरा बच्चा।
0: सभी ने उनका कहना मान लिया। वे उसे वीरेश्वर से वीरे और अंततः बिले कहने लगे। अंत में अन्नप्राशन के समय बालक का नाम रखा गया नरेंद्रनाथ, और भविष्य में यह बालक नरेंद्रनाथ या नरेन नाम से ही परिचित हुआ।
1: बचपन में नरेंद्रनाथ बहुत ही नटखट थे। उनके उधम से घरवाले हमेशा परेशान रहते थे। वे माँ को बहुत तंग करते थे। एक दिन बालक नरेन आंगन में दौड़ दौड़ कर माँ को सता रहा था।
2: बिले, अरे ओ बिले, आना इधर आ, बात सुन मेरी बिले। ओहो आना, कपड़े बदल ले। ओहो
3: नहीं नहीं बदलूंगा कपड़े, लो पकड़ो मुझे।
2: अरे सुन ना।
3: नहीं पकड़ पाई ना, मैं अभी पेड़ पर चढ़ने जा रहा हूँ, नहीं आऊंगा तुम्हारे पास।
2: ठहर, पकड़ती हूँ तुझे। बस ये पकड़ लिया। बोल अब कहाँ जाएगा। हाँ ठहर ठहर, मैं मजा चखाती हूँ। नहीं सुनेगा ना मेरी बात। हाँ नहीं सुनेगा, चल चल आ इधर आ, ये इधर आ, इधर आ, ये ले, ये शिव, ओ शिव, शिव शंभू, शिव शंभू, शिव शंभू, ले। अब तेरा माथा कुछ ठंडा हुआ ना, चल चल अब अंदर चल, चल बेटा सर पोंछ दूं, फिर कपड़े बदल लेना। ओह शिव शंकर, शिव शंकर, शिव शंकर।
1: पिता विश्वनाथ बरामदे में खड़े होकर माँ बेटे का ये नाटक देख रहे थे। उन्होंने हंसते हुए कहा,
4: भुवन तुम क्यों हमेशा बिले के पीछे पड़ी रहती हो, अरे खेलने दो ना उसे। देखो ना, नाहक उसके सर पर ठंडा पानी डाल दिया, अगर उसे जुखाम हो गया तो जाओ जल्दी से पोंछो उसका सर।
2: हाँ हाँ, तुम्हें तो हमेशा मेरी ही गलती दिखाई देती है, बेटे की शरारत तुम्हें दिखती ही नहीं। अरे देखो तो, दौड़ा दौड़ा कर मेरा तो दम निकाल दिया, और उसे भिगोने में देखो ना, ये देखो मैं पूरी तरह भीग गई। अरे बिले चल ना, चल जल्दी चल चल।
4: पर तुमने दोबारा उसे नहलाया क्यों, और वो भी ठंडे पानी से।
2: क्या आप नहीं जानते कि आशुतोष शिव जलाभिषेक से ही संतुष्ट होते हैं, और मेरा बिले भी तो शिव का ही अंश है, इसलिए जब मैं इसे किसी भी तरह से शांत नहीं कर पाती तो ठंडा पानी डालकर शिव शिव की जाप करती हूँ, और ये भी शांत हो जाता है।
4: तुम माँ बेटे की महिमा अपरंपार है, मुझे समझ में नहीं आता। अरे बच्चा है अभी, शरारत तो करेगा ही।
2: ए देखो जी, वकालत करते हो उसी को संभालो, हम माँ बेटे के बीच ना आना, ठीक है। ए, ए, ए, अरे अरे अब फिर भाग गया। अरे देखो तो, ओहो फिर भाग गया बिले।
4: लो संभालो अब।
2: ओ माँ गो माँ, मैं तो इसकी शरारतों से तंग आ गई हूँ। ओ अरे अरे, ओ राधा शामू, अरे देख तो किधर भाग गया, वो भाग रहा है, वो जा पकड़। पकड़ लिया ना, ले आ इधर, इधर ले आ। मांगो मां, महादेव शिव ने स्वयं ना आकर जाने कहां से एक भूत को भेज दिया है, सबको परेशान कर रखा है। ओह अरे तू तो फिर से रोने लगा, देखा देखा जी अपने लाडले की करामत। हाँ हे देख देख बिले, अगर तू ज्यादा उधम मचाएगा ना तो महादेव तुझे कैलाश में नहीं आने देंगे। हाँ
3: सच कह रही हो ना माँ, शिव जी मुझे कैलाश नहीं आने देंगे तो मैं नंदी बैल की सवारी कैसे करूंगा।
2: अच्छा बच्चा बनो बेटा, तो शिव जी तुझे खुद वहां ले जाएंगे, खूब प्यार करेंगे, समझा। अच्छा अच्छा अब चल, तो चल भीगे कपड़े बदल ले। हाँ चल चल बेटा, चल चल आजा आजा आजा आजा, चल चल।
4: तुम दोनों माँ बेटे की बातें तुम दोनों ही जानो, और जाने तुम्हारे शिव जी। भाई मैं तो चला। नरेंद्रनाथ सबके प्रिय थे, मोहल्ले के धनी निर्धन सभी परिवारों के साथ उन्होंने संबंध स्थापित कर लिया था। यदि उनके परिचितों में से किसी लड़के के यहाँ किसी की मृत्यु हो जाती तो उसे सांत्वना देने वे ही पहले रहते थे। हर घर में आना जाना उनके परिवार जनों को पसंद ना था। एक दिन
5: ए ए ए बिले, क्यों रे बिले, तू कहाँ गया था, तेरी माँ तुझे ढूंढ रही थी।
3: अरे मैं तो देवू के घर गया था, आपको मालूम नहीं पड़ा क्या, आज देवू के दादाजी गुजर गए। देवू बहुत रो रहा था, उसी के साथ बैठा था।
5: हे भगवान, इस लड़के को जात पात का कोई ध्यान नहीं है, तूने देवू के दादाजी के शव को छुआ तो नहीं। हे ईश्वर,
3: छुआ नहीं, सब दादाजी को आखिरी बार प्रणाम कर रहे थे, सो मैंने भी किया।
5: तूने प्रणाम किया, चल आज तेरी अच्छी पिटाई होगी, चल माँ के पास।
3: आप मुझे डांट क्यों रहे हैं, देवू मेरा दोस्त है, उसके दादाजी को मैं भी दादाजी कहता था, और दादाजी को प्रणाम करने में क्या बुराई है, माँ ही तो कहती है बड़ों का आदर करना चाहिए।
5: अरे अरे अरे अरे अरे, इस मलेच्छु को कौन समझाए, चल चल तू तो अंदर चल, फिर देखना क्या होता है तेरा। ए ए ए ए, किसी चीज को छूना मत, पहले नहा ले, चल पहले नहा।
3: ये लीजिए ये लीजिए ये लीजिए, आपको छू दिया, क्या हो गया, कुछ भी तो नहीं हुआ, आप तो वैसे ही हैं।
5: हाय हाय हाय हाय हाय, ये क्या कर दिया, मैं तो नहा धोकर घर से बाहर जा रहा था, छू दिया ना, अब फिर से नहाना पड़ेगा, राम राम राम।
3: तो जाइए फिर से नहाइए।
5: राम राम राम राम राम।
0: और नरेंद्र हंसते हुए अंदर चले गए। चाचा जी के गुस्से का अंदाजा तो आप खुद लगा सकते हैं।

0: नरेंद्र बचपन से ही बहुत हाजिर जवाब और शरारती थे, पर उनकी बाल सुलभ शरारतों से अधिकतर लोगों का मनोरंजन होता था। उनकी मजेदार बोलचाल और मनगढ़ंत किस्से कहानियों को सुनकर गंभीर स्वभाव वाले बड़े बूढ़े भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे। उनके दोस्त तो नरेंद्र से कहानियां सुनने के लिए हमेशा उत्सुक रहते थे और नरेंद्र भी मौका मिलते ही कहीं भी मंडली जमाकर बैठ जाते और दोस्तों को तरह तरह की कहानियां सुनाते। रामायण महाभारत की कथा कहानियां तो सुनाते ही थे, साथ ही अलिफ लैला की कहानियां, ईसप की नीति कथाएं तथा देश विदेश की परिकथाएं भी सुनाया करते थे।
1: नरेंद्र को किसी प्रकार का संकोच न था। अगर कोई कहानी याद न आती तो मनगढ़ंत पात्रों की काल्पनिक कहानियां दोस्तों को सुनाया करते। उनकी काल्पनिक कहानियां भी इतनी मजेदार हुआ करती थीं कि दोस्त यह समझकर भी कि नरेंद्र झूठी कहानियां सुना रहे हैं घंटों मंत्रमुग्ध हो सुनते रहते थे। बचपन से ही उनकी कल्पना शक्ति अद्भुत थी।
0: जीवन के आरंभ में ही देखा गया था कि अपने हम उम्र साथियों के साथ झुंड बनाकर क्रीड़ा कौतुक करते समय नरेंद्र ही इन सब आयोजनों के नेता होते। नेतृत्व सुलभ गुण तब से ही उनके चरित्र में प्रस्फुटित होकर धीरे धीरे समुचित रूप धारण कर रहा था।
1: उन दिनों पाठशाला में मकर संक्रांति के दिन गंगा की वंदना के गीत गाकर गंगा के तट पर जाकर पूजा अर्चना करने की प्रथा थी। नरेंद्र के पिता विश्वनाथ बाबू मकर संक्रांति के दिन गुरुजी एवं छात्रों को नई धोती कुर्ता दिया करते थे एवं गुरुजी छात्रों को गाजे बाजे के साथ गंगा पूजा कर आने की अनुमति देते थे।
0: लौट कर आने पर प्रथा अनुसार घर पर बनी मिठाइयां खाने को मिलती थीं। नरेंद्र ने पिता से छात्रों के साथ गंगा पूजन की अनुमति मांगी। बाजा गाजा और पताका आदि की व्यवस्था पिता के खर्चे से सहज ही हो गई। अतः गंगा की महिमा गाते हुए बच्चे जुलूस बनाकर गंगा तट पहुंचे। वहां केले के पेड़ के छिलकों से नाव बनाकर उनमें दिया जलाकर रख दिया गया और फूल मालाओं से सजाकर नावों को गंगा जल में बहा दिया गया।
1: छोटे छोटे नाव धीर गति से गंगा में बहने लगी। संध्या के झुरमुट अंधेरे में जगमगाती हुई नाव दियों के साथ साथ धीरे धीरे लहरों के साथ झूमती हुई सागर की ओर बढ़ चली। बच्चे ढोल मंजीरों के साथ गाते रहे।

0: अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। आलेख डॉक्टर पापिया दास गुप्ता, निर्देशन चैतन्य भट्ट, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वरा संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
1: श्रोतेहोतच आपण युगप्रवर्तक स्वामी विवेकानंद ऐकलात। हा कार्यक्रम स्वराज संस्थान संचालनालय यांच्या सहकार्याने विद्यावाणी सामुदायिक रेडिओवरून प्रसारित करण्यात आला। ऐकत रहा विद्यावाणी 107.4 FM।